सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर सन 2026। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये कामना करते हैं कि आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आज सुबह की सभा में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक मैं हूं आपके साथ। आइए कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ करने के पहले आपको हम बताए देते हैं कि आज दोपहर 12 बजे तक आप हमारे साथ किन किन कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जीवन सौरभ, ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ सुनिएगा कार्यक्रम अक्षय निधि में 7:10 से। अक्षय निधि के पश्चात आप आनंद लेंगे भक्ति संगीत का मेरे साथ, यानी आपकी अपनी पूर्वा के साथ। सुबह 8 का वक्त होगा कार्यक्रम वतन का राग का। श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम आधारित होगा शिरीष कुमार मेहता पर। उनका आज, क्षमा कीजिएगा, 9 को यानी कल शहादत दिवस है। सुबह 8:30 का वक्त होगा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार का। आज का विषय है मृदा यानी कि मिट्टी। डॉक्टर संजीव गर्ग से फराज फयाज की बातचीत आप इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे। सुबह 9 सुनिएगा योग संवाद। आज योग संवाद का विषय रहेगा पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और देववाद का निराकरण। सुबह 9:30 सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे मार्च शैली में प्ले शहीद भगत सिंह। इसका आप भाग 2 सुनेंगे। नगर की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेकर आएगी हमारी पत्रिका परिक्रमा सुबह 10:00। 10:30 का वक्त होगा कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा का। ये कार्यक्रम आधारित होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र पर। दिन में 11 सुनिएगा स्वास्थ्य चर्चा। आज आप बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें, इस विषय पर विषय विशेषज्ञ कनक जी से दीप्ति की बातचीत सुन पाएंगे। दिन में 11:30 सुनिएगा हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से आज सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए। आइए सुने जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ। कैसा हो कि आप सोकर उठें और जिस चीज को आप छुएं वो सोने की बन जाए। यूनान के एक राजा मिडास को भी एक ऐसा ही अनोखा वरदान मिला, लेकिन इस वरदान ने उसकी जिंदगी कैसे बदल दी, आइए जानते हैं। यूनान में मिडास नाम का एक फेमस राजा हुआ करता था। बचपन से ही उसे सोना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके कमरे की हर एक चीज़ सोने की बनी हुई थी। उसका पलंग सोने का था, वो जिस बर्तन में खाना खाता था वो सब सोने के थे, और तो और उसकी कंघी भी सोने की ही बनी हुई थी। उसे सोने से इतना प्रेम था कि वो जितना ज़्यादा सोना जमा करता उतना ही उसका लालच बढ़ता जाता। सोने के प्रति उसका लालच देखकर उसकी पत्नी भी परेशान हो गई थी। वो अक्सर भगवान से उसकी इस लालसा को खत्म करने की प्रार्थना करती थी। एक दिन राजा मिडास अपने महल के कमरे में बैठकर सोना गिन रहा था, तभी अचानक वहां भगवान प्रकट हुए। मिडास को सोना गिनते हुए देखकर उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी अक्सर मेरी सेवा करती है, उसकी सेवा से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? भगवान की बात सुनकर मिडास बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बोला, मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मैं जिस चीज़ को स्पर्श कर लूँ वो सोने की हो जाए। भगवान ने कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। कल सुबह उठने के बाद तुम जो कुछ स्पर्श करोगे वो सब सोने में बदल जाएगा। अगले दिन राजा जब सोकर उठा तो उठकर वो बालकनी में गया और वहाँ से अपने राज्य को देखने लगा। तभी उसे याद आया कि कल भगवान ने उसे वरदान दिया था, अब उस वरदान को परखने की बारी थी। राजा ने सबसे पहले बालकनी में लगे पर्दों को छुआ। पर्दा राजा का स्पर्श पाकर पलक झपकते ही सोने में बदल गया। ये देखकर राजा बहुत खुश हो गया। राजा मिडास सोने का स्पर्श पाकर बहुत खुश था, लेकिन उसे अभी पता ही नहीं था कि धीरे धीरे उसका यही वरदान उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। बालकनी से निकलकर राजा नाश्ता करने बैठा, लेकिन जैसे ही उसने फलों को हाथ लगाया वे भी सोने के बन गए। उसने पानी पीने के लिए जैसे ही जग को छुआ वो भी सोने में बदल गया। राजा मिडास को बहुत तेज भूख लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इतने में ही उसकी बेटी भागती हुई उसके पास आई और उसे परेशान करने लगी और आते साथ ही उसके गले लग गई। मिडास को छूते ही वो लड़की सोने की मूर्ति में तब्दील हो गई। अपनी बेटी को सोने की मूर्ति में देखकर मिडास दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। उसे ये समझ आ गया कि सोना संसार की सबसे अच्छी वस्तु नहीं है। परेशान होकर मिडास ने भगवान को पुकार लगाई। भगवान महल में प्रकट हुए और बोले, मिडास क्या तुम इतना सारा सोना पाकर खुश हो? मिडास ने रोते हुए कहा, नहीं, इस समय मैं संसार का सबसे दुखी मनुष्य हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आप मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी बेटी को पहले जैसा बना दो। मैं उसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोने को नहीं। राजा मिडास की बात सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है मिडास, तुम समझ गए हो कि सोना संसार की सबसे कीमती वस्तु नहीं है, तो मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने अपना वरदान वापस ले लिया। मिडास की बेटी अब वापस इंसान बन गई। ठीक होने के बाद मिडास की बाहों में उसकी प्यारी बेटी पहले की तरह अटखेलियां करने लगी। इस घटना के बाद मिडास ने सबक ले लिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा धन परिवार ही होता है। वो अब अपनी पत्नी और बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पैसा आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी आपको अपने परिवार से ही मिलती है।
2: जीवन सौरभ
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 13वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं अग्नि, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
4: यो नारमरम सहवसुम निहंतवे प्रक्षाय च दासवेशाय चावह ऊर्जयन्त्या अपरि विष्टमास्य मुतैवाद्य पुरु कृत्सात्युक्त्यः। हे बहुकर्मा इंद्रदेव, आपने दस्युओं के विनाश के उद्देश्य से नृमर के पुत्र सहस्वसु को बलशाली वज्र से वार कर मार दिया तथा अन्नादि प्राप्त किया, अतः आप प्रशंसा के योग्य हैं। शतम वा यस्य दश साकमाद्य एकस्य सृष्टौ यद्ध चोदमाविथ अरज्जौ दस्यून् समुनब्द भीतये सुप्राव्यो अभवः सास्युक्त्यः। हे इंद्रदेव, आपने दानशील यजमान के सुख के लिए संरक्षण प्रदान किया। आपके रथ को 1000 अश्व खींचते हैं। आपने रस्सी से बांधे बिना दभीति ऋषि के दस्युओं को नष्ट किया और उनके श्रेष्ठ मित्र बने। आप प्रशंसा के योग्य हैं। विश्वे दनुरोधना अस्य पौंस्यम ददुरस्मै दधिरे कृत्नवे धनम षडस्तभना विष्टिरः पञ्च संदशः परिपरो अभवः सास्युक्त्यः। इंद्रदेव के पराक्रम के अनुकूल सारी नदियां प्रवाहित होती हैं। उनके लिए सभी धन एकत्रित करते हैं तथा यजमान हविष्यान्न देते हैं। हे इंद्रदेव, आपने पंच जनों के पालन के लिए 6 विशाल पदार्थों को धारण किया है, अतः आप प्रशंसा के योग्य हैं। सुप्रवाचनम तव वीर वीर्यम येदेकेन क्रतुना विन्दसे वसु जातु स्थिरस्य प्रवयः सहस्वतो या चकर्थ सेन्द्र विश्वास्युक्त्यः। हे इंद्रदेव, आप एक बार के प्रयास से ही इच्छित ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। आपका यह पराक्रम प्रशंसनीय है। आप उत्पन्न प्राणियों को अन्न देने वाले एवं महान कार्यों के कर्ता हैं। इसी कारण आप प्रशंसा के योग्य हैं। अरमयः सर्पस्तराय कम तुर्वीतये च वैयाय च श्रुतिम् नीचा संतमुदनयः परावृजम् प्रांधम् श्रोणम् श्रवयन्त्या सास्युक्त्यः। हे इंद्रदेव, आपने तुर्वीति तथा वत्य को प्रवाहित जल से सुखपूर्वक पार जाने का मार्ग प्रशस्त किया। अंधे एवं पंगु परावृक ऋषि को आपने गहरे जल से निकालकर आंख तथा पैर प्रदान करके अपनी कीर्ति बढ़ाई। आप प्रशंसा के योग्य हैं। अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राधः समर्थयस्व बहुते वसव्यम् इन्द्र सच्चित्रम् श्रवस्या अनु द्यून् बृहद् वदेम विदथे सुवीराः। हे इंद्रदेव, आप महान ऐश्वर्यशाली हैं। श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त आप हमें धन प्रदान करें। हम सदैव आपके धन को प्राप्त करने की कामना करते हैं। हम यज्ञ में पुत्र पौत्रों सहित स्तोत्रों का गायन करके आपकी स्तुति करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 13वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूं श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

श्रोताओं, आस्तिकता के बारे में यदि हम बात करते हैं तो क्या है आस्तिकता? ईश्वर को स्वीकार कर लेना ही क्या आस्तिकता है? ये तो एक पहला ही कदम है, आरंभिक कदम। सच्ची आस्तिकता का अर्थ है अपने जीवन में ईश्वरीय मूल्यों को उतारना और उनका पालन करना। सत्य, प्रेम, न्याय, सेवा, करुणा, शांति, सहिष्णुता और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को हम जब जीवन में अपनाते हैं तो यही सच्ची आस्तिकता होती है, यानी कि अपने परमपिता, अपने परमेश्वर में आस्था होती है। और यही आस्तिकता का मूल स्वरूप है जो हमें एक आदर्श जीवन बिताने को बाध्य करता है।

भक्ति संगीत लेकर मैं हूं आपके साथ, आपके रेडियो मित्र पूर्वा। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आस्तिकता की, यानी ईश्वर में आस्था रखने की। ईश्वर में आस्था यानी आस्तिकता अधूरी है, खोखली है, यदि हम अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं का, अपने मूल्यों का पालन नहीं करते। असली आस्तिक वो है जो कठिनाइयों और प्रलोभनों के बीच भी अपनी नैतिकता का साथ न छोड़े और सेवा, सहानुभूति और परोपकार के मार्ग पर डटा रहे।

जब हम आस्तिकता को अपने जीवन में उतारते हैं तो ये हमेशा मन में ध्यान रखें कि केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही हम इसे सीमित न रखें, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन का उसे आधार बनाएं। सच्ची आस्तिकता तो वही है श्रोताओं, जो मानवता के हित में कार्य करे, समाज को जोड़ने वाली हो और जीवन को श्रेष्ठ बनाने में मददगार हो। इसे केवल पूजा पाठ और कर्म कांडों तक या धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित न रखें, जबकि आस्तिकता का आधार हम बनाएं विवेक, नैतिकता और परमार्थ को, तभी ये मानव जीवन को नई दिशा दे पाएगी।

आज भक्ति संगीत में हम बात कर रहे हैं कि सच्ची आस्तिकता क्या है। वास्तविक आस्तिक तो वही इंसान है जो अपने विचारों, व्यवहार, कार्यों और संबंधों में सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता और दया जैसे गुणों को स्थापित करता है। वो इंसान दूसरों की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानता है और इसे ही जीवन का एक मिशन भी मानता है।

तो श्रोताओ, यदि कोई व्यक्ति जीवन में सत्य को अपनाता है, विवेक से निर्णय लेता है और दूसरों के लिए हमेशा सहायक बनता है, तो वो चाहे फिर किसी भी धर्म को माने, वो सच्चा आस्तिक है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। ये

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

मुक्त गगन में लहराता ये राष्ट्र का अभिमान है। ये तिरंगा राष्ट्र कुल का एक पवित्र निशान है। अनगिनत बलिदानियों के रक्त से रंगा हुआ मात्र राष्ट्र ध्वज नहीं, ये क्रांति का गुणगान है। क्रांति का गुणगान है। मुक्त गगन में लहराता राष्ट्र ध्वज किसी भी देश की स्वतंत्रता का बुलंद उद्घोष होता है। हमारा राष्ट्र ध्वज हमारी आन बान और शान है। ये तिरंगा हमें याद दिलाता है कि केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ इसमें भारत माँ के वीर सपूतों के रक्त का लाल रंग भी शामिल है। ये हमें याद दिलाता है झंडा सत्याग्रह की। ये हमें याद दिलाता है उन अमर बलिदानियों की जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए लेकिन इसे झुकने नहीं दिया। ऐसे ही एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे शिरीष कुमार मेहता, जो अंग्रेजों के अत्याचार से भयभीत नहीं हुए। उन्होंने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। अपनी मातृभाषा गुजराती में वो नारा लगाते रहे, नहीं नमशे निशान भूमि भारतनु। हाथों में तिरंगा लेकर वो लगातार आगे बढ़ते रहे। भारत की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई और अपना जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उस समय उनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। एक ऐसी उम्र की जब न जीवन का ज्ञान होता है, न ही देश दुनिया की समझ होती है। ऐसी किशोरावस्था में उन्होंने जीवन की सार्थकता को भी समझा था और देश की अवस्था को भी। शिरीष कुमार मेहता का जन्म 28 दिसंबर सन 1926 को महाराष्ट्र के नंदुरबार नामक स्थान पर हुआ था। नंदुरबार सतपुड़ा से लगा हुआ महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। नंदुरबार की पहचान एक व्यापारिक स्थल के रूप में की जाती है। इसी गांव में एक गुजराती व्यापारी के घर पर उनका जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। अच्छे संस्कारों के साथ एक समृद्ध परिवार में बहुत ही लाड़ प्यार से उनकी परवरिश होने लगी।

शिरीष कुमार मेहता का बचपन जिस वातावरण में बीत रहा था उसमें स्वदेशी और स्वराज की गूंज थी। वंदे मातरम का नारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध का जयघोष बन चुका था। साइमन कमीशन का विरोध, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी की दांडी यात्रा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गुप्त रूप से भारत से बाहर जाकर विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन कर स्वाधीनता की लड़ाई में सक्रिय होना, इन सारे घटनाक्रमों ने शिरीष कुमार मेहता को भीतर तक प्रभावित किया था और वो स्वाधीनता संग्राम से जुड़ने लगे। उनकी शिक्षा दीक्षा नंदुरबार में जारी थी। वो स्कूल में शिक्षा के दौरान भी अपने साथियों से स्वाधीनता संघर्ष की चर्चा किया करते थे। ये वो समय था जब गांधी जी सत्य और अहिंसा के बल पर अन्यायी सत्ता को ललकार रहे थे। गांधी जी के एक आह्वान पर भारतवासी एकजुट होकर खड़े हो जाते थे। शिरीष कुमार मेहता के मन में गांधी जी के विचारों और उनके जीवन दर्शन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। शिरीष कुमार मेहता की माताजी एक देशभक्त महिला थीं। यही कारण है कि वो बचपन से ही उन्हें स्वाधीनता संग्राम की कहानियां सुनाया करती थीं। क्रांतिकारियों के बलिदान की अनगिनत कथाएं उन्होंने बचपन से ही सुन रखी थीं। इस पारिवारिक वातावरण ने उनके बाल मन पर अंग्रेजों के अत्याचार और स्वाधीनता संघर्ष की कहानियों को स्थायी रूप से लिख दिया और वो मन ही मन स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए दृढ़ संकल्पित होते गए। उन दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चतुराईपूर्ण गतिविधियों की व्यापक चर्चा थी। नेताजी द्वारा अंग्रेजों को चकमा देने की रणनीति ने शिरीष कुमार मेहता के मन पर गहरा प्रभाव डाला और अब वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही तरह निडर होकर अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। जब वो 12 वर्ष के थे तभी से वो अपने दादाजी के साथ तिरंगा उठाकर आजादी के आंदोलन में शामिल हो जाते थे। इस तरह वो धीरे धीरे स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने लगे। वो सभाओं में जाते, तत्कालीन नेताओं के भाषण सुनते और कभी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए रैलियों में शामिल होते। इसी बीच सन 1942 का साल आया। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई की घोषणा कर दी। गांधी जी की अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। करो या मरो का आह्वान सुन समूचा भारत गांधी जी के साथ खड़ा हो गया। हालांकि सभी बड़े नेता आंदोलन के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन देश भर में एक ही नारा गूंज रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो।

गांधी जी का आह्वान करो या मरो जन जन तक पहुंच चुका था। देश के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में जारी था। अनेक नेता भूमिगत रहते हुए भी इस आंदोलन को गति दे रहे थे। जगह जगह हड़तालें हो रही थीं, बाजार बंद हो रहे थे, अलग अलग जगहों पर झंडों का प्रदर्शन और जुलूस आदि का आयोजन लगातार किया जा रहा था। देश भर के छात्र भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। स्कूल और कॉलेज में बंद का आयोजन किया जा रहा था। इसी क्रम में नंदुरबार में भी लोग भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो रहे थे। 9 सितंबर 1942 की तारीख थी। नंदुरबार में स्कूली बच्चों द्वारा एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। उस समय शिरीष कुमार मेहता की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। वो कक्षा 8वीं के छात्र थे। इस जुलूस में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल थे और शिरीष कुमार मेहता जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। हाथों में झंडा लिए ये जुलूस आगे बढ़ रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे से आसमान गूंज उठा था। चूंकि शिरीष कुमार मेहता की मातृभाषा गुजराती थी, इसलिए वो गुजराती भाषा में बुलंद स्वर में नारे लगा रहे थे, जिसका आशय था, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, भारत का झंडा नहीं झुकेगा। ये रैली शहर से होकर गुजर रही थी कि पुलिस ने मंगल बाजार इलाके के चारों ओर बैरिकेड लगाकर जुलूस को रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने रैली समाप्त करने का आदेश दिया, लेकिन रैली में शामिल स्कूली बच्चे रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पुलिस के आदेश की अवहेलना की और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। पुलिस ने रैली पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन आंदोलनकारी आगे बढ़ते ही रहे। इस संघर्ष में पुलिस कर्मियों ने झंडा छीनने की भी कोशिश की, लेकिन बच्चों ने झंडा एक युवा आंदोलनकारी के हाथों में थमा दिया। जुलूस आगे बढ़ता रहा और आगे कन्या विद्यालय के पास से गुजरा। अनेक छात्राएं भी इसमें शामिल हो गईं। ये जुलूस अब एक सरकारी कार्यालय के पास पहुंचा। यहां शिरीष कुमार मेहता ने भीड़ को संबोधित किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद बच्चों ने सरकारी भवन पर झंडा फहराने का फैसला लिया। इस बात से संघर्ष और अधिक बढ़ गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बंदूक तान दी। शिरीष कुमार मेहता सबसे आगे आकर खड़े हो गए और गरजते हुए उन्होंने कहा, अगर तुम्हें गोली मारनी है तो पहले मुझ पर गोली चलाओ। हाथ में तिरंगा लहराते हुए वो जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगाने लगे। क्रोधित अंग्रेज अधिकारी ने उन पर गोली चला दी और वो वहीं गिर पड़े। इस घटना में उनके साथ धनसुख लाल वाणी, घनश्याम दास, शशिधर केतकर और लाल दास भी मारे गए। इस तरह अपने चार साथियों के साथ शिरीष कुमार मेहता भारत माता की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गए। नंदुरबार में उनके सम्मान में स्थापित स्मारक आज भी उनके बलिदान की याद दिलाता है। ऐसे महान देशभक्त को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार का। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे
1: डॉक्टर संजीव गर्ग जी से, जो कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम में वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद में।
2: जी धन्यवाद।
1: सर, मिट्टी का जिक्र हो रहा है, सॉइल का जिक्र हो रहा है और हम सब मिट्टी ही के बने हैं, तो सबसे पहले सर हम बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले ना हम कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, कि आप कहाँ की मिट्टी में पले बड़े और किस तरह का आपका सफर रहा अब तक।
2: मैं एक कृषक परिवार और बिजनेसमैन परिवार में मैं जन्मा
1: जी,
2: और मैं मूलतः मुरैना जिला जो कहा जाता है और डाकुओं का क्षेत्र है उसमें मेरा जन्म हुआ
1: जी।
2: और वहाँ की मृदा बहुत ही, जो चंबल का बैड जो बोला जाता है
1: जी,
2: उसमें पला। और मूलतः मेरा जो बैकग्राउंड था वो बिजनेस था, बट मैं कृषि से मैं थोड़ा बहुत जुड़ा, तो मैंने कृषि की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा ग्वालियर से हुआ, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर से हुआ। उसके बाद मैंने PhD महात्मा गांधी चित्रकूट दामोदर विश्वविद्यालय चित्रकूट से की
1: जी।
2: और उसके बाद मैंने विभिन्न जगह, मैं सबसे पहले मैं ब्यावरा राजगढ़ में भी रहा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद मैं कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में 3 साल, फिर मैं CIE भोपाल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करौत भोपाल में भी रहा 5 साल, उसके बाद मैं इंदौर में भी 1 साल रहा, उसके बाद मैं यहाँ लास्ट 8 ईयर से मैं कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में अपनी सेवाएं एज ए सीनियर साइंटिस्ट हेड के अध्ययन से दे रहा हूँ।
1: सर, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि विश्व मृदा दिवस जो वर्ल्ड सॉइल डे, उद्देश्य क्या है, अगर आप इस पर कुछ रोशनी डालें और इसकी शुरुआत कब से हुई।
2: बिल्कुल, विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, मुख्य रूप से इसका जो मनाने का उद्देश्य है
1: जी,
2: वो है कि मिट्टी एक हमारी माता है
1: जी।
2: हम कहते हैं ना कि भूमि हमारी माता होती है, माताएं हमारी तीन होती है
1: जी,
2: एक हमको जन्म देने वाली
1: जी,
2: एक हमको पालने वाली और एक गाय माता
1: जी।
2: तो भूमि एक जननी और एक पोषण करने वाली
1: जी।
2: तो इसको माता के रूप में माना जाता है पूरा विश्व में और भारत में। भारत में तो इसके प्रति बहुत श्रद्धा है, जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो मिट्टी के गणेश हैं, मिट्टी की जमीन को पूजते हैं, चाहे हम अनाज बोए, चाहे हम किसी प्रकार का, हम मिट्टी से लगाव रखते हैं और मिट्टी से ही जन्मते हैं और मिट्टी में ही
1: जी।
2: तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से कि इसको मिट्टी को संरक्षित किया जाए
1: जी,
2: और इसके प्रति जागरूक किया जाए। और जो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे है वो 5 दिसंबर थाईलैंड में स्वर्गीय राजा भूमिबोल अदुल्यदेश जी जन्मदिन के सम्मान में ये मनाया था। उन्होंने मिट्टी के लिए काफी काम किया, जो मिट्टी बचाने के लिए सार्थक थे, और 2002 में ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेस ने भी इस तारीख को सिफारिश की
1: जी।
2: और दिसंबर 2013 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसलिए औपचारिक रूप से इसको मनाने का सेलिब्रेशन किया
1: जी, जी।
2: इस उद्देश्य मिट्टी के संरक्षण के लिए
1: जी,
2: मिट्टी के महत्व के लिए, मिट्टी के बचाव के लिए, इसका चाहे कटाव हो चाहे पॉल्यूशन हो, सभी प्रकार से मिट्टी से बचाने के इसके उद्देश्य को मनाया जाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO इस दिवस को मनाने में इसकी क्या भूमिका रहती है।
2: FAO इसको मुख्य रूप से पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में को प्रमोट करती है कि इसको बचाया जाए और फूड के लिए, क्योंकि हमारा जो खाद्य है
1: जी
2: वो हमारी मिट्टी से ही आता है
1: जी।
2: जब तक हमारी मिट्टी अच्छी नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, पूरे विश्व की मृदा पर ही पूरा मानव जीवन, ह्यूमन हेल्थ है वो डिपेंड करती है
1: जी।
2: क्योंकि इसका फूड है वो मिट्टी से बचता है, मिट्टी से ही हम मिट्टी को खाते हैं। तो इसमें जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका अहम रोल रहता है, और इसका सेलिब्रेशन के रूप में वो 2014 से पहला सेलिब्रेशन उसको 2014 में किया।
1: सर, एक नारा भी है कि होल्ड सॉइल इरोजन सेव आर फ्यूचर, तो इन नारों का क्या, किस तरह से हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में महत्व है।
2: बिल्कुल, नारा विशेष रूप से अगर किसी को अवेयर करना है, जागरूक करना है, तो हम कोई ना कोई एक अभियान लेके चलते हैं
1: जी।
2: और अभियान में हम किसी न किसी को वर्ड को चुन के और वो एक नारे के रूप में, हम किसी को जागृत करना है तो हम एक नारा लेके चलते हैं
1: जी।
2: तो पूरे वर्ल्ड को, पूरे भारत को अगर हमें मिट्टी के प्रति जागरूक करना है तो इस अभियान को लेके चलना पड़ेगा। हमें बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों का चयन करके जिससे लोग जागरूक हों, उनके मन में उसके प्रति जागरूकता आए
1: जी,
2: और एक रिश्ता बने मिट्टी से। क्योंकि लोग सिर्फ अभी अपनी लाइफ में क्या पैसा, है ना, आजीविका हमने मिट्टी को खेत को बना के किसान ने भी कर लिया।

0: हमको लेके चलना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को, किसानों को अवेयर कर
1: सकते। अच्छा सर, सर एक बड़ा अहम सवाल यह है कि जो सॉइल पॉल्यूशन है उसको योगदान देने में कौन से प्रमुख जो कारक वो कौन कौन से हैं, और इसे रोकने में इंसान या व्यक्ति किस तरह से अपना योगदान दे सकता है?
0: सॉइल्स में हमारी चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे एग्रीकल्चर वेस्ट हो, चाहे प्लास्टिक हो, अन्य बहुत सारे कारक हैं जो धीरे धीरे हमारे सॉइल्स को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, चाहे पेस्टिसाइड्स भी हो, क्योंकि हैवी पेस्टिसाइड और हैवी फर्टिलाइजर, अनबैलेंस फर्टिलाइजर डालने से हमारी सॉइल कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड पॉल्यूशन हो रही है, दूषित हो रही है। दूषित होने का कारण कि उसमें माइक्रोब्स की संख्या कम होना और हमारे जो न्यूट्रेंट हैं वो कम होना, प्लास्टिक का मिलना, प्लास्टिक पॉलीथिन, वो कुछ एग्रीकल्चर ऐसी प्रैक्टिस भी हैं जो हम कहते हैं बैड प्रैक्टिस, उनके आने से भी हमारी जो सॉइल है, मृदा है, वो धीरे धीरे दूषित हो रही है। कुछ हमारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, वो हमने शहरों का कचरा लिया और हमने डाल दिया और उड़ के वो गाँव में आ गया। कुछ हमारी ऐसी बिजनेस इंडस्ट्री भी है जो पॉलीथिन में बहुत सारा पैक करते हैं और वो ग्रामीण क्षेत्र में आ जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में उसको फिर कहीं ना कहीं डालते हैं और वो पॉलीथिन हमारे खेतों में धीरे धीरे जा रही है। ऐसे कुछ प्लास्टिक है, कुछ इंडस्ट्रियल वेस्टेड मटेरियल है, शहरों का कचरा है, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, तो उनके कारण भी हमारी सॉइल जो है वो दूषित हो रही है।
1: किस तरह से रोका जा सकता है और एक लोग अपने स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं जागरूकता के लिए और इसमें सुधार आ सके?
0: बिल्कुल, लोगों को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। कभी भी हमको अगर बाजार में मार्केट में जाना है तो कोशिश हो कि ज्यादा से ज्यादा हम कपड़े की पॉलीथिन, कागज की पॉलीथिन, इनका उपयोग करें।
1: जी,
0: किसान भाइयों को भी ज्यादा से ज्यादा जो गाँव में हम शहर से कोई भी सामान ला रहे हैं तो कोशिश करें कि हम प्लास्टिक का बैग्स या अन्य जो हमारे सॉइल को या हमारे जीवाश्म पदार्थ है, खाद है, विदेशी खाद है, उनको दूषित ना करें।
1: जो
0: हमारे घरों पे पता रहे वो पॉलीथिन जा रही है, तो किसान भाई भी मार्केट से जो सामान लेके आ रहे हैं उसको कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कागज की पॉलीथिन, कपड़े की पॉलीथिन उसमें लाए। एक दूसरा काम कि हमको विशेष रूप से जो हमारी सॉइल्स को पॉलिनेट कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो उसमें प्लास्टिक सोडियम, उनको हम डीकम्पोज करें।
1: जी,
0: है ना, और हम नगर निगम है, नगर पालिका है, इनमें हम जो है उसका सही सॉल्यूशन करें। ऐसा नहीं हमने उठा के जहाँ हमारा गोबर का इकट्ठा हो रहा है और वहीं हमने पॉलीथिन भी डाल दी, कांच भी डाल दिया और अन्य कोई भी सिस्टम वो भी डाल दिया जो डीकम्पोज हो ही नहीं सकता, या कई सालों में होते हैं, और वो हमने उठा के फिर खेतों में डाल दिया।
1: जी,
0: नदियों में पानी में चला गया, वो जमीन में पहुंच गया कहीं दूसरी जगह, और हमने पानी दिया, कहीं कैनाल है, अन्य चीजें हैं, बहुत सारे हमने पेस्टिसाइड हैं जिसमें जीवाणु पदार्थ या अन्य माइक्रोब्स को वो डैमेज कर रहे हैं, संख्या कम कर रहे हैं।
1: जी,
0: तो उसमें भी हम नहीं स्प्रे करें, अवॉइड करें उनको। बहुत सारे फर्टिलाइजर, अनबैलेंस फर्टिलाइजर डालने से हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी खत्म हो रही है।
1: जी,
0: तो ऐसे करके हमें इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, जहां तक कोशिश है वो करें। हमें कम से कम पॉलीथिन का और इनका तो हमें बिल्कुल करना ही पड़ेगा, एक ही जगह स्थान पे इकट्ठी करें और उसको हम डीकम्पोज करें, हमें घूरे पे या खेत पे कहीं, कोई बच्चे हैं, बच्चों को भी हम अवेयर करें कि भाई गांव में तो किस अक्सर ये होता है बच्चे कुछ भी लाए और उन्होंने पॉलीथिन फाड़ी और वहीं फेंक दी।
1: जी,
0: और वो उड़ के पता चला गांव के घूरे पे चले गई, घूरे से वो खेत में चली गई। तो इससे बहुत सारी हमारी जमीन में हमारी मृदा का बहुत दूषित हो रही है और बहुत सारी चीजें उसमें,
1: मतलब लोगों में जागरूकता जरूरी है और वहीं से शुरुआत होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, छोटे से ही हम अपने बच्चों को सिखाएं कि नहीं, हमारी मृदा इससे बहुत दूषित हो रही है और ये हमें एक्टिस नहीं करना है, चाहे कोई भी किसी प्रकार की पॉलीथिन हो, प्लास्टिक हो, प्लास्टिक का कंटेनर हो, तो पता चले कि वहां हम नहीं डालें, ऐसा स्थान पर इसको इकट्ठा करें और किसी भी कबाड़े वाले को रिसाइकिल करें, रिसाइकिल की जगह जाए वो रिसाइकिल हो। गवर्नमेंट को भी इस पर फोकस करना चाहिए कि प्लास्टिक को रिसाइकिल ज्यादा से ज्यादा गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में उसको रिसाइकिल करना चाहिए, पॉइंट बनाना चाहिए पंचायत स्तर पर, नगर परिषद स्तर पर, नगर निगम स्तर पर, कि वहां वो प्लास्टिक को खरीदें,
1: मिले
0: प्लास्टिक पॉलीथिन है, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस करने की आवश्यकता है जिससे वो खेतों में और वहां ना जाए।
1: सही बात,
0: क्योंकि बहुत ज्यादा खेतों में पॉलीथिन अगर गई तो एक दिन हमारे मृदा बिल्कुल ही दूषित हो जाएगी।
1: सर एक सवाल और है कि सतत मृदा प्रबंधन पद्धतियां क्या हैं, जैसे न्यूनतम जुताई, फसल चक्र, जैविक पदार्थ जो होते हैं इनका उपयोग, और ये क्यों आवश्यक होते हैं?
0: बहुत सारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है फार्मर्स को
1: जी
0: वो गुड़ ही करना चाहिए, जिसे हमें जितनी जुताई की आवश्यकता है
1: जी,
0: हमें जिस क्रॉप के लिए कहें कि एक बार हमें कल्टीवेटर करना है तो एक बार ही करें। अधिक कल्टीवेशन करने से भी हमारी सॉइल कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है। डिस्टर्बेंस मतलब हम जितनी ज्यादा सॉइल को डिस्टर्बेंस करेंगे, जुताई करेंगे खेत में, उतना ही ज्यादा सॉइल महीन होगी।
1: अच्छा अच्छा,
0: उसकी पोर स्पोर कम होगी
1: जी।
0: जब पोर स्पोर कम होंगे तो हमारी मृदा जो हम कहें बहुत सिंपल भाषा में सीमेंट जैसी हो जाएगी।
1: जी जी जी,
0: सीमेंट बहुत ही महीन होती है
1: जी,
0: और जब महीन कोई चीज होगी तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी
1: जी,
0: उसका ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक कार्बन खत्म होगा तो कहीं ना कहीं हमारी मृदा है वो अनफर्टिलिटाई होगी
1: जी,
0: है ना, उसकी उर्वरता शक्ति खोएगी। और अगर और ज्यादा महीन हुई तो हमारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की
1: जी,
0: वो धीरे धीरे कम होगी। कम होगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दूसरा सीपेज
1: जी,
0: जो नीचे हमारा वाटर जाता है वो नहीं जाएगा
1: जी,
0: और बाढ़ आने की स्थितियां बढ़ेंगी
1: जी जी जी।
0: तो हमें मृदा की जुताई, जितनी हमारी कोई क्रॉप है उसको कितनी आवश्यकता है
1: जी जी,
0: एक बार कल्टीवेटर चलाना है, दो बार चलाना है, तीन बार चलाना है, उतना ही एस पर अनुशंसित
1: जी।
0: ऐसा नहीं कि हमने तीन बार चला दिया खेत नहीं बना, और खेत की कंडीशंस क्या है
1: जी जी,
0: उसी के अनुसार हमारी किसान भाई खेतों में कल्टीवेटर चलाए
1: जी जी,
0: रोटावेटर चलाए या अन्य और कोई भी इम्प्लीमेंट है तो उस इम्प्लीमेंट को चलाए।
1: अच्छा,
0: बार बार नहीं चलाए, बार बार चलाने से हमारी मिट्टी कहीं ना कहीं बहुत महीन होती है और पोर अपनी फिजिकल जो होती है वो अपनी खोती है।
1: मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने में मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाते?
0: हम अगर बात करें बहुत ही सिंपल बात, अगर रेगिस्तान और हमारी जो फर्टाइल सॉइल है ना, बंजर भूमि और उर्वरक भूमि
1: जी,
0: अगर हम कहें कि बंजर भूमि क्या है
1: जी,
0: तो सिंपल भाषा में माइक्रोब्स और न्यूट्रेंट
1: जी,
0: जिस मृदा में सॉइल में माइक्रोब्स नहीं है
1: जी
0: और न्यूट्रेंट नहीं है, वो जमीन बंजर जमीन की है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: हाँ। और जिस मृदा में हमारे माइक्रोब्स है
1: जी जी,
0: बेनिफिशियल्स माइक्रोब्स है
1: जी
0: और न्यूट्रेंट है
1: जी जी,
0: न्यूट्रेंट इज द ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, बोरॉन है
1: जी,
0: ये सब है, तो वो हमारी फर्टाइल सॉइल
1: जी जी जी,
0: और यही माइक्रोब्स उस न्यूट्रेंट को प्लांट को अवेलेबल करवाते हैं।
1: अच्छा अच्छा जी,
0: तो प्लांट की ग्रोइंग के लिए
1: जी
0: अहम रोल माइक्रोब्स निभाते हैं
1: जी जी जी।
0: किसी भी क्रॉप के रेसिड्यू डिकम्पोज करने के लिए
1: जी
0: सबसे बड़ा रोल माइक्रोब्स का ही होता है
1: जी,
0: नहीं तो सालों वहां कुछ भी फसल का अवशेष पड़ा रहेगा, अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो उसको वो डिकम्पोज नहीं करेगा। तो मृदा की जीवित रखने के लिए सबसे अहम रोल माइक्रोब्स का और न्यूट्रिएंट्स का।
1: अच्छा अच्छा,
0: इतना बड़ा रोल है हमारी मिट्टी की, मिट्टी में माइक्रोब्स होने का। बोलते भी हैं एक चुटकी मिट्टी में, एक ग्राम मिट्टी में लाखों की संख्या में जीव होते हैं।
1: सही सही,
0: तो बिल्कुल राइट बात है कि हमारी मिट्टी में जीव नहीं होंगे तो वो मिट्टी नहीं होगी।
1: सर, अगर आप कोई सुनने वालों को उदाहरण दें जो विश्व स्तर पर लागू किया गया कोई सफल मृदा संरक्षण का ऐसा अभ्यास हो, ताकि सुनने वाले और बेहतर तरीके से उसको समझ सके।
0: हम कहेंगे पूरे विश्व में
1: जी
0: हरी खाद
1: जी जी जी
0: का अगर उपयोग करें
1: जी,
0: तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी
1: जी
0: जो है
1: जी
0: वो बिल्कुल उर्वरक होगी और उसमें माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी
1: जी जी जी,
0: हमारे किसान भाइयों के लिए उत्पादन में भी सहायक होगी
1: जी,
0: और अन्य अन्य असंख्य जो हमारे जीव जंतु हैं उसमें
1: जी
0: उनमें भी वो सहायक होगी
1: जी,
0: क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमारी मृदा अगर जीवित नहीं होगी तो बायोडाइवर्सिटी को भी सुरक्षित रखना बड़ा
1: जी जी जी जी।
0: तो विश्व स्तर पर अगर ग्रीन मैटेरियल का अगर उपयोग किया जाता है
1: जी,
0: तो निश्चित रूप से ये बड़ा लाभकारी काम
1: जी होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भी जिक्र होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड की ये जो योजना है हमारे किसान भाइयों के लिए, ये किस प्रकार से सहायक रहती है?
0: मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड हेल्थ योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना
1: जी,
0: भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है
1: जी।
0: आज वर्तमान में जो किसानों के लिए
1: जी
0: उनकी मृदा का स्टेटस कहें कि क्या हमारी सॉइल है
1: जी,
0: हम अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कितनी है, सीबीसी कितना, हमारी हाइट कितनी है,
1: जी जी जी
0: है ना, अन्य नाना प्रकार की हम जांच करा के और हम अपने बॉडी के लिए पता करते हैं। इसी प्रकार से सैम कि हमारी सॉइल में किस क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए क्या है, क्या हमारी मृदा की स्थिति क्या है, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी भौतिक स्थिति कैसी है, रेत है, लॉमी है, सैंडी है, एल्यूवियल है ना, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसका पीएच कितना है, ईसी कितना है, नाइट्रोजन परसेंट कितना है, उसमें फास्फोरस कितना है, पोटाश कितना है, ये सारी स्थिति हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी अति महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: उनको जानने के लिए सरकार ने कि हमें किस क्रॉप के लिए कितना फर्टिलाइजर डालना है
1: जी,
0: कितना फर्टिलाइजर लगेगा, हर क्रॉप के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन फर्टिलाइजर है
1: जी।
0: तो किसान भाई की हमारी सॉइल में कितना है
1: जी जी,
0: एक सिंपल भाषा में कहूँ, हमारी थाली में दो रोटी रखी हुई और उनको भोजन करना है चार रोटी
1: जी,
0: तो हमें कितनी रोटी की आवश्यकता पड़ेगी, दो रोटी की आवश्यकता पड़ेगी कि दो ऑलरेडी हमारी थाली में रखी हुई,
1: सही बात,
0: जो कि हमको और पड़ेगी, हम चार रोटी खाते हैं
1: जी।
0: इसी प्रकार से सॉइल में
1: जी
0: कितने उर्वरक है उसमें मात्रा में
1: जी,
0: और कितने की और आवश्यकता है जो हम क्रॉप फसल को लगा रहे हैं
1: जी जी जी।
0: तो किसान भाइयों को भारत सरकार की जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, फ्री में किसी भी ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक ऑफिस में अपना सॉइल सैंपल दे के
1: जी,
0: और वहां से अपना सॉइल का स्टेटस चेक करवा सकते हैं
1: जी जी,
0: फ्री कॉस्ट
1: जी जी।
0: और साल में दो बार
1: जी,
0: ये भी है
1: जी,
0: खरीफ से पहले
1: जी
0: और रबी से पहले,
1: ठीक है,
0: साल में दो बार फ्री कस्ट, और अपने सॉइल के हिसाब से क्या मेरी फसल लगानी, हमारी फसल में क्या क्या हमको डालना है, मीटर से पता।
1: अच्छा अच्छा,
0: 2014 में ये लागू हुई
1: जी,
0: और उसके बाद से आज तक ये चालू है।
1: सर एक सवाल ये भी है कि शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए शहर मृदा स्वास्थ्य पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को कैसे अपनाया जा सकता है?
0: जो मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है
1: जी,
0: उसका शहरीकरण से क्या प्रभाव है, मैं इतना कुछ समझ पा रहा
1: हूँ जी जी जी,
0: क्योंकि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है तो उससे हमारा जो कल्टीवेटेड भूमि है
1: जी जी,
0: वो धीरे धीरे कम हो रही है
1: जी जी,
0: जितनी भी कल्टीवेटेड भूमि है
1: जी,
0: वो हमारी कम होती जा रही है। शहर को हमेशा ये देखना चाहिए कि वहाँ मृदाओं में कचरा ना फैलना, जैविक अपशिष्ट खाद को बनाना
1: जी
0: है ना, पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ लगाने से हमारी मृदा का कटाव बचता है, और इसी के पेड़ के पौधे पत्ते जब गिरते हैं
1: जी,
0: तो हमारी मृदा के लिए बहुत वो आवश्यक होती है और खाद मिलते हैं
1: जी जी,
0: और जीवन पदार्थ बढ़ता है। वर्षा का जल संरक्षण हमेशा संरक्षण है, वो भी करना चाहिए समय में, आप जहाँ स्टोरेज टैंक है, ड्रेनेज टैंक है, उनमें भी हम संरक्षण करके और सॉइल में वर्षा जल संरक्षण करना चाहिए। मिट्टी को कटाव को रोकने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे प्रयास करना चाहिए कि हमें चेक डैम है
1: जी
0: है ना, वो बनाना चाहिए, रोड सीमेंटेड रोड है वो कम से कम बनाना चाहिए, उनके आसपास है वो पेड़ खाली रखना चाहिए, टेच एरिया और जिसमें हम पेड़ लगा सके, पौधे लगा सके वो करना चाहिए। ये सारी चीजें निश्चित रूप से शहरीकरण में होना चाहिए मिट्टी के लिए
1: जी,
0: और करना चाहिए।
1: सर एक ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, एक अहम सवाल है कि मृदा संरक्षण की अगर हम लोग उपेक्षा करेंगे तो क्या इसके परिणाम हम भुगतेंगे, देखने को मिल सकते हैं?
0: बहुत ही आपने बहुत अच्छा सवाल किया है
1: जी जी।
0: और निश्चित रूप से किसान भाइयों को और जो लोग सुन रहे हैं
1: जी,
0: अगर हम मृदा को उपेक्षित करते हैं
1: जी
0: तो मानव जीवन बड़ा संकट में आ सकता
1: है जी, बिल्कुल
0: है ना
1: जी।
0: कैसे, क्योंकि हमारा फूड जितना भी फूड है
1: जी,
0: चाहे हमारी बायोडाइवर्सिटी हो, जल, जमीन और वायु
1: जी,
0: ये तीन मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है
1: जी जी।
0: और अगर हमने उसमें से जमीन को हटा दिया, मृदा को हटा दिया
1: जी,
0: तो हमारा जीवन पूरा बायोडाइवर्सिटी विश्व का हो चाहे भारत का हो
1: जी,
0: उसमें संभव नहीं
1: जी।
0: तो मृदा हमारे लिए बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट है, अगर हमने इसको अवहेलना की
1: जी,
0: और अगर इसको हमने नहीं देखा तो निश्चित रूप से हमारी सॉइल को अनफर्टाइल सॉइल होने में समय नहीं लगेगा और हमारा मानव जीवन एक
1: जी।
0: पूरी भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, मृदा स्वास्थ्य हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, बहुत सारी स्कीम्स को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर काम कर रही है हमारी सरकार, रोशन कर रही है
1: जी,
0: और बहुत सारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सॉइल पे, लेकिन बहुत चाहे पूरी मैपिंग हो कौन सी कहाँ किस प्रकार की सॉइल है, क्या क्या आवश्यकता है, कहाँ कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है, इन चीजों को लेकर भी बहुत अवेयरनेस आ रही है। तो निश्चित रूप से हमने अगर अभिन्ना की तो बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
1: फिर एक आम नागरिक जो होता है वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मिट्टी के संरक्षण के लिए कौन कौन से ऐसे काम है, छोटे छोटे काम है जो वो कर सकता है?
0: बड़ी आसानी सवाल है कि अगर हमने पूरे जीवन में 10, 20, 25 पेड़ लगा दिए
1: जी,
0: क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी ऐसा करते थे
1: जी,
0: और आज जो पेड़ लगे हुए हमारे बुजुर्गों के लगे हुए
1: जी,
0: तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है अगर आपने एक वृक्ष लगा दिया
1: जी,
0: और अपने जीवन में अगर 10, 20, 50, 100 वृक्ष लगा के और उसका संरक्षण कर लिया, तो मिट्टी के लिए सबसे बड़ा भोजन जो मिट्टी का है
1: जी, जी
0: वो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इसी खाद है, यही मिट्टी का भोजन है, यही मिट्टी उनके लिए उर्वरक बनती है
1: जी।
0: तो सबसे बड़ा काम है कि वृक्ष लगा दे हमारी मिट्टी स्वास्थ्य।
1: सर आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल नेटवर्किंग का बड़ा इस्तेमाल है, वो बढ़ता ही, मतलब बिना उसके तो लाइफ आजकल है ही नहीं, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए?
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया का भी एक बड़ा उपयोग किया जा सकता है
1: जी।
0: अगर आप कुछ अच्छे वीडियोस हैं, कुछ अच्छे क्लिप्स हैं
1: जी,
0: जो लोगों को जानने के लिए बहुत शॉर्ट
1: जी,
0: और यंग जनरेशन को हम इसमें अवेयर कर सकते हैं
1: जी।
0: इसमें हमको रोल ये करना पड़ेगा कि इसके दुष्परिणाम हमको पहले प्रेजेंट करने होते हैं।
1: अच्छा।
0: आज हम मिट्टी को किससे दूषित कर रहे हैं और उससे क्या हानि हो सकती है आने वाली जनरेशन के लिए और वर्तमान में
1: जी, जी,
0: क्या समस्याएं आ रही
1: जी।
0: जैसे हम कहें आज एक समस्या बड़ी देखने को मिल रही है मेडिकल साइंस में
1: जी।
0: हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले वो एंटीबायोटिक के साथ में जिंकोविट
1: जी
0: या मल्टीविटामिन टैबलेट पहले लिखता है
1: जी, जी।
0: जो विटामिन की मिनरल्स की जो डिफिशियंसी हमारे शरीर में मानव शरीर में आ रही है वो कहाँ से आ रही है?
1: जी, जी।
0: हमारे मिट्टी से आ रही, क्योंकि मिट्टी में डिफिशियंसी है इसलिए वो जो मिट्टी से ग्रो हो रहा है
1: जी,
0: फूड चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे ग्रेन्स हो, चाहे ऑयल सीड्स हो, पल्सेस हो, सीरियल्स हो
1: जी,
0: क्योंकि सारा विटामिन मिनरल्स हमें इन फ्रूट से ही मिलता है
1: जी।
0: अगर मिट्टी में नहीं होगा तो फूड में भी नहीं आएगा और फूड में नहीं होगा तो हमारे शरीर में भी नहीं आएगा, सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो हमें मिट्टी में ये सारी चीजें रखना आवश्यक है
1: जी।
0: मिट्टी में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फूड भी हमारी साइकिल में होगा और हम फिट रहेंगे।
1: कृषि विज्ञान केंद्र की क्या कुछ भूमिका रहती है इसमें और क्या कुछ कार्यक्रम भी चलते हैं गाँव में स्टूडेंट्स के लिए जागरूक करने के लिए और क्या कुछ आप लोग करते हैं?
0: बिल्कुल, कृषि विज्ञान सारे समस्त पूरे भारत में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है
1: जी, जी।
0: और समस्त कृषि विज्ञान केंद्र सॉइल हेल्थ को लेकर चाहे वो उनका टेस्टिंग हो, चाहे नरवाई प्रबंधन हो, चाहे माइक्रोब्स की बात हो, चाहे न्यूट्रेंट्स की बात हो
1: जी, जी।
0: सॉइल हेल्थ को लेके समय समय पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण है, अवेयरनेस कार्यक्रम है
1: जी,
0: चाहे बायो फर्टिलाइजर्स हो, उस सभी प्रकार के ट्रेनिंग फार्मर्स को अवेयर कराता है गांव में जाकर या ऑन कैंपस कृषि विज्ञान केंद्र में। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र तो 100% जैविक कृषि कर रहा है पूरे नर्मदापुरम में, क्या हम तो पूरे मध्य प्रदेश में ही कह सकते हैं कि ये 100% हमारा पूरा 100% जैविक केंद्र है
1: जी।
0: किसी प्रकार का हम कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करते हैं
1: जी, जी।
0: तो निश्चित रूप से हमारा कृषि विज्ञान केंद्र और समस्त कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं जिससे हमारी मिट्टी सालों साल टिकाऊ रहे और उपजाऊ रहे और हमें समस्त पूरे रास्ते का फूड देती रहे।
1: सर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी आप लोग मतलब वहां पर भी होता है या गांव वगैरह में या शहरों में भी? क्या
0: बिल्कुल, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ होते हैं वो हम गांव में भी देते हैं और हमारे कैंपस में भी देते हैं, बट लेकिन हमारी सीमाएं हैं
1: जी,
0: हम नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट जिले में समस्त गांव में
1: जी,
0: और हमारे यहाँ अपने केंद्र पर भी देते हैं
1: जी।
0: और 5 दिसंबर को भी हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण सहायता हो रहा है, एक सेमिनार कर रहे हैं किसानों को, और जो किसान को सुन रहे हैं वो हमारे केंद्र पर आ सकते हैं उसके विषय में पूरी चर्चा करके और किसानों को इसको इसके बारे में भी अवगत करें।
1: सर अब हम इंटरव्यू को समाप्त करें, आखिर में मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि एक स्थायी मृदा प्रबंधन के लिए आप क्या क्या लोगों से कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, किन बातों का वो ख्याल रखें ताकि जो हमारा आज है, जो भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कोई परेशानी ना हो और वो खुलकर अपना जीवन जी सकें।
0: देखिए, पहले ही मैंने कहा कि धरती हमारी माता है
1: जी।
0: और अगर वसुधैव कुटुंब रखना है
1: जी,
0: तो हमें मृदा स्वास्थ्य को बहुत रखना बहुत जरूरी है
1: जी जी।
0: और इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा
1: जी
0: कि अंधाधुंध दौड़ में
1: जी
0: हम कहीं ना कहीं धरती माता को ना पीछे छोड़ते
1: जी।
0: जिस प्रकार से हम फर्टिलाइजर अनबैलेंस फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम पेस्टिसाइड्स हैं जहर हैं उनका उपयोग कर रहे हैं
1: जी,
0: जिस प्रकार से हम नरवाई जला रहे हैं
1: जी,
0: तो ये सारी चीजें करना ठीक नहीं है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हम अपनी धरती माता को बचाकर रखें
1: जी,
0: और इसको टिकाऊ रखें जिससे हमारा जीवन और ये धरती हमेशा चलती रहे
1: जी।
0: फसल चक्र अपनाएं, नरवाई प्रबंधन करें, हरी खाद का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद का उपयोग करें। इन सभी चीजों को करेंगे तो निश्चित रूप से किसान का देश पूरा विश्व खुशहाल रहेगा।
1: हम कोई दिवस आता है तो उस दिन कर लेते हैं सारी चीज, लेकिन रोज इंसान अपनी प्रैक्टिस में इन चीजों को लाए और सब लोग लाए, बच्चे भी लाए, बुजुर्ग भी लाए, बड़े भी लाए, सब लोग लाए, शहरों में गाँव में, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है।
0: देखिए, निश्चित रूप से सही कहा कि हर व्यक्ति को इसमें प्रयास करना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि इसमें एक ही चीज किसान का ही नहीं
1: जी,
0: चाहे शहर हो, चाहे मानव जीवन का हर व्यक्ति, चाहे भले ही वो खेतहार मजदूर ना हो
1: जी,
0: और मतलब खेती वाला करने वाला किसान ही ना हो
1: जी,
0: उसका भी बड़ा अहम रोल है
1: जी।
0: क्योंकि फूड तो कहीं ना कहीं वो जमीन से ही खा रहा है, जमीन से आ रहा है, लेकिन बट हमें पॉलिथिन्स है या हमें अन्य चीजें हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं, तो उन चीजों का भी बिल्कुल ध्यान, हर व्यक्ति का इसमें रोल है
1: जी।
0: अगर वो ये कहे कि मेरे पेड़ लगाने से क्या होगा
1: जी,
0: ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे सीड्स वॉल है ले जाके अगर जंगल में ही डाल देंगे या हम पेड़ के किनारे डाल दें
1: जी जी,
0: धीरे धीरे करके हमारा एक चीटी जैसा भी योगदान
1: जी,
0: एक बड़ा योगदान बन जाता है
1: जी जी।
0: लोग सोचते हैं कि यार हमारे एक पेड़ लगाने से क्या होगा
1: जी,
0: लेकिन हमारे एक पेड़ से अगर हम सारे लोग एक एक पेड़ लगा दो तो आज 150 करोड़ हमारे पूरे भारत में लगता है।
1: सही बात है,
0: तो सभी का एक चिट्ठी का भी योगदान होता है, तो निश्चित रूप से वो बड़ा योगदान हो जाता है और हम सभी का योगदान उसमें करना चाहिए, चाहे पॉलिथिन से मृदा स्वास्थ्य की मदद संरक्षण के लिए हम सबको धीरे धीरे प्रयास करके और उसको हमको समझते हुए जाना चाहिए।
1: सर, इतने अच्छी बात पर हम इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। सर, आपने रेडियो आजाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। हमें उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों बाद।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, आज के योग संवाद में हम प्रवेश कर रहे हैं उस विचार भूमि में जहां मनुष्य के जीवन का मार्ग अदृश्य भाग्य की रेखाओं से नहीं बल्कि उसके संकल्प, साधना और पुरुषार्थ से आकार देता है। योग वासिष्ठ हमें याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य के भीतर उन्हें बदलने की शक्ति विद्यमान है। दैव के भरोसे बैठ जाना चेतना को जड़ करता है, जबकि पुरुषार्थ जीवन में गति, दिशा और संभावना भरता है। तो आज का संवाद इसी प्रश्न के साथ कि क्या भाग्य मनुष्य को चलाता है या मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य रचता है? क्या दैव के आगे हाथ जोड़ देना ही नियति है या अपने कर्मों की लौ से अंधकार को हटाना ही मनुष्य की पहचान है? आइए योग वासिष्ठ के आलोक में समझें पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद के निराकरण को। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका।
1: जी नमस्कार।
0: पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद का निराकरण आज इस अंक में होने जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें आप बताएं कि दैववाद से तात्पर्य क्या है।
1: दैववाद को महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि श्री राम पूर्व जन्म के पौरुष से ही दैव का जन्म होता है, यानी पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ही दैव है, ऐसा व्यक्ति को मानना चाहिए। और सामान्यतया लोग समझते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ को भोग रहे हैं, सामान्यतया लोग समझते हैं कि हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। प्रारब्ध वास्तव में देखें तो पूर्व का कर्म है, यानी प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध भोग नहीं है।
0: जी, जी, जी।
1: तो ऐसे में बार बार वशिष्ठ जी राम जी को इस चीज के प्रति सचेत कर रहे हैं कि कर्म के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, कर्म ही फल का निर्माण करता है। और जो व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि जो फल है वो देवदैव भरोसे मिल रहा है, ये बहुत बड़ी मूर्ता है। ऐसा है नहीं, वो पूर्व के कर्म का ही परिणाम है ये फल।
0: तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व जन्म के कर्म का जो परिणाम है वही प्रारब्ध है, और इसको इस जन्म के कर्म से बदला भी जा सकता है।
1: जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो कर्म हैं, खासकर प्रारब्ध कर्म और इस समय का जो क्रियमाण कर्म है, ये दोनों कर्म आपस में संघर्ष करते हैं। और अगर आप अपने वर्तमान के कर्म से, वर्तमान के प्रयत्न से पूर्व के कर्म को आप बदल सकते हैं, उसको क्षीण कर सकते हैं, और अगर वर्तमान में आप कर्महीन हो जाएंगे तो पूर्व का कर्म प्रभावित करेगा आपको। तो इस तरीके से आपके पास जो विकल्प है वो है पुरुषार्थ करने का, पुरुषार्थ से च्युत होने का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ।
0: जी, जी जी जी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुरुषार्थ हर स्थिति में आवश्यक है। अच्छा, जीवात्मा का संसार से उद्धार कैसे हो ये बताएं आप।
1: इसमें बड़ा सुंदर कहा है वशिष्ठ जी ने, कहा है कि हे राम, जो अपने को दैव के अधीन समझते हैं और सोचते हैं कि मैं कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ, हुई है सोई जो राम रच राखा, का कोई तर्क बढ़ावे साखा। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ऐसी विचारधारा ठीक नहीं है। इस विचारधारा को सत्संग तथा सतशास्त्र के अभ्यास के द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा इस संसार से बलपूर्वक उद्धार करें अपना। ऐसा करें कि आपको इसके लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में ऐसी अगर घटनाएं घट रही हैं जो आपको लगता है कि ये आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में आपको इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप और सजगता के साथ और जागरूकता के साथ अपने कर्म के प्रति सचेत हों और कर्म करने के प्रति तत्पर हों। क्योंकि आपने सुना होगा कई बार लोक साहित्य में संतों ने कहा है कि बोया पे बबूल का आम कहां से खाए, तो अब ऐसे में जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फल लग जाता है जो आपके कर्म से अलग हो, तो कर्म और फल का इतना गहरा संबंध है। और ऐसे लोग जो कर्म फल के बारे में सोचते हैं वो निश्चित ही बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि कर्म फल का निर्माण कर्म करता है। तो ऐसे में हमारा ध्यान कर्म पर होना चाहिए, न कि कर्म फल पर। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जबकि संसार का आदमी क्या करता है, वो हमेशा फल पर अपने को केंद्रित करता है। और देखिए, फल पर केंद्रित होने से आप एक बात अपने कर्म में चूकते तो हैं ही, साथ ही साथ आपके जीवन में भय, आपके जीवन में संशय, आत्मविश्वास की कमी, तमाम सारे ऐसे और विकृतियों के जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है जब आप कर्म फल के बारे में सोचते हैं। जबकि कर्म के बारे में आप सोचें तो निश्चित ही आपके बहुत सारे संशय दूर होंगे। इसीलिए कहा भी जाता है, एक वर्ड आता है प्रोकास्टिनेशन, जहां पर हम जब भी कोई काम करने चलते हैं तो सोचते हैं कि इसका क्या होगा, या ऐसा मैंने किया था तो उसका परिणाम नहीं आया। तो इस तरीके से सोचने में ये मन की चालाकी है, ये कह सकते हैं कि आपका मन आपको धोखा दे रहा है। जबकि महर्षि वशिष्ठ जी इसी चीज को दूर करने के लिए राम से कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ कर्म करना है और जो भी भोग है वो कर्म का ही है। इसलिए प्रारब्ध जो है वो जो दैव शब्द है वो पूर्व का कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म है, या पूर्व का कर्म कह लें कि पहले के कर्म का परिणाम आज आप भोग रहे हैं।
0: जी जी,
1: जो भी परिणाम बनता है वो कर्म से ही तो बनेगा।
0: बिल्कुल जी। तो आपने दैव को बताया और बार बार पौरुष का जिक्र इसमें हो रहा है, तो आप बताएं कि वशिष्ठ जी पौरुष किसे कहते हैं?
1: वशिष्ठ जी पौरुष कहते हैं आप जो दैव की संज्ञा दे रहे हैं उस संज्ञा को छोड़कर उसको अपने पूर्व का प्रयत्न अगर माने आप तो उसको वो पौरुष कहते हैं। कि पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई दैव की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन वो पूर्व जन्म का पौरुष है, वो दैव नहीं है। आप संज्ञा दे रहे हैं दीजिए, लेकिन उस संज्ञा से अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अर्थ जो है जब भी दैव की बात आएगी तो वो पूर्व का पौरुष है, न कि वो कोई और पौरुष के अतिरिक्त कुछ है। तो वो बार बार उस पौरुष की तरफ उनका ध्यान खींच रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे राम जी ने जो जगत को देखा, जगत में जो दृश्य को देखा तीर्थाटन के दौरान, तो उनको ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग कर्म तो कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन प्रयत्न के बाद भी जो उनको भोग में मिल रहा है वो दुख मिल रहा है, दुख से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने प्रयत्न से अपने को विरत करने का प्रयास किया और उसी प्रयास में जो है इस ग्रंथ के द्वारा उन्हें उपदेश दिया जा रहा है। तो ऐसे में प्रयत्न से व्यक्ति कभी भी ना चूके, यानी प्रयत्न करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मान करके वो अपने जीवन की यात्रा करे, इस बात पर बार बार ध्यान दिलाया गया है। इसीलिए योग को कर्मयोग भी कहा गया है कि योग कर्म योग है, कर्म से विरत होने का योग नहीं है।
0: योग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये समझाया। अच्छा बताएं कि ये ग्रंथ क्या कहता है कि इस जगत में कौन दीन और दुखी है?
1: दीन और दुखी वो लोग हैं जो विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत कर्म पौरुष या दैव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते।
0: अच्छा,
1: वो लोग दीन हैं, प्रयत्न नहीं करते तथा सदा दैव के भरोसे बैठे रहते हैं। वे दीन, पामर और मूढ़ हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्मकल्याण कभी भी सिद्ध नहीं होगा,
0: कभी भी संभव नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हो गया
1: जी, कि जो लोग पूर्व के भरोसे बैठे हैं वो कतई वही दीन हैं।
0: हाँ।
1: जो आज कर्म कर रहे हैं या वर्तमान में पूर्व के परिणाम को बदलने के लिए प्रयत्नशील है,
0: प्रयत्नशील
1: वो लोग दीन नहीं है। हाँ। और जो ये मान के बैठे हैं कि यही लिखा था भाग्य में,
0: ये
1: हो रहा है,
0: यही होना था,
1: तो वो दीन है, पामर है, मूढ़ है।
0: जी जी,
1: क्योंकि पुरुषार्थ से ही आप अपने आत्म कल्याण को सिद्ध कर सकते हैं।
0: तो आपने पुरुषार्थ की बात की है, तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि पुरुषार्थ के भी प्रकार है, अगर है तो कितने हैं?
1: आपने सुंदर कहा कि पुरुषार्थ दो प्रकार का यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक पूर्व जन्म के जो कर्म है उनके द्वारा पुरुषार्थ, और एक जो वर्तमान में आप प्रयत्न कर रहे हैं ये इस समय का पुरुषार्थ वर्तमान में।
0: जी, जी,
1: ये
0: जी,
1: दोनों आपके प्रयत्न की बात है। तो कहते हैं ये दोनों आपस में भेड़ों की तरह लड़ते हैं और उनमें जो भी बलवान होता है वह दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है, पीछे छोड़ देता है। तो दो तरह के पुरुषार्थ की संकल्पना वशिष्ठ जी ने दी राम जी को, कि जो एक प्रारब्ध है वो पुरुषार्थ जो आपने पहले किया है और जो वर्तमान में आप कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में संघर्षरत हैं। अगर आप चाहें कि वर्तमान के प्रयत्न से पूर्व के पुरुषार्थ को बदलना, तो ये संभव है। हाँ, ये असंभव नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को इस संसार में, खासकर इस ग्रंथ के उपदेश को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए कि हमें कभी भी पुरुषार्थ से च्युत नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई विचार जो हमें पुरुषार्थ करने में बाधा उत्पन्न करे, हाँ, उन विचारों से हमें अपने को मुक्त रखना चाहिए, नहीं तो वो हमें दीनता की श्रेणी में लाके खड़ा कर देंगे। दीन वह है जो अपने पर भरोसा नहीं करता, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं करता, और किसी और भरोसे अपने आप को बिठा दे, कर्म छोड़ दे, ऐसे लोग दीन हैं।
0: अच्छा, कर्म और भाग्य की लड़ाई तो बहुत इस पर चर्चा होती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस ग्रंथ में क्या बताया गया है कि प्रारब्ध और प्रयत्न में बलवान कौन है?
1: प्रारब्ध और प्रयत्न में हमेशा प्रयत्न बलवान है, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ, इन दोनों में वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षता बलवान है। इसलिए जो ज्ञानी है, अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर हमेशा सतशास्त्रों का अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। तो संसार सागर से उद्धार करने का जो साधन है वह है सतशास्त्रों का अभ्यास, पहला काम। क्योंकि सतशास्त्रों में आपको इस तरह की देशना मिलेगी जिसके द्वारा आप अपनी दीनता को दूर करें, भटकाव से अपने आप को बचाएं और ऐसी किसी भी भ्रामक मन स्थिति को अपने पर हावी न होने दें जिसकी वजह से आपका वर्तमान जो प्रयत्न है वो किसी प्रकार से बाधित हो। और दूसरा सत्संग द्वारा, अब सत्संग द्वारा बुद्धि, यहाँ पर सत्संग की महिमा बहुत बार बताई गई है क्योंकि सत्संग के द्वारा ही आप अपने बुद्धि को निर्मल कर सकते हैं। बुद्धि जो तमाम असत चीजों का संग कर ली है उससे मिटाने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते ही हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के विवेक का दीप नहीं जलता, जिस विवेक के प्रकाश में आप नीर छीर जो विवेकी दृष्टिकोण कहते हैं, जिसको हंस से कबीरदास जी हंस कहते हैं कि ये दृष्टि आप में सद असद विवेक यानी सत्य और असत को जानने का जो विवेक है वो सतशास्त्र के अभ्यास और सत्संग से बुद्धि को निर्मल करने के बाद ही आप उसके योग्य बनते हैं और उसको धारण कर पाएंगे।
0: अच्छा, अर्थ और कामना की जो सिद्धि है वो किस तरह से होती है?
1: हाँ, ये सुंदर आपने प्रश्न किया। ये कहते हैं वशिष्ठ जी कि राम, इस संसार में जो लोग अर्थ और कामना के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको इस बात को भली भांति जानना चाहिए कि पूर्व कृत कर्म यानी पूर्व का जो पुरुषार्थ है वो अर्थ और काम को सिद्ध करने में वो सहयोगी है। लेकिन जो आपका प्रयत्न है वो धर्माचरण करने में और मुक्ति को दिलाने में आपका वर्तमान प्रयत्न जो है आपको साधक बनाएगा, सिद्ध करेगा वो।
0: अच्छा।
1: तो पूर्वकृत कर्म से आप अपने जीवन में अर्थ और काम की सिद्धि कर सकते हैं, उसमें उसका सहयोग है,
0: होती है।
1: हाँ, होती है,
0: अपने आप होती है।
1: अपने आप तो ना कहिए लेकिन उसमें उसका एक बल होता है वो आपको उस तरह से, इसीलिए आप संसार में देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी कामना की पूर्ति और अर्थ को सिद्ध करने में लगातार प्रयत्न करते हैं लेकिन प्रयत्न के बाद भी वो विफल होते हैं। तो इस विफलता से कई बार निराशा भी आती है तो ये निराशा जीवन में ना आए तो इसके रहस्य को बताने के लिए उन्होंने ये कहा कि पूर्वकृत कर्म या प्रारब्ध कर्म जो है वो आपके अर्थ और काम की सिद्धि में सहयोग करेगा और जो प्रयत्न आपका है वो प्रयत्न आपके धर्म और मोक्ष की सिद्धि करेगा।
0: लेकिन अब एक मेरे मन में ये प्रश्न है कि अर्थ और कामना की सिद्धि अगर पूर्व जन्म के कर्म से या पूर्व के कर्म से प्रारब्ध से है तो इसे परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं?
1: बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जब आप प्रयत्न पूर्वक धर्म करेंगे तो धर्म से अर्थ आएगा।
0: जी,
1: तो अर्थ जब आएगा, धर्म से आने वाला अर्थ कामनाओं को सिद्ध करता है, अधर्म से प्राप्त जो धन है उस धर्म से, उस धन से कभी भी कामनाएं सिद्ध नहीं होती। इसीलिए आप देखिएगा कि जो वर्तमान का जो प्रयत्न है वो आपको धर्म का मतलब यहाँ कतई बहुत सीमित अर्थ में न लिया जाए, धर्म का मतलब अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना भी धर्म है। जैसे आप उदाहरण देखिए, मैं सहज बच्चों के लिए उदाहरण दूंगा कि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ साधनों का अभाव है, माता पिता के पास संसाधन नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात का अगर वो विचार पूर्वक विवेक से विचार करते हैं और सोचते हैं कि हम अपने घर की स्थिति या अपने माता पिता की स्थिति को कैसे बदल सकते हैं, तो वो अपने को अपने कर्तव्य कर्म में अगर तल्लीन करते हैं, अपने धर्म का सही आचरण करते हैं, तो देखते हैं कि वो सारी बाधाओं के पार निकल के वो अचीव करते हैं जो बहुत अच्छे घरों के बच्चे नहीं कर पाते। तो क्या है, उन्होंने अपने प्रयत्न से धर्म को साधा, तो फिर ये जो अर्थ और काम कि सिद्धि तो अपने आप हो गई। तो ऐसे में आप देखें, एक किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि आप अगर किसी गरीब के घर में पैदा हुए हैं ये आपका भाग्य हो सकता है, लेकिन आप गरीब अगर मर रहे हैं तो ये आपके भाग्य का विषय नहीं है। इसका मतलब कि आपने कर्म का विषय, आपने प्रयत्न नहीं किया, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो अंततः ये भी यही बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आपको अपने प्रयत्न से अपने धर्म का आचरण करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने वर्तमान की परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे,
0: मुक्त हो जाएंगे।
1: ये ठीक है कि वर्तमान परिस्थितियां चाहे प्रतिकूल हो अनुकूल हो अलग बात है, लेकिन उनको बनाए रखने में वर्तमान का प्रयत्न ही आपको सहायक होगा। आप प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाएं तो आप उन्हें सिद्ध नहीं कर सकते।
0: तो ये बहुत आशा देने वाली बात है।
1: जी बिल्कुल
0: जी। अच्छा, मोह के बंधन से मुक्ति किसे मिलती है, क्या कहता है ये ग्रंथ?
1: जी, मोह के बंधन से मुक्ति के लिए ये ग्रंथ कहता है कि जो जगत के मोह के फंदे में लोग फंसे हुए हैं, ऐसे पुरुष सदाचार के द्वारा अपने कर्म को कर इस संसार के मोह रूपी बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं जैसे पिंजड़े से सिंह निकल जाता है। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म के लिए प्रयत्न करने में कुशल हैं, सदाचार ही जिसका लीला विहार है, वह इस जगत के मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजरे से निकल जाता है। तो ऐसा कह रहे हैं वो। तो इसका मतलब कि सदाचार और सत्कर्म यानी सत प्रयत्न, यही दो ऐसे संसाधन हैं कि जिनके द्वारा आप जगत रूपी बंधन को काटकर अपने को मुक्त कर सकते हैं।
0: जी जी जी। तो ये तो आपने मुक्ति की बात की, अब मैं मनुष्य के स्वार्थ की बात करना चाहती हूँ।
1: जी,
0: स्वार्थ चारों तरफ दिखाई देता है संसार में। हर इंसान का कहना है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। तो संसार में मनुष्य के स्वार्थ का जो कारण है वो क्या है?
1: मनुष्य के स्वार्थ का जो कारण है वो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही मनुष्य का स्वार्थ है। आप देखें तो किसी भी कर्म के पीछे, किसी भी विचार के पीछे आप जो मूल तत्व पाएंगे जिसकी वजह से वो विचार या वो कर्म करने की प्रेरणा मिल रही है, वो यही है कि आपको सुख मिले और या फिर आपके दुख से आपकी निवृत्ति मिले। तो मूल स्वार्थ यही है और यही मनुष्य का स्वार्थ है। उस स्वार्थ की प्राप्ति कराने वाले जो आवश्यक कर्तव्य साधन है, एकमात्र उसी में तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। यानी दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कराने में जो साधन है, उन्हीं साधनों में जो लोग तत्पर हैं वही अपने पौरुष का उपयोग कर रहे हैं, वही अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर पाएंगे। लेकिन जो उन साधनों से हट करके कहीं और अपनी ऊर्जा या अपना समय बिता रहे हैं या अपना प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनके हाथ तो विफलता ही लगेगी। तो इसलिए जो पौरुष शब्द है वो पौरुष शब्द इसीलिए है कि आप अपने स्वार्थ, स्वार्थ मतलब सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, इसको सिद्ध करने में लगातार साधन करें।
0: जी, जी,
1: न कि साधन से अपने आप को विरत करें।
0: विरत करें
1: जी।
0: अच्छा, इसमें मुझे परमार्थ की सिद्धि की बात भी नजर आई थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि परमार्थ की जो सिद्धि है वो कैसे होती है।
1: जी, परमार्थ के लिए उन्होंने कहा है कि परमार्थ है अपने परम तत्व को जानना, अपने जो मतलब जो आपका मूल स्वरूप है जिसको आप ब्रह्म स्वरूप कह लें, उसकी अभिप्राप्ति कैसे हो, वो है परमार्थ, परम अर्थ जिसका। इस स्वार्थ में तो ये आ गया कि आप अपने सुख की कामना को सिद्ध करें और दुख से मुक्त हों, लेकिन परम जो है जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, जो वर्ड आता है कि आप अपना आत्म साक्षात्कार करें, तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए आप वही हैं जिसमें ये सारा जगत है और जिसकी वजह से सारे जगत में चेतना है। तो उसको जब आप प्राप्त करते हैं या उसको सिद्ध करते हैं, तब जाके आप अपने परमार्थ को सिद्ध कर पाते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा अपना आत्म कल्याण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, तब जाकर के परमार्थ की सिद्धि होगी। आत्म कल्याण के लिए जब आप प्रयत्न करेंगे तो परमार्थ की सिद्धि होगी।
0: अच्छा, ये बताएं कि इस ग्रंथ में जन्म मरण रूपी भवरोग को शांत करने का उपाय भी बताया गया है, तो वो थोड़ा सा उसकी आप व्याख्या कर दें ताकि हमारे सुनने वालों के लिए बात आसान हो जाए।
1: जी, इसमें उन्होंने कहा है कि अधिकारी जो लोग हैं वह नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ मधुर और उत्कृष्ट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भवरोग को शांत करें। ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी जनों की सेवा करें, और ऐसे नित्य संतुष्ट लोग जो मैंने हमेशा संतुष्ट हों। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारा ज्ञान है, वो ज्ञान आपके संतोष में कितना सहयोगी है, और अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपका ज्ञान कभी भी कह सकते हैं कि वो सत्य ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि संतोष से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो परम सुख है
0: जी।
1: और यहाँ पर संसार में जो देखते हैं हम लोग कि संतोष को हम लोग मानते हैं कि संतोष एक प्रकार का कह सकते हैं कि अपने कर्म से पलायन करने की एक विधा है कि जो है मिल गया है वो उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्ट, संतोष का मतलब चित्त की शांति। जब चित्त शांत होगा तो उस चित्त के द्वारा जो विचार होगा वो सद्विचार होगा, सद्कर्म होगा, स्वाध्याय होगा, शास्त्रों का मतलब सही चुनाव होगा। अशांत चित्त में सही विचार नहीं आते, तो तब जाकर के सुख का अनुभव होता है। तो ऐसे में यही वो औषधि है जिससे आप जन्म मरण रूप जो भवरोग है, इस भवरोग में अच्छा जन्म मरण को हम लोग सोचते हैं कि शरीर का जन्म हुआ और शरीर मर गया, ऐसा नहीं है। आप देखिए कामनाओं का भी जन्म होता है, कामनाएं भी मरती हैं। तो ऐसे में जन्म मरण का मतलब ये हुआ कि आप ऐसी किसी विचार के साथ जो विचार ने जन्म लिया और उसकी वजह से आपको दुख हो रहा है या सुख हो रहा है तो उसका बदलाव होगा। तो इस परम सत्य को जानते हुए आप इस संसार में अगर व्यवहार करें तो आप हर पल संतुष्ट रह सकते हैं और एक जीवन में शांति बनी रहेगी और परम पुरुषार्थ जो है वो सिद्ध होगा।
0: अच्छा, मैं चाहती हूँ कि चूंकि समय समापन की ओर है तो मैं चाहती हूँ कि जो भी चर्चा हमने आज की है उसे एक संक्षेप में आप हमारे सुनने वालों के लिए उनके लिए रखें और एक संदेश अपनी तरफ से। आप,
1: मैं इस संदेश में यही दूंगा उन्हें कि आप हमेशा सतशास्त्रों का स्वाध्याय करें, सत्संग करें
0: जी।
1: क्योंकि मन को निर्मल करने का ये अमोघ अस्त्र है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका मन जिन मलिनता की वजह से दूषित हुआ है या फिर कहते हैं विषाद से ग्रस्त हुआ है, दुखी हुआ है या तमाम तरह के आपके मन में ऐसे उथल पुथल चल रहे हैं जिससे आप अपने प्रयत्न में बाधा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा अगर लगातार आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही आप मन को निर्मल कर पाएंगे और जो निर्मल मन का होगा वो निश्चित ही उसके चित्त में भगवान या वो परम तत्व जिसको हम कहते हैं परम पुरुषार्थ से जिसकी सिद्धि होती है उसका आत्म कल्याण होगा। तो हमें लगातार सतशास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग करना चाहिए, यही मैं अपने श्रोताओं से अपेक्षा रखूंगा।
0: जी जी, और पुरुषार्थ और दैववाद को भी संक्षेप में आप एक बार और मतलब एक अपील की तरह कहने मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये बात बहुत रहती है लोगों के मन में, बहुत होती है और जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं तो कई बार की लगातार की परेशानियों को देखने के बाद मनुष्य इस तरह से सोचने लगता है कि यही हमारा जीवन है, यही हमारा भाग्य है, ऐसा ही लिखा है। तो एक उत्साहवर्धन की तरह
1: मैं इसे ही कहूंगा कि देखिए ये भी एक मन का आपको शांत करने का या कह सकते हैं बेचैनी से दूर करने का एक आधार है कि चलो आप उससे अपने आप को व्यथित होने से रोक लें
0: या कहें कि उस परिस्थिति को सहने का एक
1: सहने का आधार है, ये कह सकते हैं मैकेनिज्म
0: है। तो
1: बिल्कुल
0: ये
1: माइंड मैकेनिज्म है कि जब आप किसी भी चीज को जब अपने वश में नहीं कर पाते तो ऐसा है कि ना आप उस नाम से टूटे नहीं बल्कि आप अपने आप को संभाल कर आगे फिर अच्छे प्रयत्न के लिए अपने को बनाए रखें
0: जी।
1: तो ये भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने दैववाद के निराकरण की बात की उन्होंने कहा कि ये भी जो आपके जीवन में अनचाहा परिणाम आ रहा है ये परिणाम आपके पूर्व के कर्म का परिणाम है, यानी पूर्व में आपने ऐसा कर्म किया है तो उस घटना को याद करके आप वर्तमान में ऐसे कर्म से अपने आप को बचाएं कि फिर ऐसे किसी परिणाम की प्राप्ति आपको न हो जो आपके मन में क्षोभ उत्पन्न करे। सुकरात एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं जो बड़े क्रूप थे लेकिन वो दर्पण देखते थे बार बार, तो दर्पण देखते थे तो लोग सोचते थे कि आप बार बार अपना चेहरा देखते होंगे तो ये कुरूपता दिखती होगी तो फिर आपको तो क्षोभ होता होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बार बार कष्ट क्यों पहुंचाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने को कष्ट नहीं पहुंचाता, मैं बार बार अपने चेहरे को इसलिए देखता हूं कि मेरा चेहरा तो लोगों के आकर्षण के योग्य नहीं है, तो ऐसे में मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जो लोगों को हमसे दूर ले जाए, हमें सजग बनाए रखे। और जो लोग सुंदर हैं उनको तो मैं कहूंगा कि वो और अपने चेहरे को देखें क्योंकि वो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए ऐसे कर्म करें ताकि कहीं उनकी सुंदरता लोग भूल करके उनको कर्मों से उनको याद न करने लगे। तो उन्हें अपने सौंदर्य के अनुसार अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो यही बात वशिष्ठ जी ने भी कही है कि आपके हाथ में आपका प्रयत्न है, जो वर्तमान का क्रियमाण कर्म है इस कर्म से आप पूर्व के भोग को भी बदलने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर वर्तमान में आपने कर्म से अपने को अलग किया, विरत किया, तो पूर्व का जो भोग है वो तो है ही, आपने और भविष्य के लिए ऐसे भोगों का निर्माण कर लिया जो आपको विषाद में ले जाएंगे, दुख में ले जाएंगे। तो इसलिए वर्तमान में सजगता हमेशा कर्मों के प्रति होनी चाहिए। कहा भी जाता है कि जब आप जो बीज बो रहे हैं, यानी जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के प्रति जागरूक अगर हों तो परिणाम निश्चित ही वही होगा जो आप चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अनचाहा कर्म करके मनचाहा परिणाम नहीं पाया जा सकता।
0: क्या बात है। बिल्कुल, तो बहुत ही सुंदर बात कि अनचाहा कर्म करके मनचाहा परिणाम नहीं मिल सकता है, तो बहुत सतर्क होने की जरूरत है। तो शशिकांत जी, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, बहुत रोचक रही, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद के निराकरण पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम तो।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही मार्च शैली में। ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग है।
1: हाँ बेटा कैसे?
2: अरे आपने, क्योंकि आपका गुरु सुंदरलाल जी है।
1: हाँ।
2: मधुसूदन ने मार्च लिखे के बसंती रंग जमायो।
1: बसंती रंग जमायो।
2: अच्छा अब हमारे, आप ये बताओ क्या आपका मन में यो क्रांति को विचार आयो कहां से?
1: अरे बेटा, या तो घनी बड़ी बात पूछ ली तेना हमारा से। जदे मैं छोटो थो, तुम्हारा एक काका जी देश छोड़ी के चली गया। ने भी वहां से क्रांतिकारी गतिविधि चला गया था। और हमारा एक काका जी के अंग्रेज सरकार पकड़ी के ले गई।
2: अच्छा।
1: जद से ही मारो अंग्रेज सरकार का खिलाफ हुई।
2: फिर कहीं हो
1: बेटा, जदे मैं छोटो थो तो पिताजी के साथ खेत पे भी जातो थो।
2: अच्छा।
1: तो सुन मैंने कहीं
2: कर,
1: मैं बोलो पिताजी।
2: हाँ?
1: यो जो तुम धान उगाओ खेत का माँ है।
2: अच्छा।
1: तो मैं भी बंदूक उगाऊंगा खेत का
2: माँ। वाह, पिताजी कहीं बोलिया?
1: अरे बेटा, पिताजी बोलिया कि बेटा हमारा खेत में तो धान उगे है जिससे ही सबको पेट भरी हो जाए।
2: सही बात है। फिर आपने कही क्यों?
1: मैं बोलो पिताजी, बंदूकें भी ढेर उगेगी जो दुश्मन के मार खा गए।
2: वाह, फिर आगे कही?
1: अरे बेटा, फिर हमारा पिताजी बोला कि जा भगत घरे जा। मैं बोलो पिताजी, बालक हूं पर समझू पीर पराई रे, अंग्रेजों का घाव की नहीं भर पाई रे।
2: सही बात।
1: बेटा भीतर हो, पिताजी घरे आई।
2: अच्छा।
1: पिताजी का पाछे पाछे पाछे पाछे घूम तो मैं भी घरे। मैं बोलो पिताजी, महाराज से इन काकियों को दुख नहीं देखो जाए, इन काकियों को दुख को कारण ये अंग्रेज सरकार है।
2: फिर
1: पिताजी बोलिया, बेटा महाराज तो अभी नानो है, इतरो समझे योज बोते।
2: या बात तो मैं कहूं हूं कि भारत का बच्चा बच्चा होने के सीखनी चाहिए।
1: एकदम सही बात है बेटा।
2: है, सही बात।
1: देख बेटा, मैंने गदर से जुड़िया सगला नेता उनका बारे में सुनियो है।
2: अच्छा।
1: जैसे गांधी जी।
2: हाँ।
1: करतार सिंह सरावा।
2: अच्छा।
1: लाला लाजपत राय और हमारा चाचा अजीत सिंह जी और भी कई साथ।
2: फिर
1: अरे जदे में थोड़ा बड़ो हुई हो।
2: हाँ।
1: तो पिताजी मारे बता रहा था कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने घणो अत्याचार करियो।
2: तो कई अत्याचार करो करियो, जरा हमारे भी सुनाओ।
1: सुन मारी बात।

0: आराम करके ने घर पहुंचो। तुम्हारी माँ ने बेन दो ही परेशान हो रही थी, पर हमारी माँ तो कहीं नहीं बोली, हमारी बेन बोली पड़ी।
1: अच्छा,
0: माँ माँ भगत आई जो माँ बोली, क्यों रे तू पाठशाला तो नहीं गयो, तो फिर कहाँ गयो तू? मैं बोलियो हमारी माँ हमारी बहन देख ही नहीं सीसी के, मैं शहीदों की मिट्टी लेवाने जलिया वाला बाग गयो तो मैं एक ही पूजा करूँ।
1: तो जल ऐसो अत्याचार करियो जंगल डायर ने।
0: आओ मित्र आओ तुम्हारे ही बताऊं कि जलिया वाला बाग अत्याचार का बाद आंदोलनकारियों ने चोरा चोरी नाम की जगह पे कहीं करियो
1: कहीं करियो। हाँ बताओ।

0: साथियों, इन्हीं घटना का बाद मारा मन में घनी उथल पुथल मची। मारे भी करतार सिंह सराबा का रास्ता पे चलना था, तो मैं पिताजी से बोले, पिताजी मारे भी आगे की पढ़ाई का वास्ते कॉलेज जाना।
1: अच्छा, फिर?
0: अरे पिताजी घड़ा घुस हुई गया।
1: अरे
0: पिताजी बोलिया, बेटा भगत, मैं भी तो यू ही सोच रहे थो कि तू आगे और पढ़ाई करे और देश का वास्ते काम करे।
1: सही बात
0: मित्रों। फिर इन्हीं तरह मैं नेशनल कॉलेज लाहौर पहुंची, वहां हमारे कई नौजवान क्रांतिकारी साथी मिले।
1: अच्छा हो,
0: और अब मैं भी क्रांतिकारी बनी गयो। तो इनकलाब
2: जिंदाबाद,
0: वंदे
2: मातरम,
0: इनकलाब
2: जिंदाबाद।
0: वहां हमारा साथियों ने नौजवान भारत सभा नाम की पार्टी बनाई।
1: अच्छा,
0: पर पैसा की तंगी के कारण हमारा साथियों के ट्रेन तक रुकनी पड़ी, जो काम हमारे बिल्कुल पसंद नहीं था।
1: फिर आगे क्या हुआ?
0: यो काम हमने 7 मार्च 1925 को काकोरी में किया।
1: बताओ बताओ, ये काम उन्हें किनी तरह करी?
0: यो भी सुनो।

0: क्या बात है? मैं पैदा ही हमारा दो भाई उनके क्रांति की आग में ठोकी दी, एक तो शहीद हुई जो और दूसरा जो है विदेश चली जो, को वहां से आंदोलन चले जो। बेटा मैं अब थारा नहीं खोनो चाहूं।
1: पिताजी उन चारी की फांसी देखी के मारो खून भी उबाला मारी है। मारे अंग्रेज सरकार से बदलो ले रही है पिताजी, मैं चुप नहीं बैठी सकूं।
0: अरे तू बदलो ले, मैं थारा मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं थारा मारा दो भाई उनके खो चुके हूं। अब थारे
1: मारी बात सुनो पिताजी।
0: सुना

0: कि मैं चुटनी बेटी सुखू हमारे अंग्रेज सरकार से बदलो ले लू ही।
1: अरे तू बदलो ले।
2: Hey! Arrest him! योजे साहब, योजे इन्हें काकोरी कांड में साथ दियो, योजे योजे।
1: और दशहरा का मैदान मेला में बम फेंको इन्हें, योजे।
2: और करतार सिंह सराबा को जन्मदिन भी मनाए हुए थे।
0: हाँ, मैंने मनाया हूँ।
1: अरे तो तुम्हें मनाने को गुनाह है क्या?
2: अभी जेल में जाओगे तो मालूम पड़ेगा कैसे मनाया।
0: अरे मत छोड़ो।

0: बड़ी मुश्किल से मैंने थारे जेल से छुड़वाए। अब तो थोड़ा दिन शांति रखी। सुन, थारी माँ ने थारे वास्ते एक लड़की देखी। मैं कल उनका पिताजी से बात करने गई हूँ। जब तक तू थोड़ा अपना ध्यान रख।
1: ठीक है पिताजी।
2: कहीं बोली भी नहीं सकूं। ऐसो करूं कि एक पत्र लिखूं जिससे ही हमारी सब बात समझी जाएगा।

0: और कहीं बात है, आजाद जी और लाला जी अभी तक नहीं आया।
1: हाँ, तुम चले गए हो। वे आजाद जी ने

0: हाँ सवा मैया, सभा की रौनक बड़ी। अबे मारो निवेदन तो आपसे कि जब आप आया हो तो थोड़ा सभा को अपने परिचय दे।
1: तो लो अभी दे दा।

0: साथियों, भारत में साइमन कमीशन का सदस्य आया हुआ है। वे कोई नया कानून लागू करे जी का पहले उनके यहाँ से बाहर भगानो।
1: हाँ हाँ भगानो है।
2: हाँ मित्रों, 20 अक्टूबर 1920 का दिन साइमन कमीशन लाहौर आई है और हम सब के मिली के उनका खिलाफ प्रदर्शन करना है।
1: यार है
2: एक खास बात और मित्रों, इन्हीं प्रदर्शन में लाहौर की जनता भी हमारा साथ शामिल हुए।
1: तो बहुत अच्छी बात है।
2: और लाला जी आप सबसे आगे रहो।
0: ठीक है।

0: मित्रों, लाला जी की कहीं खबर है कि नहीं?
1: अभी तक कोई खबर नहीं है।
2: साथियों, इलाज के दौरान लाला जी की मृत्यु हुई, विदेश में शहीद हुई गया।

0: साथियों, हमें लालाजी की मौत का जिम्मेदार जेम्स स्कॉट के मौत की सजा देनी है।
1: हाँ साथियों,
2: देनी है।
3: जयपाल, तुम्हारे स्कॉट की निगरानी रखनी है।
1: हाँ,
0: भगत, तुम पिस्तौल चला दो, मैं निगरानी रखूंगा पुलिस से।
2: भगत, मैं तुम्हारे साथे रहूंगा।
3: ठीक है, तो फिर आओ तुम हमारे साथ।
2: चलो।
3: मुझे बाहर निकलो, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लो।

0: अरे यो तो स्कॉट नहीं सैंडर्स मेरी क्यों?
1: भागो भगवान, भागो पुलिस।
2: चलो अच्छा हो, इसका नहीं तो सैंडर्स बन गयो। अरे मरी गयो देश को दुश्मन।
0: साथियों सब तो ठीक है, पर पूरा लाहौर शहर में पुलिस फैली हुई है। मैं दुर्गा भाभी का साथ कलकत्ता जा रही हूँ, तुम सब भी अपना अपना ठिकाना पे पहुंचो।
2: ठीक है भगत।
0: ठीक है, इंकलाब
3: जिंदाबाद,
0: वंदे
3: मातरम।
2: और साथियों, सांडस हत्याकांड के बाद में अंग्रेजी सरकार बौखलाई गई है, चप्पा चप्पा पे निगरानी बढ़ाई दी गई है। तुम भी अपनो ध्यान रखो साथियों।
0: तो ठीक है साथियों,
4: तुम भी अपना अपना ठिकाना पे पहुंची जाओ,
0: मैं भी छिपता छिपाता अपना ठिकाना पे पहुंची जाऊंगा।
3: इंकलाब
5: जिंदाबाद,
3: इंकलाब
5: जिंदाबाद।
6: अरे हाँ धनलाल, कई बात है।
7: हेलो।
8: नहीं कहीं से।
2: सांडस की हत्या की खबर तो तुम लोगों ने सुनी होगी।
0: जी सुनी था।
2: उसमें एक और खबर है।
6: वाकई सर?
2: उसके अपराधी हमारे शहर में कहीं घूम रहे हैं। पूरे शहर में फैल जाओ, उसको ढूंढ निकालो।
0: जी साहब।
2: जाओ।
6: चल ढूंढ लिया।
2: अरे मिलियो कहीं?
6: नहीं मिलियो यार।
2: देख इधर, देख देख देख देख देख।
9: अब कहाँ ढूंढा के धरती पे समझो, कहाँ
2: समझ भी नहीं आई कि कहाँ ढूंढा तो कहाँ ढूंढा। मार परेशान हो गया यार, इधर अंग्रेज जीवन दे दिया हमारे। कहीं करे यार दादा। अरे पहला थकी गया मैं।
10: क्या था? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
2: जाओ ढूंढो से।
6: जी साहब।
2: चल
6: चल।
11: कलकत्ता में राजनीतिक दल ने अंग्रेज सरकार का बीच एक बहुत बड़ा अधिवेशन चली हुई थी। अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज की मांग पर ठुकराई दी। ने जनता तो पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़ी हुई थी। ने आई अपनो भगत दुर्गा भाभी का साथे कलकत्ता पहुंची गयो बेस बदली के। पर कलकत्ता में राजनीतिक दल उनकी बात सुनी गई, इनको मन बहुत दुखी तो भी पाछा दिल्ली आई गया। देखो देखो दिल्ली में कई करी जा रही। और अभी अपना साथी उनका साथे मीटिंग करी रिया।
3: इंकलाब
5: जिंदाबाद,
3: वंदे
5: मातरम।
3: इंकलाब
5: जिंदाबाद।
12: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
13: अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए।
14: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नगर के साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेकर हाजिर हूँ श्रोताओं आप सभी के बीच मैं आपकी रेडियो दोस्त पूर्वा खले लेकर कार्यक्रम परिक्रमा। तो चलिए चलते हैं परिक्रमा पर और आज हम सबसे पहले आपको लेकर चल रहे हैं कहाँ, तो ये है एक नाट्य समारोह जिसका नाम है एकता समारोह। तो रंगश्री लिटिल बैलेट ट्रूप में साहित्यकार स्वर्गीय सुरेश युगेश शर्मा की स्मृति में आयोजित 5 दिवसीय एकता नाट्य समारोह के तीसरे दिन यानी सोमवार को हास्य नाटक एक मशीन जवानी की का मंचन हुआ। एसएन नौटियाल द्वारा लिखित और अखिलेश वर्मा द्वारा निर्देशित इस नाटक में हास्य परिस्थितियों के जरिए बुढ़ापे, जवानी की चाह, गरीबी और लालच पर चुटेला व्यंग किया गया।

नाटक के अंतर्गत बुजुर्ग कबाड़ी कल्लन मियाँ को उनके कबाड़ में एक अजीब आकार की चीज मिलती है। कल्लन उसे मशीन समझ लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसे चलाकर कमाई का नया रास्ता मिल सकता है। कल्लन की दिल की हसरतें अभी भी जवान हैं। वहीं कर्ज देने वाले मिर्जा अपने पैसे वापस लेने के लिए कल्लन के घर के चक्कर लगाते रहते हैं। उनके पड़ोसी का बेटा अजीम भी कहानी में हास्य का रंग भरता है। कबाड़ के काम में कमीशन लेने के बहाने वो कल्लन की बेटी कुलसुम से नैन मटक के करता है और इस तरह कहानी में अजीबोगरीब मोड़ आते जाते हैं। साजिश, लालच, भागदौड़ और हास्यास्पद परिस्थितियों के बीच कहानी आगे बढ़ती है। कल्लन के लिए ये मशीन कमाई का एक बड़ा जरिया बन जाती है। हास्य से भरे इस नाटक के जरिए यह दिखाया गया कि इंसान जवानी और किस्मत बदलने की चाह में किस हद तक जा सकता है। और वहीं श्रोताओं, रविंद्र भवन के रंगमंच पर भी गरीब नवाज नाटक खेला गया। अमेरिका में पढ़ाई और करियर बनाने के बाद बेहतर जीवन और बच्चों की परवरिश की चाह में भारत लौटे एक सफल उद्यमी की छोटी सी असहजता कैसे सामाजिक और राजनीतिक टकराव में बदल जाती है, इसे सोमवार को रविंद्र भवन के मंच पर गरीब नवाज नाटक में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। टैगोर नाट्य महोत्सव के दूसरे दिन दिल्ली के संभव आर्ट ग्रुप ने कहानीकार संतोष चौबे की चर्चित कहानी गरीब नवाज का मंचन किया था। प्रस्तुति का निर्देशन रंग निर्देशक देवेंद्र राज अंकुर का था।

आइए अब नाटकों से आगे मुड़ते हुए चलते हैं हम MCU यानी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी। पुलिस की पहचान सिर्फ अपराध रोकने और कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, जरूरतमंद तक पहुंचकर उसकी मदद करना भी पुलिसिंग का अहम हिस्सा है। मध्य प्रदेश GRP का ऑपरेशन हमदर्द इसी संवेदनशील पुलिसिंग का उदाहरण है। MCU में विद्यार्थियों से संवाद करने के दौरान GRP के विशेष पुलिस महानिदेशक राजा बाबू सिंह ने इस पहल के साथ पुलिसिंग और पत्रकारिता में बदलती तकनीक और चुनौतियों पर चर्चा की। श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश के 548 रेलवे स्टेशनों पर असहाय, लापता और घर छोड़कर आए लोगों का डिजिटल डोजियर तैयार किया गया है। CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की मदद से उनकी पहचान की गई और उनके परिजनों तक उन्हें पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस कार्य को ऑपरेशन हमदर्द का नाम दिया गया। MCU में संवाद करते हुए विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि आज सिटीजन जर्नलिज्म के दौर में पत्रकारिता सिर्फ सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो नैरेटिव और जनमत भी तैयार करती है। इसीलिए पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए उच्च नैतिक मूल्यों व जिम्मेदारी को समझना बेहद जरूरी है। MCU के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने ऑपरेशन हमदर्द को पुलिस की पब्लिक फ्रेंडली पहल बताया।

एक स्कूल में आज जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो वे स्टूडेंट नहीं बल्कि देश के जनप्रतिनिधि की भूमिका में थे। इन्हें पीएम से लेकर मंत्री और सांसद का दर्जा दिया गया था। पढ़ाई की टेंशन के बजाय ये युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सवाल कर रहे थे कि पेपर लीक कैसे होते हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर क्यों है। मौका था संभाग स्तरीय युवा सांसद का। आयोजन केंद्रीय विद्यालय में सोमवार को किया गया। इस युवा संसद का सरकार के चलाने के तरीकों को समझाने के लिए स्कूल में दो दिवसीय इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यहां संभाग के 8 टीमों के 168 बालक और 259 बालिकाएं और 43 अनुरक्षकों ने इस संसद में हिस्सा लिया है। मॉक पार्लियामेंट बनी पक्ष और विपक्ष के रूप में संसद बटा हुआ था और एक बच्चा स्पीकर की भूमिका भी निभा रहा था।

मॉक सत्र शुरू होते ही विपक्षी खेमे में सांसद की भूमिका में बैठे बच्चों ने सरकार पर सवाल दागे। ये करियर और इकोनॉमी से जुड़े हुए थे। नीट का पेपर लीक क्यों हुआ, सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है, जैसे सवाल संसद में बेबाकी से उठाए गए। सरकार के पक्ष की ओर बैठे हुए मंत्री की भूमिका में बैठे हुए बच्चों ने इसके जवाब भी दिए।

वहीं श्रोताओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में सोमवार को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। नीम, आंवला, पीपल, जामुन और कई तरह के 11 किस्मों के पौधे लगाए गए। संग्रहालय के निदेशक के अनुसार, प्रकृति और माँ दोनों हमारे जीवन का आधार हैं। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यक्तियों ने एक एक पौधारोपण किया और इन पौधों को पालन पोषण करने का संकल्प भी लिया।

श्रोताओं, परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम आपको बता रहे हैं कि आज नगर में सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां क्या क्या हो सकती हैं और होने वाली हैं। फोटोग्राफी के 200 साल पूरे होने के अवसर पर द लेगेसी ऑफ लाइट फोटो एग्जीबिशन चल रहा है। तस्वीरों में प्रदेश के प्राकृतिक नज़ारे, इमारतें, लोग, परंपराएं, धार्मिक आयोजन, रोजमर्रा की जिंदगी अलग अलग नज़रिए से प्रदर्शित की गई है। वेन्यू है एलियंस फ्रांसिस और आप इस फोटो एग्जीबिशन को देख सकते हैं। सुबह 10 बजे से एंट्री फ्री है। वहीं टैगोर नाट्य महोत्सव के तहत 3 दिनों तक संतोष चौबे की 3 कहानियों पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां हो रही हैं। इसी के तहत नाटक उनके हिस्से का प्रेम और लेखक बनाने वाले का मंचन होगा। वेन्यू रहेगा अंजनी सभागार, रविंद्र भवन, शाम 7 बजे। एकता नाट्य समारोह के अंतर्गत कोमल गांधार नाटक का मंचन किया जाएगा। नाटक महाभारत कालीन प्रसंगों के माध्यम से गांधारी के जीवन, उनके त्याग, राजनीतिक परिस्थितियों और पारिवारिक संघर्षों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेगा। वेन्यू रहेगा LBT। समय शाम 6:30 बजे।

और इन तमाम जानकारियों के साथ ही आज की परिक्रमा हमें अब यहीं संपन्न करने की अनुमति जी दिए। अब चलते चलते आपसे हम एक करना चाहते हैं इल्तिजा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना ध्यान और अपनों का भी ध्यान। दीजिए अनुमति परिक्रमा से आपकी अपनी पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में, बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: भूमध्य सागरीय मूर, मेडिटेरेनियन मूर्स, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के असली उस्ताद। क्या आप जानते हैं कि जब वास्को डिगामा सन 1498 में कालीकट पहुंचा तो उसका सामना आदिम आदिवासियों से नहीं बल्कि ऐसे व्यापारियों से हुआ जो उनसे कहीं अधिक भाषाएं जानते थे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेहतर समझते थे। पुर्तगाली अपने साथ रिकॉनविस्टा की मानसिकता लेकर आए थे, जहां वे पूरी दुनिया को केवल ईसाई और मूर यानी मुसलमानों के द्विआधारी चश्मे से देखते थे। उनकी अज्ञानता का आलम यह था कि उन्होंने हिंदू मंदिरों को भी चर्च समझ लिया। अमले में शामिल जोआओ नुनेस एक डेग्रेडादो यानी निर्वासित अपराधी था। गामा, जो हमले के डर से खुद तट पर उतरने से घबरा रहा था, उसने नुनेस को एक प्रयोग के तौर पर कालीकट के हलचल भरे बंदरगाह में भेजा। नुनेस का सामना ट्यूनीशिया के दो व्यापारियों से हुआ जो उस समय के मुआरो ब्रोंकोस यानी सफेद मूर नेटवर्क का हिस्सा थे। ये व्यापारी सोना, चांदी और बेहतरीन कपड़ों का व्यापार करते थे। जैसे ही उन्होंने पुर्तगाली अपराधी को देखा, उन्होंने उसकी ही भाषा में कास्टेलियन और जेनाइस के मिश्रण में चिल्लाकर कहा, शैतान की कसम, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इन ट्यूनीशियाई व्यापारियों का जीवन उस वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था का सबूत था जो पुर्तगालियों के आने से बहुत पहले से फल फूल रही थी। जब नुनेस ने कहा कि वे ईसाई और मसाले खोजने आए हैं तो ट्यूनीशियाई डरे नहीं बल्कि उन्हें हंसी आ गई। उन्हें आश्चर्य इस बात पर था कि वेनिस, फ्रांस या स्पेन जैसी बड़ी शक्तियों ने पहले यहाँ अपने लोग क्यों नहीं भेजे। ये बिचौलिए एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय कुलीन वर्ग का हिस्सा थे जो जितना लेवेंट यानी भूमध्य सागर का पूर्वी तट में सहज थे, उतने ही भारत के तटों पर भी। वे पुर्तगालियों की तरह स्थानीय रीति रिवाजों से भ्रमित नहीं थे, वे भू राजनीति के उस्ताद थे। उनमें से एक व्यापारी ने नुनेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वे उन्हें ऐसी भूमि पर ले आए जहाँ इतनी दौलत है। इसका सीधा मतलब ये था कि पुर्तगाली किसी महान योजना के तहत नहीं बल्कि अंधे की तरह भाग्य के भरोसे इस खजाने तक पहुंच गए हैं। इन बहुभाषी ट्यूनीशियाई लोगों की मौजूदगी हमें ये याद दिलाती है कि खोजों का युग, जिसे हम एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं, अक्सर उन दुनियाओं के साथ आमना सामना था जो पश्चिम की भाषाओं और बाजारों से पहले से ही गहराई से परिचित थीं।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भारतेंदु हरिश्चंद को आधुनिक युग के हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। वे आधुनिक भारत के महानतम हिंदी लेखकों में से एक हैं। भारतेंदु के साहित्य में आमजन की पीड़ा, समाज के मध्यम वर्ग की बेचैनी और देश के विकास की आवश्यकता बड़ी बुलंदी से दर्ज होती है। भारतेंदु सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। एक ओर उनकी लेखनी से ऐसे रसपूर्ण सवैये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे, तो दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी रचनाएं देश के मंगल का मंत्र फूंकने लगी। कभी उनकी कविताएं भक्तिमालाएं बनकर इष्ट के चरणों में अर्पित होती, तो कभी उनकी रचनाओं में धार्मिक आडंबरों का माहौल उड़ाया जाता। उनके व्याख्यानों में स्त्री शिक्षा और समाज सुधार की गुहार लगाई जाती। बड़े ही सरल भाव से नए और पुराने में सामंजस्य बिठाकर वे अपनी रचनाओं में अद्भुत माधुर्य पैदा कर देते थे। भारतेंदु की लेखन सामग्री जीवन के हर पहलू को छूती हुई गुजरी और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देश की उन्नति का कारक सिद्ध हुई।
2: आओ बेटा, आओ आओ, जरा राम तो भजले।
3: जी गुरुजी।
2: तो उठा बेटा एक तारा।
3: जी गुरुजी।
4: तो हो जाए गुरुजी।
2: हो जाए शुरू।
5: तो राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई,
6: राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई,
5: राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई,
6: राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई,
5: राम भजो, राम

0: विश्वनाथ,
1: जय जय भोलेनाथ,
0: जय जय बाबा विश्वनाथ,
1: जय जय बाबा विश्वनाथ।
0: मैं महंत और मेरे दोनों चेले बच्चा नारायण दास
1: जय हो,
0: और बच्चा गोवर्धन दास
1: जय हो।
0: पहचान तो लिया होगा आपने।
1: अरे वही अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक वाले।
0: हाँ।
2: जो नाटक बाबा भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख गए।
0: सवाश बच्चा।
1: हम उसी नाटक के पात्र।
0: हाँ तो उस नाते से हरिश्चंद्र हुए हमारे
1: बाप।
0: अबे अब अबे मूरख, जनक भी तो कह सकता है।
1: हाँ हाँ हाँ गुरु जी।
0: हाँ तो बच्चा गोवर्धन दास, का तय हुआ था रे हमरे बीच?
2: यही कि आज अंधेर नगरी नहीं बल्कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तो बाबा भारतेंदु की कथा सुनाएंगे।
0: हाँ आजा बेटा, एक तारा लेके जरा सुर तो छेड़ दे। हाँ चलो चलो शुरू करते हैं।
3: राम

0: तो काशी नगरी में पैदा हुए हमारे जनक हरिश्चंद्र, गंगा मैया के किनारे विराजे बाबा विश्वनाथ, और यही है उनकी नगरी काशी।
1: और गुरुजी ये भी तो बता दीजिए, एक संपन्न वैश्य कुल में बाबू गोपाल चंद्र के घर भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 को बाबू हरिश्चंद्र का जन्म हुआ।
0: हाँ, हरिश्चंद्र 7 वर्ष के रहे होंगे जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़की।

0: बचपन के संपन्न और सावंती वातावरण के बावजूद उनमें राष्ट्रीय चेतना जाग चुकी थी।
1: दौलत की दमक से वे अंधे न हुए थे कि गुलामी के अंधेरों को देख न सकें।
2: काय भैया, बहुत दिना बाद देखे।
3: हाँ, बाहर बहुत घूमत रहे, जगन्नाथ जी गए, हमने कहा हरिश्चंद्र का गुहार है भगवान, ये अंग्रेजन से बचाओ हमका।
0: और भी बहुत सी जगह देखे होंगे।
3: हाँ, बहुत घूमे हम, चुनार, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, हरिद्वार, अमृतसर, लाहौर, आगरा, सारे शहर घूमे।
2: अरे, उधर भी अंग्रेजन का यही हाल है का?
3: अरे कछु पूछो ही मत, सब जगह एक ही हाल है।
0: अरे बुजुर्ग कहते रहे कि कंपनी बहादुर का राज बहुत ही जालिमाना था।
3: तो महारानी विक्टोरिया का कौन कम है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ।

0: वाह भैया क्या बात कही है।
1: वाह भैया कैसा उम्दा खाका खेचा है अंग्रेजन का।
2: क्या बढ़िया।
3: अरे आप खाका की कह रहे हैं, हम अपनी लेखनी से अंग्रेजन की खाल खेचत हैं। लो एक और सुनो।
0: अरे वाह वाह वाह चलो चलो आ जाओ।

0: होगा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कुसूल।
1: आज चना मसालेदार चना,
2: मसालेदार चना गर्मा गर्म।

0: तो बच्चा लोग गाने में मजा आया कि नहीं?
1: अरे गाने में तो बहुत मजा आया गुरुजी। नाटक की याद हो आई, कब से नहीं खेला।
2: एक दो झलक नाटक की मिल जाए तो मजा आ जाए।
0: तो जैसी तुम लोगों की इच्छा, पर पहले भारतेंदु जी जो कमाल दिखाए हैं उसकी बात करेंगे।
1: जैसी गुरुजी की इच्छा। क्या कहते हो गोवर्धन दास?
2: जा में तुम राजी, बा में हम भी राजी।
0: सिर्फ 34 साल की जिंदगी रही उनकी, इतनी छोटी जिंदगी में बड़ा बड़ा कमाल किए। वो हिंदी का पहला मौलिक नाटक भी लिखे।
2: और भी तो नाटक लिखे होंगे अंधेर नगरी के अलावा।
0: अरे बच्चा बहुत से लिखे, चंद्रावली, हिंसा ना भवती, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी,
1: और भी कुछ लिखे रहे।
0: अरे वे आशु कवि रहे, कुछ सूझा और कविता बन गई, किसी ने कहा और कविता बन गई।
3: अरे क्या बात है, अभी तक हरिश्चंद्र बाबू नहीं आए, शाम ढली जाती है।
4: अरे फिकिर ना करो, शाम को राम कटोरा मोहल्ला में आए बिना भैया को चैन कहाँ।
3: अरे बनारस में राम कटोरा मोहल्ला के रंग जैसा रंग और कहाँ मिलेगा।
4: लो लो लो, देखो भैया इधर ही आ रहे, आ रहे इधर।
5: जय राम जी की भैया।
6: अरे जय राम जी की, जय राम जी की। और सुनाओ।
3: बस आप ही की बात कर रहे थे।
4: हम इनसे कह रहे थे भैया कि आपकी शाम राम कटोरा मोहल्ले से बाहर कटे ये हो ही नहीं सकता।
6: ये भी खूब कही। पहले ये बताओ कि पंचरत्नी तैयार है कि नहीं?
3: एकदम तैयार है, कब से आप ही का इंतजार था।
6: तो लाओ भाई, पेश करो, जरा तरंग बने तो बात बने।
4: हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए।
6: वाह, इसकी तो खुशबू से ही तरंग बन जाए, ऐसी खुशबू है।
3: तो भैया इसी बात पर कविता बन जाए एक।
6: हाँ हाँ, अभी लो। तो बोलो किस पर कविता बनाओ।
4: वो उधर देखिए, उधर देखिए, वो देखिए, वो जो बाई जा रही है ना।
6: हाँ?
4: उसके मुंह पर चेचक के दाग है।
6: हाँ?
4: उस बाई पर कविता बनाइए जरा।
6: अरे अभी लो। तो पेश है एक शेर, सूखे आईना पे दिल।
4: वाह,
6: सूखे आईना पे दिल जो जा जा के फिसलता है।
4: सूखे आईना पे जो दिल जा जा के
6: फिसलता है, खुदाई दाग चेचक से जरा ठहराव मिलता है।
3: वाह वाह, क्या बात है भैया, इसी शेर पर हो जाए एक और दौर पंचरत्नी का।
1: पर गुरुजी, अंधेर नगरी गजब का नाटक है।
0: हाँ बेटा, तब का लिखा नाटक आज तक जवान है। अरे कुछ नहीं बदला हालात में, और कोई नाटक हिंदी में दिखा दो ऐसा अगर कोई है तो।
2: हमको तो उनकी भाषा बहुत भाती है।
0: हाँ बेटा, एक बात तुम लोगों को बतावे, हम हास व्यंग तो उनके खून में था, हंसते हंसते चोट कर जाते थे वे।
1: हाँ गुरुजी, हंसते हंसते चोट कर जाते थे। हाँ, तो हो जाए इसी बात पे।
0: हाँ बेटा, तो उठा एक तारा, जय भोलेनाथ, बम।

0: जिनको अकिल अजीरन रोग,
1: जिनको अकिल अजीरन रोग।
2: दिम तक दिम दिम दिम तक दिम दिम दिम तक दिम दिम दा। दिम तक दिम दिम दिम तक दिम दिम दिम तक दिम दिम दा।

0: गजब की चोट करते थे भैया।
1: अरे वे कविता लिखें, नाटक लिखे की पत्रिका निकालें, सब में चुटीलापन बना रहता था।
2: उन्होंने मैगजीन भी निकाली थी।
1: हाँ बच्चा, हरीशचंद मैगजीन नाम की मासिक मैगजीन निकाली थी। गजब के पत्रकार थे। आज की पत्रकारिता पर भी उनकी छाप हर कहीं है।
0: वाकई कमाल की चीज थे।
1: हाँ बेटा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों पर नाटक लिखे, विधवा विवाह पर भी लिखा और बेमेल विवाह पर भी लिखा, नई रोशनी के बाबुओं की मिट्टी पलीत की और पोंगा पंडितों की भी भद उड़ाई।
2: गरीबों के लिए सुना है उनके मन में खूब दया थी।
0: सुना है दोनों हाथों से लुटाते थे, लूट सके तो लूट
1: और नहीं तो क्या बेटा। उनके दर से कोई खाली हाथ ना गया। पैसे को लेकर उनका एक मजेदार किस्सा है।
3: अरे सेवक राम
4: जी। मालिक।
3: हाँ, ये पकड़ो नोट और जरा सूंघ कर हमें बताओ कि इनमें से सुगंध आती है या दुर्गंध।
4: मालिक, पैसे से भी कभी दुर्गंध आई है क्या?
3: हाँ, हमें आती है दुर्गंध, हमें पैसे से दुर्गंध आती है।
4: आपका तो सगरा काफी अनोखा है।
3: सही कही। अच्छा देखो
4: जी,
3: ई पकड़ा हमने ये नोट आग पर।
4: अरे अरे अरे बबुआ,
3: आई कि नहीं दुर्गंध?
4: अरे अरे अरे, ई का कर रहे हो बबुआ, ई असली का नोट है, नकली चूरन वाला नोट नहीं है।
3: हाँ, अब तुम देखो लक्ष्मी में कितनी दुर्गंध है।
4: देख ली, अब और नोट ना जलाइएगा आप।
3: इसी लक्ष्मी ने हमारे परिवार को बर्बाद किया है।
4: नोट के अंदर के चमड़े की झिल्ली जलने से बहुत तेज बदबू उठ रही है, अब और नोट मत जलाइएगा आप।
3: अरे कुछ नहीं धरा इस लक्ष्मी और माया में, असली धन तो प्रेम है आपस में।
4: सच्ची कही बात आपने मालिक, बिल्कुल सच्ची कही।
3: हाँ, लक्ष्मी बाटो घटती है और प्रेम बाटो बढ़ता है।
4: सच्ची कही।
1: तो देखा बच्चों, लक्ष्मी बाटो तो घटती है और प्रेम बाटो तो बढ़ता है।
0: सही कहा गुरुजी, बिल्कुल सही।
1: हाँ तो बच्चा नारायण दास
0: जी, गुरु
1: ऐसे आदमी रोज रोज पैदा नहीं होते।
0: 16 आने सच्ची बात।
1: हाँ बेटा, सबके सुख दुख में शरीक। अरे सड़क किनारे ठुठुरते भिकमंगे को अपनी शाल उड़ाकर आगे बढ़ जाएं, ऐसे मलंग थे वे।
2: ये सच है ना गुरुजी कि उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी पत्रिका निकाली थी?
1: हाँ बेटा सच है ये। तब एक पत्रिका निकालना मुश्किल था, पर उन्होंने 2-3 निकाली और 2-3 और निकालने का विचार रखते थे वे।
0: पता नहीं गुरुजी उस जमाने में कैसे कर गए ये सब।
1: अरे धुन का पक्का हो अगर आदमी तो क्या नहीं कर सकता, वरना पत्रिका निकालना और बेचना बहुत टेढ़ी खीर था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
5: अरे बड़ी कठिनाई से भैया एक ग्राहक बना पाया हूँ।
6: गनीमत है, हम तो एक भी ना बना पाए।
5: लगे रहिए, कोई ना कोई मिल ही जाएगा।
6: अरे कल एक मिला था, बोला अखबार पढ़कर सुना जाया कीजिए।
5: अनपढ़ों के बीच पढ़े लिखे हैं ही कितने जिन्हें अखबार बेचें।
6: अरे पढ़ा लिखा पर होने से क्या होता है, खरीदने को पैसा भी तो हो।
5: अव्वल तो पैसा नहीं और जो पैसा हो तो इच्छा नहीं।
3: बहुत देर से तुम लोगों की बात सुन रहा हूँ, बताओ इसका हल क्या है, क्या बंद कर दे छपाई?
5: सवाल ही नहीं उठता।
6: सवाल ही नहीं उठता।
3: मैं जानता था तुम्हारा यही जवाब होगा, इसीलिए लगे रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
0: गुरुजी, अब तो 2-4 झलकी हो जाए अंधेर नगरी की, मन बड़ा कुलबुला रहा है।
2: हाँ हाँ गुरुजी, नारायण दास ठीक कहता है।
1: तो ठीक है बच्चा, ले भाई अब शुरू होता है नाटक। तो बच्चा नारायण दास, ये नगर तो बहुत सुंदर है, देख कुछ बिच्छा इच्छा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे।
0: गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है जो है सो है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो।
1: बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और बच्चा नारायण दास पूरब की ओर जा, ठीक है
0: जी गुरुजी।
1: हाँ तो देख, कुछ सीधा सामग्री मिले तो शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो।
2: गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए।
1: बच्चा बहुत लोभ मत करना है, देखना लोभ

0: बच्चा ये नगरी कैसी है?
1: बाबा जी इस नगरी की चाल यही है, यहाँ की सब चीज टके शेर बिकती है।
0: क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है?
1: अंधेर नगरी।
0: और राजा का नाम क्या है?
1: चौपट राजा।
0: वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। अंधेर

0: अब बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज लक्के से मिलती है, तो मैंने उसका विश्वास नहीं किया था। ये कौन सी नगरी है और उसका कौन सा राजा है जहाँ टका शेर भाजी और टका शेर खाजा मिलता है?
1: अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा।
0: तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टका शेर भाजी और टका शेर खाजा हो। सेत सेत

0: हाँ तो बच्चा यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना अब।
1: मैं तो यही रहूंगा।
0: हैं? देख बच्चा पीछे पछताएगा फिर। हाँ
2: मजा आ गया गुरुजी।
0: अरे ऐसे मूर्ख राजा के राज में कब कौन सी आफत आन पड़े कौन जाने भाई।
1: बिना गीत के का मजा आएगा झलकी का गुरुजी, हो जाएगी।
0: हाँ बच्चा, तो बच्चा उठा एक तारा, हो जा शुरू।
2: हो जाओ भैया।

0: चली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले,
1: चली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले,
0: सांचे मारे मारे डोले,
1: सांचे मारे मारे डोले,
0: चली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले,
1: चली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले।
2: तो भाई लोगों, ये हुए चंद टुकड़े नाटक के। नाटक ठहरा हरिश्चंद्र का तो थोड़ा लंबा, आपको बस झलकी भर दिखाइए।
3: तो गुरु जी का आज्ञा है, समेटे अपना डेरा डंगल।
2: जे कहीं ना धन्यवाद।
4: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
0: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। हमने चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पोषण आहार विशेषज्ञ कनक भट्ट जी को। कनक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद के स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
0: मैं जानना चाहूंगी कि एक बच्चे, एक एडल्ट और बुजुर्ग की डाइट क्या होना चाहिए, यानी बैलेंस्ड डाइट क्या होना चाहिए।
2: अगर हम जनरली देखें तो हर एज कैटेगरी में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए ग्रोथ को प्रमोट करता है। और हम एक थाली की बात करें, जनरलाइज्ड अगर हम किसी एज कैटेगरी की बात नहीं भी करते हैं, तो हमारी थाली का प्रपोर्शन ऐसा होना चाहिए कि थाली में 50% हमारा वेजिटेबल्स और सैलेड होना चाहिए। देन 1/4 हिस्से में हमारी थाली में प्रोटीन होना चाहिए, और बचे हुए हिस्से का हमें बैलेंस करना है हमारे कार्बोहाइड्रेट से और हमारे जो मिनरल्स विटामिंस हैं एंड प्रोबायोटिक्स हमारी थाली में होना चाहिए। जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में अगर हम वेजिटेरियंस की डाइट देखें तो उसमें हमारी दालें, एनिमल प्रोडक्ट्स, दूध के बने हुए सारे प्रोडक्ट्स, चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें ये फैट्स में आती हैं, ये भी हमें डेली बेसिस पे लेना है। इसके बाद अगर हम नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो उसमें अंडे, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें प्रोटीन के सोर्सेज में आती हैं। और वेजिटेरियंस में दालें, इसके अलावा हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं, मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो किसी भी प्रकार की हरी सब्जियाँ, ये सारी उसमें शामिल होती हैं, सैलेड्स में भी। और हमें ट्राई करना चाहिए कि जितना हम कलरफुल हमारी प्लेट को रख सकते हैं उतना हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में ज़्यादा जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में दाल, चावल, ये सारी चीज़ें, अनाज, मोटा अनाज, ये सारा कुछ शामिल होता है।
0: अब मैं ये जानना चाहूँगी कि मोटे अनाज और साधारण अनाज किस तरह से अलग होते हैं और इनके खाने के क्या फ़ायदे हैं, खासकर मोटे अनाज।
2: मोटे अनाज जो हैं ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करते हैं, और साधारण अनाज क्योंकि थोड़ा सा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इन्हें हम डायबिटिक्स को भी देना थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब भी हम ये खाते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है जिससे हमारा ग्लूकोज स्पाइक होता है।
0: अच्छा।
2: और मोटे अनाज खाने का ये फायदा है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हम इन्हें रोगी को भी दे सकते हैं, उनसे उनकी हेल्थ और इम्प्रूव होती है, क्योंकि सबसे अच्छा डायबिटीज़ इससे क्योर होती है। दूसरा कि जब हम मोटे अनाज खाते हैं तो हमें स्लो एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म एनर्जी मिलती है और हमें बार बार भूख नहीं लगती है।
0: अब आप हमें ये बताएं कि मोटे अनाज क्या होते हैं और मोटे अनाज को खाने के क्या फ़ायदे हैं, साथ ही ये भी बताएं कि बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए मोटे अनाज की मात्रा कितनी होना चाहिए।
2: मोटे अनाज में शामिल हैं जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारे जो अनाज हैं ये मोटे अनाज में शामिल होते हैं।
0: जी।
2: इनको खाने की वही मात्रा है 20 से 30 ग्राम बच्चों के लिए, 40 से 50 ग्राम एडोलेसेंट एज के लिए।
0: जी।
2: वैसे ही हम 20-20 ग्राम बढ़ा के इसको खा सकते हैं, और बुजुर्गों के लिए भी मात्रा एडोलेसेंट एज की ही मात्रा के बराबर होती है, क्योंकि बुजुर्गों में एज के साथ उनका पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है। और महिलाओं के लिए भी रागी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे उन्हें फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसके वो सप्लीमेंट्स लेती हैं अलग से, तो अगर वो मोटे अनाज शामिल करती हैं जैसे बाजरे की खिचड़ी या रागी का हलवा, ये सारी चीज़ें अगर वो ऐड करती हैं तो उन्हें कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी और आयरन इनटेक भी उनका कम्प्लीट होगा। वैसे ही छोटे बच्चों को भी हमें मोटा अनाज देना चाहिए जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म एनर्जी मिले, और बच्चे भी जैसे माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में या फिर आजकल बच्चे जंक फूड खाते हैं जिसकी वजह से वो एज से पहले ही काफ़ी वेट गेन कर लेते हैं, या कुछ बच्चे जो अभी भी अंडर नरिश्ड हैं जिनका एज के साथ उतना ग्रोथ अभी तक नहीं हुई है, स्टंटेड ग्रोथ है, जो अब अभी हमारा न्यूट्रिशन वीक का मोटिव भी है कि माल न्यूट्रिशन को कैसे खत्म करना है। तो ये रेसिपीज बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में मोटे अनाज से रेसिपीज बना के खिलाई जाए, जैसे चीला बना के खिलाया जाए, या फिर जो जंक फूड वो पिज्जा उधर बाहर खा रहे हैं तो हम मूंग की दाल का पिज्जा बना के उन्हें अगर खिलाते हैं, चटनी लगा के आप जो मेयोनीज की जगह उसे, तो ऐसी रेसिपीज अगर हम ऐड करते हैं तो मोटा अनाज हम इंक्लूड कर पाएंगे डाइट में।
3: जो किशोर अवस्था की जो हमारी बच्चियाँ होती हैं, किशोर होती हैं, और उनका मासिक धर्म शुरू होने वाला होता है या हो चुका होता है, तो बहुत पेनफुल होता है वो, तो उसके लिए ये किस तरह से सहायता करता है मोटा अनाज, और ये कितनी मात्रा में उनको हम दे सकते हैं?
2: मोटे अनाज में खासकर अगर हम रागी की बात करें तो उसे हमें स्टार्टिंग से ही, जब से एक गर्ल का पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो रागी का अगर टेस्ट किसी को डेवलप नहीं हो रहा है तो हम उसको थोड़े ड्राई फ्रूट्स, रागी, गुड़, घी के साथ उसका एक लड्डू बना के रख सकते हैं, जो कि हमें डेली इवनिंग में उस गर्ल को देना चाहिए, जिससे उसका कैल्शियम और आयरन इनटेक पूरा हो। और भी एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है, अगर हम डेली एक मुट्ठी चना और थोड़ा सा गुड़ बचपन से अगर लड़की को शाम को खिलाते हैं जिसके पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो उसको कभी भी आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा।
3: अभी जैसे आपने जंक फूड की बात की थी, तो जंक फूड के साथ साथ आजकल हम देख रहे हैं फास्ट फूड भी चल रहे हैं और बच्चे ने बहुत पसंद करते हैं, तो ये हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं?
2: आजकल जंक फूड जो है ये सबको ही पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। बट ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं ये हमारी स्किन को, हेयर को, हमारे स्पेशली गट को खराब कर रहे हैं।
3: जी,
2: हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सारी बीमारियों का जड़ जो भी है, सारी बीमारी की उत्पत्ति हमारे पेट से हो रही है। अभी हम जो भी चीज खा रहे हैं वो हमारे पेट पे जाती है, इसके बाद हमारा हेयर फॉल होता है, हमारी स्किन खराब होती है, हमारा पेट भार है, वजन बढ़ रहा है, कैंसर हो रहा है, सारी चीजें हमारी पेट से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि जंक फूड थोड़ा बहुत खाना उचित है, हफ्ते में एक बार आप खा सकते हैं। बाकी बच्चे क्योंकि उनकी एज है, वो ये देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनकी मदर्स को, उनके पेरेंट्स को इन्हीं सारी अच्छी चीज़ों से जो घर की है उसी से ही मिक्स एंड मैच करके रेसिपी बना के उन्हें देना चाहिए, जिससे कि वो थोड़ा सा जंक फूड से अवॉइड कर सके।
3: जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जंक फूड को हम रिप्लेस किस तरह से कर सकते हैं, और बिल्कुल पेरेंट्स को भी ये समझ में आया होगा। और अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, दिन भर में कितनी मात्रा में उसे मिलेट्स लेना चाहिए?
2: दिन भर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक है, जनरली सभी लोगों के लिए यंग एज से लेके ओल्ड एज तक, कि हमें उसको 30 से 50 ग्राम के बीच में रखना चाहिए। तो उसमें अगर हम कोशिश करें तो हम अगर हमारी 30 से 50 ग्राम में हमारा 20 ग्राम मिनिमम मिलेट्स हम ऐड कर सकते हैं। एक छोटा सा हैक हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम जो हमारी रोटी बना रहे हैं उसमें अगर हम 20-30% उसमें मिलेट का आटा मिक्स करते हैं हमारे गेहूं के आटे में, तो एक छोटा सा है कि हम मिलेट्स डेली बेसिस पे ऐड कर पाएंगे।
3: क्योंकि मोटा अनाज जो होता है, जो साधारण अनाज है, खाने की हैबिट है हम लोगों की, तो रिप्लेस इतने जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे कर सकते हैं हम।
2: इसीलिए मैंने आपको यही बताया कि
3: धीरे
2: क्योंकि अभी हमें रोटी और चावल खाने की आदत है, गेहूं की रोटी हमारे सभी के घर में स्टेपल डाइट है, तो हमारी स्टेपल डाइट को एकदम मिलेट से रिप्लेस करना हमारे लिए बहुत टफ है। तो हम धीरे धीरे उसको ऐसे ऐड कर सकते हैं कि हम गेहूं के आटे में मिलेट का आटा ऐड करना स्टार्ट करें, हम जो चावल की खिचड़ी बनाते हैं उसमें हम एक मेजर पोर्शन बाजरा या फिर ज्वार ऐड करना स्टार्ट करें, तो हम ऐसे धीरे धीरे करके उसको रिप्लेस कर पाएंगे।
3: बहुत अच्छी बात बताई, और साथ ही ये जानना चाहूंगी कि आपने खाने के बारे में तो बताया, अब पानी के विषय में और बताएं कि पानी दिन भर में कितना पीना चाहिए?
2: पानी वैसे तो हम कहते हैं कि 8 ग्लास पानी पीना चाहिए,
3: जी,
2: बट ये डिपेंड करता है कि किसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है और वो किस एज कैटेगरी में भी है, ये भी हम कह सकते हैं। तो मेजरली 8 ग्लास तो मिनिमम पीना ही चाहिए, अगर कोई जिम वर्कआउट करता है या फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, फिर क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है। अगर वो थोड़े शुष्क एरिया में रह रहा है तो फिर भी उसको 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए।
3: और आजकल ये ठंडा गर्म पानी का भी चल रहा है कि सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, तो ये कितना उचित है?
2: गर्म पानी पीने से कोई नुकसान नहीं है। गर्म पानी हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, अच्छे से हमारे पेट को साफ करने में मदद करता है, तो उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीना अच्छा है।
3: दिन भर यदि गर्म पानी पिया जाए तो?
2: दिन भर गर्म पानी पीना ठीक नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। जैसे भोपाल में हम अभी हैं, तो भोपाल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। फिर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की तासीर कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि गर्म पानी पीते रहो दिन भर तो वज़न कम होता है, ऐसा नहीं होता। अगर किसी की तासीर गर्म है और वो दिन भर गर्म पानी पीता है तो ये उसको नुकसान करेगा।
3: जो लोग घर में रहते हैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उन दोनों ही लोगों की डाइट में क्या अंतर होना चाहिए?
2: जो लोग एक्सरसाइज करते हैं
3: जी
2: और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इनके डाइट में सबसे बड़ा रोल होता है कार्बोहाइड्रेट्स का
3: जी,
2: क्योंकि जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारा वज़न बढ़ता है
3: जी।
2: तो हमें सबसे मेजर इस पे ध्यान देना है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट इनटेक कितना होना चाहिए। पहले हम डिस्कस करते हैं जो इंसान वर्कआउट नहीं करता, जो एक्सरसाइज नहीं करता, किसी भी प्रकार का कोई व्यायाम नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ दिन भर अपने घर पे बच्चों पे ध्यान देती हैं, अपने हस्बैंड पे ध्यान देती हैं, घर का काम करती हैं, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? हम ज़्यादातर 3 बार खाना खाते हैं
3: जी,
2: तो हमारा नाश्ता हमें मेजरली अंकुरित रखना चाहिए। हम उसमें मूंग की दाल का चीला ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमें उससे प्रोटीन मिले। कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो कोई अंडे की रेसिपीज ऐड कर सकता है उसमें जिससे उसे प्रोटीन इंटेक मिले। लंच टाइम में, लंच के और नाश्ते के बीच में हम एक प्लेट सैलेड या फिर एक प्लेट फ्रूट्स हम ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इस बीच में आप एक ग्लास छाछ भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपको प्रोबायोटिक्स भी मिल जाए। लंच के टाइम पे जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी थाली कैसी दिखनी चाहिए लंच में, कि हमारी आधी थाली में हमारी सब्जी और सैलेड होना चाहिए, बचे हुए आधी थाली का 1/3 हिस्से में हमारा एक कटोरी दही हो सकता है जिसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए आप उसमें अलसी डाल सकते हैं, आप उसमें चिया सीड्स डाल सकते हैं अच्छे फाइबर इनटेक के लिए। बचे हुए सेकेंड हिस्से में आपका कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए जिसमें हमें ट्राई करना चाहिए कि हम साधारण अनाज और हमारे मोटे अनाज को, मतलब गेहूं चावल और मिलेट्स को मिक्स कर पाएं, और एक बचे हुए हिस्से में आपकी जो भी सब्जी है, छोले हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए छोले राजमा ये भी एक प्रोटीन का अच्छा ऑप्शन है। एंड डिनर हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सोने के कम से कम 3 से 4 घंटे के पहले कर पाएं, और जितना हल्का हो सके उतना हल्का ले पाएं। तो हम मोटे अनाज की खिचड़ियां ले सकते हैं, चीले भी ले सकते हैं, और हफ्ते में 1-2 दिन जैसी हमारी दिनचर्या है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में 1-2 दिन हम अनाज स्किप भी करें रात को
3: जी।
2: जैसे उसमें हम ले सकते हैं कि हम वेजिटेबल सूप बना लें, साथ में थोड़ा सा प्रोटीन के लिए अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एग या फिर मीट ले ले, और वेजिटेरियन है तो पनीर या टोफू ऐड कर सकता है वो अपने सूप के साथ।
3: मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, क्या सभी को एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना चाहिए?
2: बिल्कुल, सभी को अपनी एज के हिसाब से और अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, तो बच्चों को हम देखते हैं स्कूल में स्पोर्ट्स होता है उनका, वो बाहर खेलने जाते हैं, ये उनके लिए एक्सरसाइज है
3: जी।
2: उनसे थोड़े बड़े बच्चों की बात करें क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत बिजी हो जाते हैं, तो उन्हें जब भी समय मिलता है वो 1/2 घंटे की वॉक कर सकते हैं। जैसे जो 10th 12th वाला जो पीरियड होता है जिसमें बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो वो पढ़ते पढ़ते वॉक कर सकते हैं। रात को अगर वो पेरेंट्स के साथ बैठे हैं तो पेरेंट्स के साथ ही वॉक पे चले गए, थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लिया। ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐड करने से उनका ब्रेन और शार्प होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज करती है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जो हमारा स्ट्रेस को कम करता है, हमारे ग्रोथ हॉर्मोन को इंक्रीज करता है, कॉर्टिसोल को कम करता है। वैसे ही अगर हम देखें कि हाउसवाइफ्स को, तो अगर वो घर से नहीं निकल पाती हैं या वो सुबह वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, से काफ़ी महिलाओं की ये प्रॉब्लम होती है कि वो सुबह मैं लंच बनाने में बिजी हूँ या मैं काम नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो वो शाम के टाइम पे कोई वीडियो लगा के डांस कर सकती हैं, एरोबिक्स कर सकती हैं, जो भी उन्हें पसंद है वो कोई एक फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम हाफ एन आवर की तो ऐड करना ही चाहिए। बाकी जो लोग जिम जा सकते हैं उन्हें जिम जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अच्छा कोई वर्कआउट नहीं है। स्पेशली फीमेल्स को अगर वो वक्त निकाल सकती हैं तो उन्हें जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए।
3: मैडम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन चलते चलते मैं आपसे यही एक बात दिमाग में आ रही है कि आजकल बहुत से लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, सप्लीमेंट लेना कितना उचित है, इसके विषय में कुछ बताएं।
2: सप्लीमेंट्स लेना बिल्कुल ठीक है अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, और फिर सप्लीमेंट्स की कुछ कैटेगरीज भी हैं, जैसे पहली कैटेगरी है प्रोटीन्स।
3: जी जी,
2: तो वे प्रोटीन आपने सुना होगा, वैसी प्लांट प्रोटीन्स भी आते हैं आजकल मार्केट में। अगर आप अच्छे ब्रांड का लेते हैं, ऑथेंटिकेटेड है, और आप डेली रिक्वायरमेंट अपनी नेचुरल फूड से जब आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, किसी दिन आप बिजी हैं, आपके घर में वो फूड ग्रुप नहीं बना है जिसमें प्रोटीन इनटेक है, तो आप अपनी बॉडी को एक स्कूप वे प्रोटीन दे सकते हैं। हमें डेली भी उसकी आदत नहीं डालनी है। सप्लीमेंट का मतलब ही ये है कि आपने अपनी बॉडी को एक सप्लीमेंट किया है, एक रिप्लेसमेंट दिया है नेचुरल फूड ग्रुप का, बट ये हमारी लाइफ में पूरी तरीके से हमेशा कभी भी नेचुरल फूड ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरीज आती है जो टैबलेट्स आती हैं, मल्टीविटामिन्स की, ओमेगा 3 की, और वैरायटीज ऑफ विटामिन्स की आती है, विटामिन सी डी, ये डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं, तो ये सारे सप्लीमेंट्स लेना ठीक है। और जो आपका कंसर्न है ये पूछने का कि इनसे लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है, जो सप्लीमेंट जैसे स्टेरॉइड्स लेना या लो क्वालिटी के प्रोटीन इंटेक लेना, या फिर पूरी तरीके से ही कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो नेचुरली नहीं लेके सिर्फ दिन भर वो सप्लीमेंट से ही अपना पूरा प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो सिर्फ मील रिप्लेसमेंट भी दे रहे हैं कि आप खाना ना खा के सिर्फ सप्लीमेंट ही लें। तो ऐसा फॉलो करना ठीक नहीं है। हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हम जितना ज़्यादा हो सके नेचुरली ही हमारा डाइट में प्रोटीन और सारे मल्टीविटामिन्स वहीं से पूरे करें। किसी दिन नहीं होता है तो उसको लेना भी कोई बुरा नहीं है।
3: बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी आज आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की उसका फायदा हमारे श्रोता अवश्य उठाएंगे। मैडम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विषय पर आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।
3: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थी पोषण आहार विशेषज्ञ कनक भट्ट जी। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। अब हमारी पूरी टीम को दे अनुमति, सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: धर्म महासभा के पश्चात उनका अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर जाकर के व्याख्यान देने का दौर शुरू हुआ। एक कंपनी के साथ उनका 3 महीने का अनुबंध भी हुआ। वे व्याख्यान के बदले प्राप्त सम्मान राशि जमा करके भारत में आकर के विकास मूलक कार्य करना चाहते थे।
1: उन दिनों अमेरिकन समाज 2 भागों में बटा हुआ था। विज्ञान की प्रगति के साथ नवीन विचारधाराओं का जन्म हुआ, जो उदारपंथी था, और उग्रपंथी प्राचीन लोग बाइबल को सीने से चिपकाए हुए उसमें कही गई सारी बातों का पालन करने को ही धर्म मानते थे। उन दिनों आध्यात्मिक उन्नति को वास्तविक सामाजिक उन्नति का आधार ना मानकर बल्कि सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को ही आध्यात्मिक उन्नति का कारण या लक्षण कहा जाता था। अटलांटिक महासागर के तटीय भाग या पूर्वांचल में उदारपंथियों का प्रभाव अधिक था और मध्य पश्चिम तथा दक्षिण में प्राचीन पंथी प्रबल थे। पूर्वांचल में उदारपंथियों का जोर था। सामाजिक तथा आर्थिक सुधार पर और दूसरे अंचल के निवासी पाप एवं मादकता निवारण पर बल देते थे।
0: मध्य पश्चिम तथा दक्षिण में चर्च तथा समाज में स्त्रियों का अधिपत्य था, जो तर्क के स्थान पर भावुकता को अधिक महत्व देती थी और समाज को पाप मुक्त करने में ही जुटी रहती थी। समाज इनसे त्रस्त था। ये स्त्रियां प्रगतिशील स्त्रियों को बुरी नजर से देख करके अवज्ञा करती थीं। सभी सामाजिक कार्यों में इनका ही वर्चस्व था और पुरुष चुपचाप इनका नेतृत्व स्वीकार कर लेते थे।
1: ऐसे माहौल में स्वामी जी व्याख्यान देने पहुंचे। वहां का समाज उन्हें बड़ा ही अजीब लगा। वहां के धर्माचार्य, जिन्हें भारत के बारे में कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, भारतीय धर्म और समाज को हीन बताने पर तुले थे। वहां चित्र बनाकर कविता के माध्यम से भारतीय समाज की निंदा की जाती थी। वे कहते थे,
2: पवित्र गंगा की धारा जहां प्रवाहित हो रही है, देखो वो अधार्मिक हिंदू नारी किस प्रकार अपने हाथों से अपने बच्चे को जल में विसर्जित कर रही है, और उस शिशु को जब घड़ियाल आदि हिंसक जंतु ले जाते हैं, तब बच्चे की मर्मांतक रुदन की ध्वनि उठती है। वो क्रंदन की आवाज क्रमशः दूर दूरांतर में विलीन हो जाती है, पर उसकी माता बिना विचलित हुए अपने वज्र कठोर हृदय के साथ उसे सुनती है। उस देश में बाइबल भेजो, शीघ्र भेजो, ईसा का संदेश इन माताओं के अंतर में प्रविष्ट होगा, तो उनका चित्त माँ के समान कोमल होगा और वो राक्षसी के समान संतान का जीवन नाश नहीं करेंगी।
0: इन प्रचारकों के मतानुसार भारतीय पति अपने हाथ से चिताग्नि जला करके उसमें अपनी पत्नियों को जला देते हैं। माताएं नवजात शिशुओं को मांसाहारी पक्षियों के भक्षणार्थ वृक्ष की शाखाओं से लटका देती हैं। लोग स्वेच्छा से जगन्नाथ के रथ के नीचे कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह के और भी न जाने कितने ख्याली पुलाव पकाए जाते थे। इसी प्रकार के मिथ्या आरोप से दुखी होकर के जब स्वामी जी ने कहा था कि पाश्चात्य देश भारत के विरुद्ध जिस प्रकार के मिथ्या प्रचार तथा निंदावाद में लगे हुए हैं, उसके प्रतिकार के रूप में यदि भारत हिंद महासागर के तल का सारा कीचड़ पाश्चात्य देशों पर फेंके तो भी वह पूरा नहीं होगा, ये कहने में उन्होंने थोड़ी भी अतिशोक्ति नहीं की थी।
1: ऐसे माहौल से यानी कि मध्य पश्चिम से स्वामी जी अपेक्षाकृत नवालोक से आलोकित मेम्फिस नगर में पहुंचे। वहां वे 19th सेंचुरी क्लब के आमंत्रण पर आए थे। उन दिनों व्याख्यान कंपनी से अनुबंधित होने के कारण स्वामी जी के व्याख्यानों से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी हजम कर जाती थी। मेम्फिस में 13 जनवरी से 21 जनवरी तक विभिन्न प्रतिष्ठानों में उनके व्याख्यान हुए। व्याख्यानों की रिपोर्ट अखबारों में रोज छपती और कानंद स्वामी यानी विवेकानंद की ख्याति चारों ओर फैलती गई। मेम्फिस कमर्शियल अखबार में विस्तृत रिपोर्ट छपी थी।
3: उनका व्यक्तित्व था परमत सहिष्णुता, जिस पर वह सार्वभौमिक दृष्टिकोण से ही बोले और दृष्टांत के रूप में उन्होंने हिंदू धर्म का उल्लेख किया। अन्य मठों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की सभी धर्मों का सार होना चाहिए। हिंदू धर्म के आचारों, अनुष्ठानों आदि को छोड़कर उन्होंने अपने मौलिक तत्वों का ही विशाल विवेचन किया। जिन कुछ अनुष्ठानों की बात उन्होंने उठाई उसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या भी की। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वासी

0: के कारण वस्तुतः एक ही भगवान के भक्त हैं। हिंदुओं की मूर्तियां भगवान के दिव्य गुणों के प्रतीक हैं और ध्यान में सहायता के लिए हैं।
1: उनके समूचे भाषण को प्रस्तुत करना कठिन है, परंतु यह विश्व बंधुत्व की स्थापना के लिए एक उत्कृष्ट आवेदन था और एक मनोरम धर्म मत का एक सुयोग्य समर्थन था। इसका उपसंहार भी विशेष सुंदर बन पड़ा था, जबकि उन्होंने घोषणा की कि वे ईसा को स्वीकार करने को तैयार होकर भी कृष्ण और बुद्ध के समक्ष सिर अवश्य झुकाएंगे। तदुपरांत उन्होंने सभ्यता की निष्ठुरता का एक चित्र खींचते हुए कहा कि प्रगति के नाम पर होने वाले इन अपराधों के लिए वे ईसा मसीह को उत्तरदायी नहीं मानते।
2: मेम्फिस में स्वामी जी के अनुरागियों की संख्या बढ़ती गई और लोगों के अनुरोध पर उन्हें कुछ और अतिरिक्त व्याख्यान देने पड़े। उनका एक व्याख्यान था पुनर्जन्म पर। उसमें स्वामी जी बोले,
3: सभी प्राचीन धर्मों में पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकृत था, पर अब हिंदू और बौद्ध ही इसे मानते हैं। पाश्चात्य लोग सोचते हैं कि पुनर्जन्म मानने से अनैतिकता को प्रश्रय मिलेगा, न्याय होने से अन्याय भी रहेगा। जगत में व्याप्त अन्याय के लिए यदि ईश्वर उत्तरदायी न हो तो कौन होगा? पुनर्जन्म के सिद्धांत से इसकी मीमांसा हो जाती है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। शून्य से जगत की सृष्टि नहीं हुई। कारण परंपरा ही कार्य परंपरा को जन्म देती है। अतः मनुष्य का वर्तमान जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फल से बना है।
2: उन्होंने एक घटना का जिक्र और किया और कहा,
3: मैं जब मिनियापोलिस से ट्रेन में आ रहा था तो उसी में गोपालक मिला, जो जड्ड स्वभाव का और शुद्ध आचारवादी था। उसने पूछा कि मैं कहां से आया हूं। मैंने कहा, भारत से। उसने पूछा, आपका धर्म क्या है? मैंने कहा, हिंदू। उसने कहा, तब तो आपको नरक में जाना होगा। तब मैंने उसे पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया। उसने कहा कि वो सदा से ही इस सिद्धांत में विश्वास करता आया है, क्योंकि एक दिन जब वो लकड़ी चीर रहा था तो उसकी छोटी बहन उसके कपड़े पहनकर आकर बोली कि वो पहले पुरुष थी। पुनर्जन्मवाद की एक और अच्छी बात यह है कि जो कुछ हो गया है उसके लिए पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि प्रति क्षण पुनः भले कर्म करने के जो नए नए अवसर आ रहे हैं उनका लाभ उठाना चाहिए।
4: भाषण के बाद ज्यादातर महिलाएं उनसे प्रश्न पूछती और स्वामी जी हंसते हुए उन सबको उत्तर देते, परंतु ये भी सच है कि सभी ने उनको प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं किया। विशेषकर कुछ पादरी उनका विरोध करते रहे। व्याख्यान के बाद वे भी कटाक्षपूर्ण प्रश्न पूछते थे,
5: हिंदू लोग अगर इतने ही धार्मिक और नीति परायण हैं, तो वो दूसरे राष्ट्रों की तुलना में इतने पिछड़े क्यों हैं?
3: इसलिए कि सांसारिक उन्नति धर्म का कार्य क्षेत्र नहीं है, और धर्म ने तो ईसाई जगत की उन्नति नहीं की, बल्कि ईसाई धर्म ने तो पश्चिमी जगत में विज्ञान के नवालोक के पथ में पग पग पर बाधा खड़ी की है। पाश्चात्य चिंतन एवं कार्य प्रणाली के साथ भारतीय चिंतन एवं कार्य प्रणाली का मिलन ही दोनों अंचलों के लिए हितकर एक नवीन पथ का निर्माण कर सकेगा।
2: पादरी महाशय निरुत्तर हो गए। तब स्वामी जी ने समझा करके कहा,
3: किसी न किसी रूप में धर्म सर्वत्र, यहां तक कि असभ्य लोगों में भी विद्यमान है। मानव आत्मा मानो हवा के बुलबुले के समान पृथ्वी के तल में जाकर स्वभाव से ही सर्वदा ऊपर उठने का प्रयास कर रही है, और यही प्रयास धर्म का रूप धारण कर लेता है।
4: 22 जनवरी को स्वामी जी मेम्फिस छोड़कर वापस शिकागो आ गए। इन 6 सप्ताहों के दौरान उन्होंने 12 नगरों में व्याख्यान दिए। श्रोतागण हमेशा एक जैसे नहीं होते, श्रोताओं के अनुसार ही स्वामी जी अपना विषय चुनते। जैसे अगर किसी खदान नगर में बोलते तो किसी बौद्धिक विषय के बदले सामाजिक विषय चुनते।
2: व्याख्यान कंपनी के साथ स्वामी जी भी लगातार घूमते रहे। श्रीमती बर्क ने भी लिखा है,
4: उनका एक चित्र मानस पलट पर उभरता है, जिसमें वे सप्ताह पर सप्ताह भीषण ठंड के दिनों में

0: रेल यात्रा करते, अपना सामान संभालते, श्रोताओं के सम्मुख व्याख्यान देते, पैसों का हिसाब करते, परिश्रम साध्य दीर्घ भाषण देने के पश्चात उल जलूल प्रश्नों के उत्तर देते। सच कहें तो उनके शक्ति सामर्थ्य को निर्ममता पूर्वक अपने सामर्थ्य साधन में उपयोग करने के लिए मानो तो उस कंपनी ने कमर कस ली थी। स्वामी जी भी कार्य के उत्साह तथा धर्म एवं भारत की बातें सुनाने की उत्सुकता में अपनी सुख सुविधा तथा स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ही भूल गए थे।
1: मेम्फिस से वापस शिकागो आने के बाद स्वामी जी हेल परिवार के साथ ही ठहरे। शिकागो में वही उनका स्थायी ठिकाना हो गया। हेल दंपति उन्हें पुत्र की तरह स्नेह करते थे और उनकी दो बेटियां और भांजिया स्वामी जी की दुलारी बहनें थीं। विशेषकर मैरी हेल और इशाबेल मैकिन्नी के साथ उनका संबंध बड़ा ही आंतरिक था। उन लोगों के बीच कई पत्राचार हुए जिसमें स्वाभाविक विचार विनिमय, व्यंग विनोद, रोना गाना और सहानुभूति आदि दिख पड़ती थी।
2: हेल परिवार का परिचय देते हुए उन्होंने 25 सितंबर 1894 में स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था।
3: हेल और उनकी पत्नी दोनों ही वृद्ध हैं। साथ में दो पुत्रियां, दो भांजियां तथा एक लड़का है जो रोजगार के लिए दूसरी जगह रहता है। लड़कियां घर पर रहती हैं। इस देश में लड़की का रिश्ता ही सही रिश्ता है। चारों कन्याएं युवती और अविवाहित हैं। दोनों पुत्रियों के बाल सुनहरे हैं और भांजियों के काले। ये जूते की सिलाई से पूजा पाठ तक हर काम में माहिर हैं। भांजियों के पास उतना धन नहीं है। वे किंडरगार्टन स्कूल चलाती हैं, लेकिन पुत्रियां कुछ नहीं कमाती।

0: समाज में उन्हें विशेष प्रशंसा भी मिली है। एक समाचार पत्र में ईसाबेल के बारे में लिखा गया है कि मिस मैककिंडली की अपने कार्य पर अच्छी पकड़ है और बच्चों के साथ उनका संबंध स्नेह तथा विवेकवान है। वे मन की बड़ी अच्छी हैं और वार्तालाप के समय उनकी प्रतिभा देखते ही बनती है।
1: हेल परिवार के साथ स्वामी जी की ये आत्मीयता आजीवन बनी रही। लंदन से भारत लौटने के पूर्व हेल बहनों से विदा लेते हुए 28 नवंबर 1896 को लिखे उनके एक पत्र में है,
0: मुझे लगता है इस पृथ्वी पर मैं तुम चारों से ही सर्वाधिक स्नेह करता हूँ और मेरा विश्वास है कि तुम लोग भी मेरे प्रति वैसा ही स्नेह भाव रखती हो। तुम लोग और तुम्हारा सारा परिवार मेरे प्रति इतना प्रेम रखता है कि जिसे हम भारतीय कहते हैं। लगता है मैं पिछले जन्म में तुम्हारे ही परिवार का रहा होऊंगा।
2: स्वामी जी के व्याख्यानों की जो भी रिपोर्ट अमेरिकी अखबारों में छपती थी वे बंबई, कलकत्ता और मद्रास के भारतीय अखबारों में पुनर्मुद्रित होती थी, जिससे उनके भक्तों को और देशवासियों को पता चलता था कि अमेरिका में स्वामी जी कितने जनप्रिय हो गए हैं। उनकी विजय वार्ता पाकर समग्र भारतीय समाज उल्लासित हो उठा था। इंडियन मिरर, अमृत बाजार आदि अखबारों ने अमेरिकी अखबारों के लेखों को इस प्रकार प्रकाशित किया।
3: प्रतीक्षा गृह में सबसे आकर्षक व्यक्ति सन्यासी स्वामी विवेकानंद से सबकी भेंट होती है। वे सुगठित शरीर के हैं और हिंदुस्तानियों का उन्नत व्यवहार उनमें है। दाढ़ी मूछ विहीन चेहरा, समुचित ढला हुआ सामान्य आकार, सफेद दंत पंथियां और सुगठित होठ, जो वार्तालाप के समय प्राय मुदु मुस्कान के रूप में खुले रहते हैं। उनके संतुलित आकार के सिर पर नारंगी अथवा लाल रंग की पगड़ी शोभायान रहती है और उनका चोगा कमरबंद से बंधा घुटनों के नीचे तक लटकता रहता है। वो कभी चमकीले नारंगी रंग का और कभी गहरे लाल रंग का होता है। वे उत्तम अंग्रेजी बोलते हैं और गंभीरता पूर्वक पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं।
4: महासभा में वो अपने भावों तथा आकृति की भव्यता के कारण बड़े लोकप्रिय हैं। मंच पर उनके आने मात्र से ही हर्ष ध्वनि होने लगती है और हजारों व्यक्तियों द्वारा यह विशेष सम्मान वे विनय पूर्वक और बाल सुलभ संतोष के साथ स्वीकार करते हैं। निर्धनता तथा आत्म संयम के जीवन से सहसा इस वैभव और उत्कर्ष में आ पड़ना अवश्य ही इस विनम्र सन्यासी के लिए अपूर्व अनुभव होगा।
1: अक्सर इसी तरह स्वामी जी की विजय वार्ता प्रकाशित होते रहने से ब्राह्मण समाज तथा अनेक ईसाई मिशनरी उनके प्रति विद्वेष से भर उठे। विशेषकर प्रताप चंद्र मजूमदार की व्यवस्था में चलने वाली यूनिटी एंड द मिनिस्टर पत्रिका में लिखा गया,
5: नव हिंदू बाबू नरेंद्रनाथ दत्त उर्फ विवेकानंद की प्रशंसा में इंडियन मिरर में अनेक लंबे संपादकीय लेख निकल चुके हैं। इस सन्यासी के विषय में ऐसी प्रशंसावली के प्रकाशन में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब वे नव वृंदावन थिएटर में अभिनय करने हेतु हमारे पास आए थे अथवा जब वे इस महानगरी के किसी ब्रह्म समाज में भजन गाते थे, तभी से हम उन्हें इतनी भली भांति जानते हैं कि उनके बारे में आज के समाचार पत्रों में चाहे जितना भी कुछ लिखा जाए, इससे उनके चरित्र के बारे में हमारी धारणा पर कोई प्रकाश नहीं पड़ने वाला है। हमारे इन पुराने मित्र ने संप्रति अपने आख्यानों के द्वारा अमेरिका में जो भाव तरंग उठाया है उससे हम आनंदित हैं, परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमारे मित्र जिस नवीन हिंदू मत का प्रचार कर रहे हैं वो सनातन हिंदू धर्म नहीं है। उन्होंने जो पूर्ण रूप से अनुचित किया है वो है समुद्र पार जाना, मलिच्छों का अन्न ग्रहण करना, लगातार सिगरेट पीना अथवा इसी प्रकार का और कुछ करना। शुद्ध सनातनी हिंदू

0: इंडियन मिरर, पायनियर आदि संवाद पत्रों में प्रकाशित किया जाता था। ये बात और है कि कुछ व्यक्तियों की तरह कुछ संवाद पत्र भी इन खबरों को प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं करते थे। तथापि भारतवासी जान गए थे कि स्वामी जी का विजय गौरव सचमुच ही आश्चर्यजनक है।
1: इसी बीच श्री बैरोज द्वारा प्रकाशित ग्रंथ द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में स्वामी जी को अति उच्च स्थान मिला और उस ग्रंथ की एक अच्छी समीक्षा अमेरिका के रिव्यू ऑफ रिव्यूज में जनवरी अंक में छपने के बाद 21 फरवरी 1894 के इंडियन मिरर के संपादकीय लेख द्वारा उस ग्रंथ का विस्तृत रूप से प्रचार हुआ। तब भारतवासियों को समझने में देर न लगी कि स्वामी जी का विजय संवाद प्रमाणिक है और उन्होंने सनातन धर्म को समुचित ढंग से पाश्चात्य जगत के सामने प्रस्तुत किया है और ये भी समझ गए कि उनके विरुद्ध जो बातें भारत में प्रचारित की जा रही हैं, वे सब झूठ हैं, ईर्ष्या जनित हैं। वस्तुतः सबने यह स्वीकार कर लिया कि स्वामी विवेकानंद का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है।
0: धर्म महासभा की विज्ञान शाखा के अध्यक्ष श्रीयुत मार्विन मैरी स्नेल ने 30 जनवरी 1894 को पायोनियर पत्र के संपादक को विस्तार पूर्वक पत्र में लिखा था। उसमें भी बैरोज के मत ही दृढ़ता पूर्वक लोगों के हृदय में अंकित हो गए। स्वामी जी ने महासभा में 19 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म विषय के जिस निबंध का पाठ किया था, वे मद्रास तथा कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की जन्म तिथि के उत्सव में 11 मार्च 1894 को पुस्तिका के रूप में वितरित हुआ। इससे स्वामी जी के वक्तव्य का एक प्रामाणिक विवरण मिला। 21 मार्च के इंडियन मिरर में इसकी खूब प्रशंसा की गई।
1: स्वामी जी की विजय वार्ता सिर्फ साधारण जनता तक ही सीमित नहीं रही। यह संवाद उनके गुणमुग्ध राजा और महाराजाओं तक भी पहुंची। रामनद के राजा भास्कर वर्मा सेतुपति तथा खेतड़ी के राजा अजय सिंह बहादुर, इन दोनों स्वामी जी के शिष्यों ने आम दरबार में ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा को बुला करके भारत के मुख उज्जवल करने वाले स्वामी जी के कार्यों की प्रशंसा की और महासभा में वे जो सनातन धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादन करने में समर्थ हुए हैं, इसलिए उन्हें धन्यवाद देकर के पत्र भी लिखा गया।
0: मद्रास में राजा रामास्वामी मुदलियार तथा दीवान बहादुर सुब्रमण्यम अय्यर महोदय के नेतृत्व में एक विराट सभा बुलाई गई। वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी के प्रचार कार्य का समर्थन किया और सभा की रिपोर्ट के साथ उन्हें उत्साहवर्धक पत्र भी लिखा। उधर स्वामी जी की जन्म नगरी कलकत्ता भी उत्साह और आनंद से भर उठी। वहां राजा प्यारे मोहन मुखर्जी के सभापतित्व में कलकत्ता टाउन हॉल में एक विराट सभा बुलाई गई, जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित व विद्वान सज्जन साधारण जनता के साथ उपस्थित हुए थे। माननीय सभापति महोदय ने सर्वसम्मति से सभा की तरफ से शिकागो धर्म सभा के सभापति डॉक्टर बैरोज साहब के पास धन्यवाद सूचक पत्र भेजा।
1: इस तरह भारत में स्वामी जी के विजय का चारों ओर जश्न मनाया गया। इससे यह फल हुआ कि उनकी निंदा और आलोचना करने वालों की ही आलोचना हुई और अंततः वे हार मान करके चुप हो गए। उधर अमेरिका में स्वामी जी के व्याख्यानों का दौर चल रहा था और वे एक के बाद एक अमेरिका के नगर की जनता को अपने ज्ञान और वाग्मिता से वशीभूत करते जा रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की, क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे हमारी सुबह की सभा के कार्यक्रमों का। दिन के 12 बज चुके हैं।
2: हमारी प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की,
1: हमारा ये प्रसारण इसी तरह निरंतर रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा।
2: सुबह 7 बजे सुनेगा जीवन सौरभ अक्षय निधि।
1: अब इस सभा से दीजिए अनुमति आपके अपने पूर्वाखले को। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: भक्ति संगीत में 7:20 से सुबह 8 बजे आपको सुनवाएंगे।
1: थोड़ी ही देर में आप आनंद लेंगे तराने आजादी का।
2: सुनो कहानी, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:30 से विज्ञान पे।
3: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज आपने सुना ध्रुपद गायन, जिसे पेश किया पंडित उदय भावलकर ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती, और मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी ममता। बाबू राम रक्षादास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशील खत्री थे। बहुत ठाट बाट से रहते थे, बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ आते थे, हमेशा आदर सत्कार हुआ करता था, पूरे मोहल्ले में धूम थी। रोज ही दरवाजे पर किसी न किसी बहाने इष्ट मित्र एकत्रित होते थे, टेनिस खेलते थे, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय पानी होता, और क्या चाहिए। समाज की भी वो बहुत सेवा करते थे। समाज सुधार के लिए दिल्ली में सोसाइटी थी, बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे, और इस कार्य को असाधारण उत्साह से वो पूरा भी करते थे। जब उनका नौकर बीमार हुआ तो उन्होंने उसकी सेवा की थी। मिस्टर राम रक्षा का जातीय उत्साह यहीं तक सीमाबद्ध नहीं था, वे सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जबकि मोहल्ले में सर्वहारा वर्ग नशे करके गाते बजाते थे तो उन्हें बहुत शोक होता था। ये उनके प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी थी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए थे। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन शोक की लहर फैल गई थी। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रही थीं। उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदाशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते थे। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उन पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थी, किंतु बाबू साहब को इतना अवकाश नहीं था कि उनकी कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है, वे सच्ची देश हितेशिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर सत्कार करने में हम अद्वितीय हैं, हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। मिस्टर राम रक्षा आवश्यकताओं से भी बेपरवाह नहीं थे, वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूप से योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष 2 बल्कि कभी कभी 3 वक्तृताएं अवश्य तैयार करते थे। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सुंदर होती थी। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते थे और आश्चर्यचकित होकर कहते थे, वाह, आपकी भाषा में जादू है। सारांश ये कि बाबू साहब का ये जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य और फैशनेबल था। यदि उन्होंने किसी सुद्योग में भाग लिया भी तो वो सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात वे अपनी विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी, इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो जाता है। बहू को जलाना या कुढ़ाना सास की आदत नहीं थी, इसलिए बाबू राम रक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मात्र ऋण का विचार करके 10,000 रुपए अपनी माँ के नाम जमा कर दिए थे ताकि उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वो दिल्ली छोड़कर अयोध्या चली गईं, तब से वहीं हैं। बाबू साहेब कभी कभी मिसेज राम रक्षा से छिपकर उनसे मिलने अयोध्या जाते हैं, किंतु वो दिल्ली आने का नाम कभी नहीं लेती। हाँ, यदि कुशल क्षेम की चिट्ठी पहुंचने में कुछ देर हो जाती है तो विवश होकर समाचार पूछ लेती थी। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था, वे हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू राम रक्षा के दूर के नाते में वो साड़ू भी होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे, प्रातःकाल यमुना स्नान, गाय को अपने हाथों से झाड़ना पोछना, उनसे मिस्टर राम रक्षा का स्वभाव नहीं मिलता था। परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वो सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से बेखटके मांग लिया करते थे। केवल 4 अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था, ना कोई दस्तावेज, ना स्टाम्प, ना साक्षियों की आवश्यकता। मोटर कार के लिए 10,000 की आवश्यकता हुई, वहां से आ गया। घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,500 में लिया था, उसके लिए भी रुपया सेठ जी के यहाँ से आया। धीरे धीरे यही कोई 20,000 का अब मामला हो चुका था। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे, समझते थे कि उनके पास दुकानें हैं, बैंकों में रुपया है, जब जी चाहेगा रुपया वसूल कर लेंगे। किंतु जब 2-4 साल बीत गए, सेठ जी के तकाजों की अपेक्षा मिस्टर राम रक्षा की मांग बढ़ गई तो गिरधारी लाल को भी संदेह हो गया। वो एक दिन राम रक्षा के मकान पर आए और सभ्य भाव से बोले, भाई साहब मुझे एक हुंडी का रुपया देना है, यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो अच्छा होगा। ये कहकर हिसाब के कागजात और उनके पत्र उन्होंने दिखा दिए। मिस्टर राम रक्षा किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रहे थे तो बोल उठे, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, थोड़ा जल्दी है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रुखाई पर क्रोध आ गया, वे गुस्सा हो गए। आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है, 200 रुपए मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर राम रक्षा ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी, पार्टी का समय बहुत करीब था। वो बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कल स्वयं उपस्थित हूँगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे, वे राम रक्षा के इस कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। उन्होंने कहा, मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में मान में ऐश्वर्य में बड़ा हूँ, चाहूँ तो ऐसे को तो मैं नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पे आऊँ और आदर सत्कार की जगह ऐसा रूखा बर्ताव, वो हाथ बांधे मेरे सामने ना खड़ा रहे, किंतु क्या मैं पान इलायची इत्र आदि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं। वो तिनक गए और बोल उठे, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। राम रक्षा ने भी अकड़कर उत्तर दे दिया, हो जाएगा। राम रक्षा के गौरवशील हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेदजनक असर न हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी, वो मेरा अपमान कर गया। अच्छा तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यहीं हैं, निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी कि हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा और वो देर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुलाकर लाओ। मुनीम जी आए, उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट। किंतु जैसे जैसे इस घाटी में उतरते गए वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया, बहुत कुछ टटोला गया, कुछ हाथ नहीं था। अंत में निराश होकर वो आराम कुर्सी पर पड़ गए और उन्होंने एक ठंडी सांस ले ली। दुकानों का माल बिका किंतु रुपया बकाया था वो डूब गया। कलकत्ते के व्यापारियों से जो माल मंगाया था रुपया चुकाने की तिथि सिर पर थी और रुपया वसूल नहीं हुआ। रात भर करवटे बदलते रहे चिंता में। अब क्या करना चाहिए, गिरधारी लाल सज्जन पुरुष हैं, यदि सारा कच्चा हाल उन्होंने सुना तो अवश्य मान जाएंगे, किंतु ये कठिन कार्य है। जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे ही उनका दिल बैठा जा रहा था। कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के निकट आने पर होती है वही हाल अब राम रक्षा की थी। वो पलंग से ना उठे, हाथ मुंह भी नहीं धोया, खाने को कौन कहे। इतना जानते थे कि दुख पढ़ने पर कोई साथी नहीं है, इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझ नहीं उठाना पड़े। इस ख्याल से मित्रों को इस मामले की खबर तक नहीं थी। रोगी को जब जीने की आशा नहीं होती तो औषधि भी छोड़ देता है। मिस्टर राम रक्षा जब इस कुत्ती को ना सुलझा पाए तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो गए। शाम को एकाएक उठकर देखा, सेठ जी के यहाँ पहुंच गए और कुछ असावधानी से बोले, महाशय मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी ने भी घबरा कर बोला, क्यों, क्या हो गया। राम रक्षा ने कहा, इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र निहंग हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, आप अपना रुपया जैसे चाहे वैसे वसूल कर लें। जब ये हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते, सेठ जी ने भी कह दिया। तब राम रक्षा ने अभिमान से कहा, मैं आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। ये कहकर मिस्टर राम रक्षा वहाँ से चले गए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी, 20,000 रुपये मूल, 5,000 रुपये ब्याज, डिग्री हो गई, मकान नीलाम पर चढ़ गया, 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई, 10,000 की मोटर 4,000 में बिक गई, सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम न खड़ी हुई। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई तब भी 10,000 के ऋणी वो रह गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली म्यूनिसिपलिटी के मेंबरों का चुनाव हुआ। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में उनके एक और प्रतिवादी थे, नाम था मुंशी फैजुल रहमान खां, बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। बाबू राम रक्षा ने अपनी दृढ़ता, साहस, बुद्धिमानी और मृदु भाषण में मुंशी साहब की सेवा करनी आरंभ कर दी। सेठ जी को परास्त करने का ये अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात और दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत पड़ता। एक बार अपने असाधारण श्रद्धा उमंग में उन्होंने कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। ये वो आदमी है जिनकी गजलों पर कवि जनों में वाह वाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूँ। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इस जाति और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है, श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु, किंतु सामाजिक सेवा और जाति चाकरी और चीज है। वो मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता और निर्दयता और सुख विलास में व्यतीत होता है, इस सेवा के योग्य कभी नहीं है। सेठ गिरधारी लाल इस अनुक्तिपूर्ण भाषण पर हाल सुनकर क्रोध से आग हो गए। क्या मैं बेईमान हूं, ब्याज का धन खाता हूं, विषयी हूं, कुशल हूं, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूं नचा सकता हूं। खुशामदियों ने आग पर तेल डाल दिया। इधर राम रक्षा अपने काम में तत्पर रहे, यहां तक कि वोटिंग डे आ गया। मिस्टर राम रक्षा को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई। आज वो प्रसन्न थे। गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा, आज उसको पता पड़ेगा कि धन संसार में सभी पदार्थों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने योग्य होगा। मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयां उड़ने लगेंगी और वो मुझसे आंख न मिला पाएगा। शायद फिर मुझे मुंह ना दिखा सके। इन्हीं विचारों में मग्न राम रक्षा शाम को टाउन हॉल में पहुंच गए। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। वोटिंग आरंभ हुई। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुना दिया। सेठ जी की हार हो गई। फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। राम रक्षा ने तो हर्ष के मारे आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मोहल्ले वालों को अचंभा हुआ। चांदनी चौक से सेठ जी को हटाना, मेरू को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से राम रक्षा की जितनी आशाएं थी वो सब पूरी हो गई और उनका रंग फीका पड़ गया। खेद और लज्जा की मूर्ति बन गए। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आंखों से आंसू डबडबा ही गए। किंतु बाबू राम रक्षा बहुत देर तक इस आनंद का मजा ना लूट पाए। सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करना पड़ा। सभा वर्जित होते ही जब बाबू राम रक्षा सफलता की उमंगों में ऐठते, मूछों पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी के 3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। आपकी बाबू राम रक्षा के चेहरे का रंग उतर गया और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद की उमंग में तालियां तो नहीं बजाई, परंतु मुस्कुरा कर मुंह फेर लिया और रंग में भंग पड़ गया। मिस्टर राम रक्षा के घर पर ज्यों ही ये खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश में आई तो रोने लगी। रोने से छुट्टी मिली तो उन्होंने गिरधारी लाल को कोसना शुरू कर दिया। मिसेज राम रक्षा बहुत देर तक अपने विचारों में डूबी रही। रात करवटे बदलने में बीत गई। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है। मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं है। इतना भी इस निर्दय कसाई ने नहीं देखा। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से मिलकर एक रूप धारण हुआ और क्रोधाग्नि को दहलाकर और प्रबल हो गई। ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं, तब अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी तरह इस स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न हो रही थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हट किया, उस पर बरस पड़ी। मेहरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी तो उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ। इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। और हुआ ये कि 9 बजे उससे रहा नहीं गया और उसने एक पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी कर ली। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है। किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रहता, कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे को पकड़वाया, मैं वहां मौजूद नहीं थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूल गए हो, मैं उसी समय तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिलेगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए। ये भी ध्यान नहीं रहा कि एक सताई हुई स्त्री की ये मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता विवशता पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। मरे हुए को मारने का उपाय वो फिर सोचने लगे। तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे। मेहरा ने आकर कहा, सरकार कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने कहा, कौन स्त्री? नौकर ने कहा, सरकार मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मानुष, रेशमी साड़ी पहने हैं, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट के स्लीपर हैं, बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यूं तो साधारण सेठ जी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते, कोई भी कितना ही काम क्यों ना हो, ईश्वर उपासना उनके लिए जरूरी है। किंतु ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े आदमी की स्त्री उनसे मिलने आई है, तो वो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलम्ब करना उचित समझ बैठे। ऐसा विचार करके वो बोल दिए, बुला लाओ। जब स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए खड़े हो गए। अत्यंत कोमल वचनों में, कारुणिक शब्दों में बोले, माता कहाँ से आना हुआ? जब ये उत्तर मिला कि वो अयोध्या से आई हैं, तो आपने उन्हें फिर एक बार दंडवत किया। चीनी और मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा, अच्छा आप श्री अयोध्या से आई हैं, आपकी नगरी का क्या कहना, देवताओं की पुरी है, बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए, और यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ माते? तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बन गया। वो बोले, अच्छा तो मकान आपका यहीं इसी शहर में है, तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था, ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में बहुत थोड़ी हैं, ऐसे देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की, मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की सेवा कर सकूं, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे लिए हो सकता हो, उसे करने के लिए मैं सब भांति तैयार हूँ। यहाँ सेठ साहूकार ने मुझे बदनाम कर रखा है, मैं सबकी आंखों में खटकता हूँ। इसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि लोग जहाँ लोभ का ध्यान रखते हैं, वहाँ मैं भलाई रखता हूँ। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है, तो विश्वास मानिए मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके दिल टूट जाने का डर, कुछ ये ख्याल कि कहीं ये विश्वासघातियों के फंदे में ना फंस जाऊं, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज। किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है माता जी, आपसे तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो काम हो, उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूं। तब वृद्ध स्त्री ने कहा, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी ने तो प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, आज्ञा दीजिए। स्त्री ने कहा, मैं आपके सामने भिखारिन बनकर आई हूँ, आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा कर ही नहीं सकता। सेठ जी ने भी तत्पर होकर कहा, कहिए कहिए। तब स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, आप राम रक्षा को छोड़ दीजिए। सेठ जी के मुंह का रंग उतर गया, सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे सारे गिर पड़े। उसने मेरी बहुत हानि की है, उसका घमंड तोड़ डालूंगा तब छोड़ूंगा, सेठ जी ने बोल दिया। तब स्त्री ने कहा, तो क्या कुछ मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार ना करोगे? बेटा ममता बुरी होती है, संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ कर सकता है, किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का, यहाँ तक कि ईश्वर का भी बस नहीं है। मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो बेटा, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा, मैं जब तक जीऊँगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूँगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीज गया, पत्थर की तह में पानी रहता है, किंतु तत्काल ही इन्हें मिसेज राम रक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। तो वो बोल उठे, मुझे राम रक्षा से कोई उतनी शत्रुता नहीं है। यदि उन्होंने मुझे ना छेड़ा होता तो मैं ना बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ, परंतु उनकी बीवी साहिबा ने जो मुझे पत्र भेजा है उसे देखकर मेरे शरीर में आग लग गई है। दिखाऊं आपको? राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो भीगी आंखों से बोली, बेटा इस स्त्री ने मुझे भी दुख दिया है। उसने मुझे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जुबान उसके वश में नहीं है, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम उसे भुला दो। तुम्हारा देश देश में नाम है बेटा। ये नेकी तुम्हारे नाम की और भी फैल जाएगी। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार राम रक्षा से लिखवा कर किसी अच्छे समाचार पत्र में छपवा दूंगी। राम रक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा। तुम्हारे इस उपकार को वो कभी नहीं भूलेगा बेटा। जिस समय ये समाचार संवाद पत्रों में छपेंगे उस समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी और मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें कोई ना कोई पदवी जरूर मिल जाएगी। राम रक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी बात नहीं टालेंगे। सेठ जी के हृदय में अब गुदगुदी हो गई। यदि व्यवहार में वो पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाए जो माता जी कह रही हैं, जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियां दी, हजारों अनुनय विनय की, हजारों खुशामदे की, खानसामों की झिड़कियां सही, बंगलों के कई चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुझे इस काम में राम रक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ? उसने कहा, माताजी मुझे नाम नमूद की बहुत चाह नहीं। बड़ों ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे तो आपकी बात का ख्याल है। पदवी मिले तो लेने से इनकार नहीं और ना मिले तो तृष्णा नहीं, परंतु ये तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रबंध होगा? आपको मालूम होगा कि मेरे 10,000 रुपये आते हैं, वो कैसे मिलेंगे? तब राम रक्षा की माँ ने कहा, तुम्हारे रुपये की जमानत मैं करती हूँ। ये देखो बंगाल बैंक की पासबुक है, इसमें मेरा 10,000 रुपया जमा है। उस रुपये से तुम राम रक्षा को कोई व्यवसाय करा दो। तुम उस दुकान के मालिक रहोगे, राम रक्षा को उसका मैनेजर बना दो। जब तक वो तुम्हारे कहे पर चले निभाना, नहीं तो दुकान तुम्हारी। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। मेरा राम रक्षा अच्छा रहे, इससे अधिक मुझे और नहीं चाहिए। ये कहकर पासबुक सेठ जी को दे दी। माँ के अथाह प्रेम ने सेठ जी को विहल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम ही अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की लहर उठ गई, आंखें डबडबा आई। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की एक उमंग ने स्वार्थ और माया के बांध को तोड़ दिया। वे पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माता जी ये अपनी किताब ले लो, मुझे अब अधिक लज्जित ना करो। ये देखो राम रक्षा का नाम वही से उड़ा देता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा राम रक्षा तुमको मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष बाद टाउन हॉल में बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजाएं वायुमंडल में लहरा रही थी। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। एकाएक मुश्की घोड़ों की एक फिटन अहाते में प्रवेश हुई। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराते हुए उतरा। ये मिस्टर राम रक्षा थे। वे अब सेठ जी की एक खास दुकान के मैनेजर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, किंतु उनके मैनेजिंग प्रोप्राइटर ही समझ लीजिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राय बहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए ये बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य मिस्टर राम रक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृताएं सुनी वो बहुत उत्सुकता से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी राम रक्षा के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर राम रक्षा की माँ के चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ रहा था। राम रक्षा एंड फ्रेंड्स नामक चीनी बनाने का कारखाना अब बहुत उन्नति पर है। राम रक्षा अब भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियां कम देते हैं। दिन भर में 3 से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था संसार की एक बहुत अमूल्य वस्तु समझते हैं, और मिसेज राम रक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं है, क्योंकि अभी हाल में जब लड़का पैदा हुआ तब मिसेज राम रक्षा ने अपना सुवर्ण कंकन धाय को उपहार दिया था और मनो मिठाई बांटी थी। ये सब हो गया, किंतु वो बात जो अब होनी चाहिए थी नहीं हुई। राम रक्षा की माँ अब भी अयोध्या में रहती है और अपनी पुत्र वधू की सूरत कभी नहीं देखना चाहती।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया, लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुर सेन, कमी तुझ में नहीं तेरे कॉलेज में है, उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी। फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं, तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुर सेन और ठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
2: मैं आई कम इन सर?
3: यस कम इन, फरमाइए।
2: सर ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
3: नोटिस? मगर किस बात का?
2: कंपनसेशन का सर।
3: कंपनसेशन? मगर वो कैसा?
2: सर आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
3: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
2: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजी बिल्कुल है, पैसे लेकर शिक्षा बेचती है। आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
3: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
2: सर आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
3: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
2: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
3: क्या?
2: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
3: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
2: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
3: अच्छा,
2: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
3: क्या कह रहे हो?
2: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
3: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
2: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
3: और अगर हम ना बोल दें तो?
2: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
4: ओह नो।
2: ओह यस, बोलिए सर। कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
3: ठीक है, मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
2: शौक से करिए, 1 हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए, बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत
1: श्रीमान।
0: हुए हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि बामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
2: अरे सर सर मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूँ सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया, 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कौन? कपाल भारती जी।
0: हाँ,
1: अरे वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी
0: मतलब वो
2: ना ना ना
0: गई?
2: ना ना ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माताजी? वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने?
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित हो गई है।

0: ने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
1: फिर?
0: अरे मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
1: क्यों?
0: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
1: फिर यानी कि तैयारी नहीं हुए वो लोग?
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
1: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
1: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर?
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
1: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
1: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
1: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
1: ऐसा क्यों सर?
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
1: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
1: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
1: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
1: जी।
0: यह है प्रोफेसर मिश्रा।
1: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और यह है मिस्टर श्रीवास्तव।
2: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
1: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
1: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप?
1: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
2: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं?
1: सर 7।
2: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
1: कह दिया ना सर 7 वचन, फाइनल आंसर।

0: वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप?
1: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधु एक दूसरे को सात वचन देते हैं। तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए? साथ ही ना।
0: अच्छा चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
1: अंधे कवि?
0: हाँ
1: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
0: एक क्लू देता हूँ आपको।
1: हाँ।
0: वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
1: सर याद आ गया।
0: हाँ।
1: तुलसीदास।
0: हाँ, तुलसीदास। मगर वो कैसे?
1: सर तुलसीदास ही थे ना। हाँ। जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
0: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए।
1: जी।
0: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
1: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
0: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ।
1: जी।
0: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए आप बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
1: जी सर, गोविंदा।
0: गोविंदा?
1: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
0: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
1: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
0: अरे
1: अरे ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
0: ठीक है चतुर्सेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
1: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
0: हाँ।
1: सर मुझे नहीं मालूम।
0: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
1: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
0: बताइए।
1: श्री देवी।
0: श्री देवी? अरे मगर वो कैसे भाई?
1: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
0: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
2: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है। आइए श्रीवास्तव जी।
3: धन्यवाद जी। चतुर्सेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है। आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे अरे सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
1: जी जी सर।
3: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
1: सर 2 × 2 = 4। सर 4 दिनों में।
3: थोड़ा सोच कर चतुर्सेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
1: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
3: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
1: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को दो दिनों में निपटा देगा। लेकिन जब दो आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो दो दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
3: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर चार आदमी कर दिए जाए तो?
1: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
3: वो कैसे?
1: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर फुटबॉल हो जाएगी और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
3: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारिए आदमी आदमी को। मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम एक रुपए है तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
1: 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
3: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
1: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी, बस हो गया। 12 पेंसिलें और 10 रुपए हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
3: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
1: सर 50 किलोमीटर का।
3: मगर कैसे?
1: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ कम जरूर जा सकती है।
2: ठीक है चतुर्सेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
1: जी,
2: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
1: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
2: ओसामा बिन लादेन? मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
1: हाँ तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
2: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
1: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
1: बहन छायावती ने।
2: बहन छायावती ने? मगर वो कैसे?
1: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए। बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
2: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
1: सर जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
2: वेरी गुड वेरी गुड, एक उदाहरण देंगे इन करों का?
1: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेब कटी अप्रत्यक्ष कर।
2: अच्छा अब एक आखिरी सवाल।
1: जी,
2: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
1: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर 36 साल।
2: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
1: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
2: ठीक है चतुर्सेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
1: जी बेहतर सर।
2: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कहिया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
3: जी सर।
2: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
3: सर हमारे पास एक आइडिया है।
4: वो क्या?
3: सुनिए सर।
2: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
3: ठीक है ना सर।
2: फिर बुलाइए बुलाइए उसे बुलाइए बुलाइए। चतुर सेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%, लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
1: जी सर,
2: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
2: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
1: 17,542? मगर ये तो गलत है सर। 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं। कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए। और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे। ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
2: चतुर सेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया। इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। यह आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
1: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर। आपने तो बताया ही नहीं था सर, ये टेस्ट का हिस्सा है।
0: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर सिंह?
2: बताइए बताइए,
0: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे।
2: अभी हमारे है ना?
0: वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप? जैसे को तैसा।
1: सर सर सर, ऐसा ना करिए सर। मैं 17,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर लाइए, ये चेक मुझे दे दीजिए।
2: बिल्कुल नहीं भुंजी, भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
1: सर।
2: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर।

तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कई तरह के वादन और गायन, तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपमा भागवत का सितार वादन, और उसके बाद सुनवाएंगे आपको गायन देविकी पंडित का। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन, जिसे पेश किया है अनुपमा भागवत ने।

0: तो श्रोताओं, भी आपने सुना सितार वादन, जिसे पेश किया अनुपमा भागवत ने। अब आनंद लीजिए गायन का, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं देविकी पंडित।
1: सोहिनी में राग सोहिनी में आपको मैं

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर। मैं हूं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आज़ाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलोट के घर ना आए।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 13वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं अग्नि, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
4: यो नारमरम सहवसुम निहंतवे प्रक्षाय च दासवेशाय चावहः ऊर्जयन्त्या अपरिविष्टमास्य मुतैवाद्य पुरु कृत्सात्युक्त्यः। हे बहुकर्मा इंद्रदेव, आपने दस्युओं के विनाश के उद्देश्य से नृमर के पुत्र सहस्वसु को बलशाली वज्र से वार कर मार दिया तथा अन्नादि प्राप्त किया, अतः आप प्रशंसा के योग्य हैं। शतम वा यस्य दश साकमाद्य एकस्य सृष्टौ यद्ध चोदमाविथ अरज्जौ दस्यून समुनब्द भीतये सुप्राव्यो अभवः सास्युक्त्यः। हे इंद्रदेव, आपने दानशील यजमान के सुख के लिए संरक्षण प्रदान किया। आपके रथ को 1000 अश्व खींचते हैं। आपने रस्सी से बांधे बिना दभीति ऋषि के दस्युओं को नष्ट किया और उनके श्रेष्ठ मित्र बने। आप प्रशंसा के योग्य हैं। विश्वे दनुरोधना अस्य पौंस्यम ददुरस्मै दधिरे कृत्नवे धनम षडस्तभना विष्टिरः पञ्च संदशः परिपरो अभवः सास्युक्त्यः। इंद्रदेव के पराक्रम के अनुकूल सारी नदियां प्रवाहित होती हैं, उनके लिए सभी धन एकत्रित करते हैं तथा यजमान हविष्यान्न देते हैं। हे इंद्रदेव, आपने पंचजनों के पालन के लिए 6 विशाल पदार्थों को धारण किया है, अतः आप प्रशंसा के योग्य हैं। सुप्रवाचनम तव वीर वीर्यम येदेकेन क्रतुना विन्दसे वसु जातु स्थिरस्य प्रवयः सहस्वतो या चकर्थ सेंद्र विश्वास्युक्त्यः। हे इंद्रदेव, आप एक बार के प्रयास से ही इच्छित ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। आपका यह पराक्रम प्रशंसनीय है। आप उत्पन्न प्राणियों को अन्न देने वाले एवं महान कार्यों के कर्ता हैं, इसी कारण आप प्रशंसा के योग्य हैं। अरमयः सर्पस्तराय कम तुर्वीतये च वैयाय च श्रुतिम नीचा संतमुदनयः परावृजम प्रांधम श्रोणम श्रवयंत्या सास्युक्त्यः। हे इंद्रदेव, आपने तुर्वीति तथा वत्य को प्रवाहित जल से सुखपूर्वक पार जाने का मार्ग प्रशस्त किया। अंधे एवं पंगु परावृक ऋषि को आपने गहरे जल से निकालकर आंख तथा पैर प्रदान करके अपनी कीर्ति बढ़ाई। आप प्रशंसा के योग्य हैं। अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राधः समर्थयस्व बहुते वसव्यम् इन्द्र सच्चित्रम् श्रवस्या अनु द्यून बृहद् वदेम विदथे सुवीराः। हे इंद्रदेव, आप महान ऐश्वर्यशाली हैं। श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त आप हमें धन प्रदान करें। हम सदैव आपके धन को प्राप्त करने की कामना करते हैं। हम यज्ञ में पुत्र पौत्रों सहित स्तोत्रों का गायन करके आपकी स्तुति करें।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 13वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति रचना।

आत्मविश्वास वो शक्ति है जो असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव बना देती है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनते जाते हैं।

इसी के साथ हमारा आज का एक भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आसाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है श्रीश कुमार मेहता के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

मुक्त गगन में लहराता ये राष्ट्र का अभिमान है। ये तिरंगा राष्ट्र कुल का एक पवित्र निशान है। अनगिनत बलिदानियों के रक्त से रंगा हुआ मात्र राष्ट्र ध्वज नहीं, ये क्रांति का गुणगान है। क्रांति का गुणगान है। मुक्त गगन में लहराता राष्ट्रध्वज किसी भी देश की स्वतंत्रता का बुलंद उद्घोष होता है। हमारा राष्ट्रध्वज हमारी आन बान और शान है। ये तिरंगा हमें याद दिलाता है कि केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ इसमें भारत माँ के वीर सपूतों के रक्त का लाल रंग भी शामिल है। ये हमें याद दिलाता है झंडा सत्याग्रह की। ये हमें याद दिलाता है उन अमर बलिदानियों की जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए लेकिन इसे झुकने नहीं दिया। ऐसे ही एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे शिरीष कुमार मेहता, जो अंग्रेजों के अत्याचार से भयभीत नहीं हुए। उन्होंने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। अपनी मातृभाषा गुजराती में वो नारा लगाते रहे, नहीं नमशे निशान भूमि भारतनु। हाथों में तिरंगा लेकर वो लगातार आगे बढ़ते रहे। भारत की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई और अपना जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उस समय उनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। एक ऐसी उम्र की जब न जीवन का ज्ञान होता है, न ही देश दुनिया की समझ होती है। ऐसी किशोरावस्था में उन्होंने जीवन की सार्थकता को भी समझा था और देश की अवस्था को भी। शिरीष कुमार मेहता का जन्म 28 दिसंबर सन 1926 को महाराष्ट्र के नंदुरबार नामक स्थान पर हुआ था। नंदुरबार सतपुड़ा से लगा हुआ महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। नंदुरबार की पहचान एक व्यापारिक स्थल के रूप में की जाती है। इसी गांव में एक गुजराती व्यापारी के घर पर उनका जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। अच्छे संस्कारों के साथ एक समृद्ध परिवार में बहुत ही लाड़ प्यार से उनकी परवरिश होने लगी।

शिरीष कुमार मेहता का बचपन जिस वातावरण में बीत रहा था उसमें स्वदेशी और स्वराज की गूंज थी। वंदे मातरम का नारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध का जयघोष बन चुका था। साइमन कमीशन का विरोध, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी की दांडी यात्रा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गुप्त रूप से भारत से बाहर जाकर विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन कर स्वाधीनता की लड़ाई में सक्रिय होना, इन सारे घटनाक्रमों ने शिरीष कुमार मेहता को भीतर तक प्रभावित किया था और वो स्वाधीनता संग्राम से जुड़ने लगे। उनकी शिक्षा दीक्षा नंदुरबार में जारी थी। वो स्कूल में शिक्षा के दौरान भी अपने साथियों से स्वाधीनता संघर्ष की चर्चा किया करते थे। ये वो समय था जब गांधी जी सत्य और अहिंसा के बल पर अन्यायी सत्ता को ललकार रहे थे। गांधी जी के एक आह्वान पर भारतवासी एकजुट होकर खड़े हो जाते थे। शिरीष कुमार मेहता के मन में गांधी जी के विचारों और उनके जीवन दर्शन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। शिरीष कुमार मेहता की माताजी एक देशभक्त महिला थीं। यही कारण है कि वो बचपन से ही उन्हें स्वाधीनता संग्राम की कहानियां सुनाया करती थीं। क्रांतिकारियों के बलिदान की अनगिनत कथाएं उन्होंने बचपन से ही सुन रखी थीं। इस पारिवारिक वातावरण ने उनके बाल मन पर अंग्रेजों के अत्याचार और स्वाधीनता संघर्ष की कहानियों को स्थायी रूप से लिख दिया और वो मन ही मन स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए दृढ़ संकल्पित होते गए। उन दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चतुराईपूर्ण गतिविधियों की व्यापक चर्चा थी। नेताजी द्वारा अंग्रेजों को चकमा देने की रणनीति ने शिरीष कुमार मेहता के मन पर गहरा प्रभाव डाला और अब वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही तरह निडर होकर अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। जब वो 12 वर्ष के थे तभी से वो अपने दादाजी के साथ तिरंगा उठाकर आजादी के आंदोलन में शामिल हो जाते थे। इस तरह वो धीरे धीरे स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने लगे। वो सभाओं में जाते, तत्कालीन नेताओं के भाषण सुनते और कभी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए रैलियों में शामिल होते। इसी बीच सन 1942 का साल आया। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई की घोषणा कर दी। गांधी जी की अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। करो या मरो का आह्वान सुन समूचा भारत गांधी जी के साथ खड़ा हो गया। हालांकि सभी बड़े नेता आंदोलन के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन देश भर में एक ही नारा गूंज रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो।

गांधी जी का आह्वान करो या मरो जन जन तक पहुंच चुका था। देश के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में जारी था। अनेक नेता भूमिगत रहते हुए भी इस आंदोलन को गति दे रहे थे। जगह जगह हड़तालें हो रही थीं, बाजार बंद हो रहे थे, अलग अलग जगहों पर झंडों का प्रदर्शन और जुलूस आदि का आयोजन लगातार किया जा रहा था। देश भर के छात्र भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। स्कूल और कॉलेज में बंद का आयोजन किया जा रहा था। इसी क्रम में नंदुरबार में भी लोग भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो रहे थे। 9 सितंबर 1942 की तारीख थी। नंदुरबार में स्कूली बच्चों द्वारा एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। उस समय शिरीष कुमार मेहता की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। वो कक्षा 8वीं के छात्र थे। इस जुलूस में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल थे और शिरीष कुमार मेहता जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। हाथों में झंडा लिए ये जुलूस आगे बढ़ रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे से आसमान गूंज उठा था। चूंकि शिरीष कुमार मेहता की मातृभाषा गुजराती थी, इसलिए वो गुजराती भाषा में बुलंद स्वर में नारे लगा रहे थे, जिसका आशय था, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, भारत का झंडा नहीं झुकेगा। ये रैली शहर से होकर गुजर रही थी कि पुलिस ने मंगल बाजार इलाके के चारों ओर बैरिकेड लगाकर जुलूस को रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने रैली समाप्त करने का आदेश दिया, लेकिन रैली में शामिल स्कूली बच्चे रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पुलिस के आदेश की अवहेलना की और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। पुलिस ने रैली पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन आंदोलनकारी आगे बढ़ते ही रहे। इस संघर्ष में पुलिसकर्मियों ने झंडा छीनने की भी कोशिश की, लेकिन बच्चों ने झंडा एक युवा आंदोलनकारी के हाथों में थमा दिया। जुलूस आगे बढ़ता रहा और आगे कन्या विद्यालय के पास से गुजरा। अनेक छात्राएं भी इसमें शामिल हो गईं। ये जुलूस अब एक सरकारी कार्यालय के पास पहुंचा। यहां शिरीष कुमार मेहता ने भीड़ को संबोधित किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद बच्चों ने सरकारी भवन पर झंडा फहराने का फैसला लिया। इस बात से संघर्ष और अधिक बढ़ गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बंदूक तान दी। शिरीष कुमार मेहता सबसे आगे आकर खड़े हो गए और गरजते हुए उन्होंने कहा, अगर तुम्हें गोली मारनी है तो पहले मुझ पर गोली चलाओ। हाथ में तिरंगा लहराते हुए वो जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगाने लगे। क्रोधित अंग्रेज अधिकारी ने उन पर गोली चला दी और वो वहीं गिर पड़े। इस घटना में उनके साथ धनसुख लाल वाणी, घनश्याम दास, शशिधर केतकर और लाल दास भी मारे गए। इस तरह अपने चार साथियों के साथ शिरीष कुमार मेहता भारत माता की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गए। नंदुरबार में उनके सम्मान में स्थापित स्मारक आज भी उनके बलिदान की याद दिलाता है। ऐसे महान देशभक्त को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूँ रंजीत सावरकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार का। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे
1: डॉक्टर संजीव गर्ग जी से, जो कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम में वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद में।
2: जी धन्यवाद।
1: सर, मिट्टी का जिक्र हो रहा है, सॉइल का जिक्र हो रहा है और हम सब मिट्टी ही के बने हैं, तो सबसे पहले सर हम बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, कि आप कहाँ की मिट्टी में पले बड़े और किस तरह का आपका सफर रहा अब तक?
2: मैं एक कृषक परिवार और बिजनेसमैन परिवार में मैं जन्मा
1: जी,
2: और मैं मूलतः मुरैना जिला जो कहा जाता है और डाकुओं का क्षेत्र है उसमें मेरा जन्म हुआ
1: जी।
2: और वहाँ की मृदा बहुत ही, जो चंबल का बैड जो बोला जाता है
1: जी,
2: उसमें पला। और मूलतः मेरा जो बैकग्राउंड था वो बिजनेस था, बट मैं कृषि से मैं थोड़ा बहुत जुड़ा, तो मैंने कृषि की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा ग्वालियर से हुआ, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर से हुआ। उसके बाद मैंने PhD महात्मा गांधी चित्रकूट दामोदर विश्वविद्यालय चित्रकूट से की
1: जी।
2: और उसके बाद मैंने विभिन्न जगह, मैं सबसे पहले मैं ब्यावरा राजगढ़ में भी रहा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद मैं कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में 3 साल, फिर मैं CIE भोपाल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करौत भोपाल में भी रहा 5 साल, उसके बाद मैं इंदौर में भी 1 साल रहा, उसके बाद मैं यहाँ लास्ट 8 ईयर से मैं कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में अपनी सेवाएं एज ए सीनियर साइंटिस्ट हेड के माध्यम से दे रहा हूँ।
1: सर, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि विश्व मृदा दिवस जो वर्ल्ड सॉइल डे, उद्देश्य क्या है, अगर आप इस पर कुछ रोशनी डालें और इसकी शुरुआत कब से हुई?
2: बिल्कुल, विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, मुख्य रूप से इसका जो मनाने का उद्देश्य है
1: जी,
2: वो है कि मिट्टी एक हमारी माता है
1: जी।
2: हम कहते हैं ना कि भूमि हमारी माता होती है, माताएं हमारी तीन होती है
1: जी,
2: एक हमको जन्म देने वाली
1: जी,
2: एक हमको पालने वाली और एक गाय माता
1: जी।
2: तो भूमि एक जननी और एक पोषण करने वाली
1: जी।
2: तो इसको माता के रूप में माना जाता है पूरा विश्व में और भारत में। भारत में तो इसके प्रति बहुत श्रद्धा है, जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो मिट्टी के गणेश हैं, मिट्टी की जमीन को पूजते हैं, चाहे हम अनाज बोएं, चाहे हम किसी प्रकार का, हम मिट्टी से लगाव रखते हैं और इस मिट्टी से ही जन्मते हैं और मिट्टी में ही
1: जी।
2: तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से कि इसको मिट्टी को संरक्षित किया जाए
1: जी,
2: और इसके प्रति जागरूक किया जाए। और जो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे है वो 5 दिसंबर थाईलैंड में स्वर्गीय राजा भूमिबोल अदुल्यदेश जी के जन्मदिन के सम्मान में ये मनाया। उन्होंने मिट्टी के लिए काफी काम किया, जो मिट्टी बचाने के लिए सार्थक थे, और 2002 में ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेस ने भी इस तारीख को सिफारिश की
1: जी।
2: और दिसंबर 2013 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एफओनेस ने औपचारिक रूप से इसको मनाने का सेलिब्रेशन किया
1: जी।
2: इस उद्देश्य मिट्टी के संरक्षण के लिए
1: जी,
2: मिट्टी के महत्व के लिए, मिट्टी के बचाव के लिए, इसका चाहे कटाव हो चाहे पॉल्यूशन हो, सभी प्रकार से मिट्टी से बचाने के उसके उद्देश्य को मनाया जाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO इस दिवस को मनाने में इसकी क्या भूमिका रहती है?
2: FAO इसको मुख्य रूप से पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में इसको प्रमोट करती है कि इसको बचाया जाए और फूड के लिए, क्योंकि हमारा जो खाद्य है
1: जी,
2: वो हमारी मिट्टी से ही आता है
1: जी।
2: जब तक हमारी मिट्टी अच्छी नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, पूरे विश्व की मृदा पर ही पूरा मानव जीवन, ह्यूमन हेल्थ है वो डिपेंड करती है
1: जी।
2: तो इसका फूड है वो मिट्टी से बचता है, मिट्टी से ही हम मिट्टी को खाते हैं। तो इसमें जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका अहम रोल रहता है, और इसका सेलिब्रेशन के रूप में वो 2014 से पहला सेलिब्रेशन उसको 2014 में किया।
1: सर, एक नारा भी है कि होल्ड सॉइल इरोजन सेव आर फ्यूचर, तो इन नारों का क्या, किस तरह से हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में महत्व है?
2: बिल्कुल, नारा विशेष रूप से अगर किसी को अवेयर करना है, जागरूक करना है, तो हम कोई ना कोई एक अभियान लेके चलते हैं
1: जी।
2: और अभियान में हम किसी न किसी को वर्ड को चुन के और वो एक नारे के रूप में, हम किसी को जागृत करना है तो हम एक नारा लेके चलते हैं
1: जी।
2: तो पूरे वर्ल्ड को, पूरे भारत को अगर हमें मिट्टी के प्रति जागरूक करना है तो इस अभियान को लेके चलना पड़ेगा। हमें बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों का चयन करके जिससे लोग जागरूक हों, उनके मन में उसके प्रति जागरूकता आए
1: जी,
2: और एक रिश्ता बने मिट्टी से। क्योंकि लोग सिर्फ अभी अपनी लाइफ में कह पैसा, है ना, आजीविका हमने मिट्टी को खेत को बना के किसान ने भी कर लिया है, तो धीरे धीरे इसके प्रति भी प्रेम करें
1: जी।
2: अभी देख रहे हैं कि सॉइल में बहुत सारी वर्मिंग हो रही है
1: जी,
2: हैवी पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हैवी फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो अनबैलेंस फर्टिलाइजर्स हो, इरोजन हो कहीं भी हमने सॉइल को किसी प्रकार से, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है
1: जी,
2: और नेचुरल रिसोर्स का अत्यधिक दोहन भी हो रहा है, हमने कई पहाड़ काट दिए, कई कुछ कर दिया
1: जी।
2: तो सॉइल्स को उसको बचाना बहुत ही अहम हमारा रोल है, तो इससे हमें कुछ कैंपेनिंग लेके चलना पड़ेगा जिससे पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, हमारे भारत देश में
1: जी,
2: के प्रति लोग जागरूक हों, चाहे वो शहर की पॉपुलेशन हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र
1: जी जी।
2: तो इसको ऐसे कुछ नारे हमको लेके चलना पड़ेगा जिससे हम लोगों को, किसानों को अवेयर।
1: अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल यह है कि जो सॉइल पॉल्यूशन है उसको योगदान देने में कौन से प्रमुख जो कारक वो कौन कौन से हैं, और इसे रोकने में इंसान या व्यक्ति किस तरह से अपना योगदान दे सकता है?
2: सॉइल्स में हमारी चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे एग्रीकल्चर वेस्ट हो, चाहे प्लास्टिक हो, अन्य बहुत सारे कारक हैं जो धीरे धीरे हमारे सॉइल्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, चाहे पेस्टिसाइड्स भी हो, क्योंकि हैवी पेस्टिसाइड और हैवी फर्टिलाइजर, अनबैलेंस फर्टिलाइजर डालने से हमारी सॉइल कहीं ना कहीं पॉलिनेटेड पॉल्यूशन हो रही है
1: जी,
2: दूषित हो रही है। दूषित होने का कारण कि उसमें माइक्रोब्स की संख्या कम होना और हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो कम होना
1: जी,
2: प्लास्टिक का मिलना, प्लास्टिक पॉलिथिन, वो कुछ एग्रीकल्चर ऐसी प्रैक्टिस भी है जो हम कहते हैं बैड प्रैक्टिस
1: जी जी,
2: उनके आने से भी हमारी जो सॉइल है, मृदा है, वो धीरे धीरे दूषित हो रही है। कुछ हमारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज है वो हमने शहरों का कचरा लिया और हमने डाल दिया और उड़ के वो गांव में आ गया
1: जी।
2: कुछ हमारी ऐसी बिजनेस इंडस्ट्री भी है जो पॉलीथिन में बहुत सारा पैक करते हैं और वो ग्रामीण क्षेत्र में आ जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में उसको फिर कहीं ना कहीं डालते हैं और वो पॉलीथिन हमारे खेतों में धीरे धीरे जा रही है
1: जी।
2: तो ऐसे कुछ प्लास्टिक है, कुछ इंडस्ट्रियल वेस्टेड मटेरियल है, शहरों का कचरा है, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, तो उनके कारण भी हमारी सॉइल जो है वो दूषित हो रही है
1: जी। किस तरह से रोका जा सकता है और एक लोग अपने स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं जागरूकता के लिए और इसमें सुधार आ सके?
2: बिल्कुल, लोगों को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। कभी भी हमको अगर बाजार में, मार्केट में जाना है तो कोशिश हो कि ज्यादा से ज्यादा हम कपड़े की पॉलीथिन, कागज की पॉलीथिन, इनका उपयोग करें
1: जी।
2: किसान भाइयों को भी ज्यादा से ज्यादा, जो गांव में हम शहर से कोई भी सामान ला रहे हैं तो कोशिश करें कि हम प्लास्टिक का बैग्स या अन्य जो हमारे सॉइल को या हमारे जीवांश पदार्थ है, खाद है, विदेशी खाद है, उनको दूषित ना करें
1: जी।
2: कि हमारे घरों पर पता रहे वो पॉलीथिन जा रही है, तो किसान भाई भी मार्केट से जो सामान लेके आ रहे हैं उनको कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कागज की पॉलीथिन, कपड़े की पॉलीथिन उसमें लाएं
1: जी।
2: एक दूसरा काम कि हमको विशेष रूप से जो हमारी सॉइल्स को पॉलिनेट कर रहे हैं
1: जी,
2: पॉल्यूशन कर रहे हैं जो उसमें प्लास्टिक हो, उनको हम डीकम्पोज करें
1: जी,
2: है ना, और हम नगर निगम है, नगर पालिका है, इनमें हम जो है उसका सही सॉल्यूशन करें। ऐसा नहीं हमने उठा के जहाँ हमारा गोबर का इकट्ठा हो रहा है और वहीं हमने पॉलीथिन भी डाल दी, कांच भी डाल दिया और अन्य कोई भी सिस्टम वो भी डाल दिया जो डीकम्पोज हो ही नहीं सकता, या कई सालों में होते हैं और वो हमने उठा के फिर खेतों में डाल दिया
1: जी,
2: नदियों में पानी में चला गया, वो जमीन में पहुंच गया कहीं दूसरी जगह और हमने पानी दिया, कहीं कैनाल है, अन्य चीजें हैं, बहुत सारे हमने पेस्टिसाइड हैं जिसमें जीवांश पदार्थ या अन्य माइक्रोब्स को वो डैमेज कर रहे हैं, संख्या कम कर रहे हैं
1: जी,
2: तो उसमें भी हम नहीं स्प्रे करें, अवॉइड करें उनको। बहुत सारे फर्टिलाइजर, अनबैलेंस फर्टिलाइजर डालने से हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी खत्म हो रही है
1: जी,
2: तो ऐसे करके हमें इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, जहां तक कोशिश है वो करें
1: जी।
2: हमें कम से कम पॉलीथिन का और इनका तो हमें बिल्कुल करना ही पड़ेगा, एक ही जगह स्थान पर इकट्ठी करें और उसको हम डीकम्पोज करें, हमें घूरे पे या खेत पे कहीं, कोई बच्चे हैं बच्चों को भी हम अवेयर करें कि भाई गांव में तो किस अक्सर ये होता है बच्चे कुछ भी लाए
1: जी
2: और उन्होंने पॉलीथिन फाड़ी और वहीं फेंक दी
1: जी,
2: और वो उड़ के पता चला गांव के घूरे पे चली गई, घूरे से वो खेत में चली
1: जी।
2: तो इससे बहुत सारी हमारी जमीन में हमारी मृदा का बहुत दूषित हो रही है और बहुत सारी चीजें उसमें
1: कमी है। मतलब लोगों में जागरूकता जरूरी है और वहीं से शुरुआत होनी चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, छोटे से ही हम अपने बच्चों को सिखाएं कि नहीं, हमारे मृदा इससे बहुत दूषित हो रही है और ये हमें एक्टिव नहीं करना है, चाहे कोई भी किसी प्रकार की पॉलिथीन हो, प्लास्टिक हो, प्लास्टिक का कंटेनर हो, तो पता चले कि वहां हम नहीं डालें, ऐसा स्थान पर इसको इकट्ठा करें और किसी भी कबाड़े वाले को रिसाइकिल करें, रिसाइकिल की जगह जाए वो रिसाइकल हो। गवर्नमेंट को भी इसमें फोकस करना चाहिए कि प्लास्टिक को रिसाइकिल ज्यादा से ज्यादा गांव ग्रामीण क्षेत्रों में उसको रिसाइकल करना चाहिए, पॉइंट बनाना चाहिए पंचायत स्तर पर, नगर परिषद स्तर पर, नगर निगम स्तर पर कि वहां वो प्लास्टिक को खरीदें, लें, प्लास्टिक पॉलीथिन है, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस करने की आवश्यकता है जिससे वो खेतों में और वहां ना जाए।
1: सही बात,
2: क्योंकि बहुत ज्यादा खेतों में पॉलीथिन अगर गई तो एक दिन हमारे मृदा बिल्कुल ही दूषित हो जाएगी।
1: सर एक सवाल और है कि सतत मृदा प्रबंधन पद्धतियां क्या हैं, जैसे न्यूनतम जुताई, फसल चक्र, जैविक पदार्थ जो होते हैं इनका उपयोग, और ये क्यों आवश्यक होते हैं?
2: बहुत सारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है फार्मर्स को
1: जी
2: वो गुड ही करना चाहिए, जिसे हमें जितनी जुताई की आवश्यकता है
1: जी,
2: हमें जिस क्रॉप के लिए कहें कि एक बार हमें कल्टीवेटर करना है तो एक बार ही करें। अधिक कल्टीवेशन करने से भी हमारी सॉइल कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है। डिस्टर्बेंस मतलब हम जितनी ज्यादा सॉइल को डिस्टर्बेंस करेंगे, जुताई करेंगे खेत, उतना ही ज्यादा सॉइल महीन होगी।
1: अच्छा अच्छा,
2: उसकी पोर स्पोर कम होगी
1: जी।
2: जब पोर स्पोर कम होंगे तो हमारी मृदा जो हम कहें बहुत सिंपल भाषा में सीमेंट जैसी हो जाए
1: जी, जी जी जी।
2: सीमेंट बहुत ही महीन होती है
1: जी,
2: और जब महीन कोई चीज होगी तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी
1: जी,
2: उसका ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन खत्म होगा तो कहीं ना कहीं हमारी मृदा है वो अनफर्टिलिटाई होगी
1: जी,
2: है ना, उसकी उर्वरता शक्ति खोएगी। और अगर और ज्यादा महीन हुई तो हमारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की
1: जी,
2: वो धीरे धीरे कम होगी, कम होगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दूसरा सीपेज जो नीचे हमारा वाटर जाता है वो नहीं जाएगा
1: जी।

0: अपनी फिजिकल जो होती है वो अपनी खोती है।
1: मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने में मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं?
0: हम अगर बात करें बहुत ही सिंपल बात, अगर रेगिस्तान और हमारी जो फर्टाइल सॉइल है ना, बंजर भूमि और उर्वरक भूमि
1: जी,
0: अगर हम कहें कि बंजर भूमि क्या है
1: जी,
0: तो सिंपल भाषा में माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट
1: जी,
0: जिस मृदा में सॉइल में माइक्रोब्स नहीं है
1: जी
0: और न्यूट्रिएंट नहीं है, वो जमीन बंजर जमीन की है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: हाँ। और जिस मृदा में हमारे माइक्रोब्स हैं
1: जी जी,
0: बेनिफिशियल्स माइक्रोब्स हैं
1: जी
0: और न्यूट्रिएंट है
1: जी जी,
0: न्यूट्रिएंट इज द ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, बोरॉन है
1: जी,
0: ये सब है, तो वो हमारी फर्टाइल सॉइल
1: जी जी जी,
0: और यही माइक्रोब्स उस न्यूट्रिएंट को प्लांट को अवेलेबल करवाते
1: हैं। अच्छा अच्छा जी,
0: तो प्लांट की ग्रोइंग के लिए
1: जी
0: अहम रोल माइक्रोब्स निभाते हैं
1: जी जी जी।
0: किसी भी क्रॉप के रेसिड्यू डिकम्पोज करने के लिए
1: जी
0: सबसे बड़ा रोल माइक्रोब्स का ही होता है
1: जी,
0: नहीं तो सालों वहां कुछ भी फसल का अवशेष पड़ा रहेगा, अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो उसको वो डिकम्पोज नहीं करेगा। तो मृदा की जीवित रखने के लिए सबसे अहम रोल माइक्रोब्स का और न्यूट्रिएंट्स का।
1: अच्छा अच्छा,
0: इतना बड़ा रोल है हमारी मिट्टी के, मिट्टी में माइक्रोब्स होने का। बोलते भी हैं एक चुटकी मिट्टी में, एक ग्राम मिट्टी में लाखों की संख्या में जीव होते हैं।
1: सही सही है ना,
0: तो बिल्कुल राइट बात है कि वो हमारी मिट्टी में जीव नहीं होंगे तो वो मिट्टी नहीं होगी।
1: सर अगर आप कोई सुनने वालों को उदाहरण दें जो विश्व स्तर पर लागू किया गया कोई सफल मृदा संरक्षण का ऐसा अभ्यास हो, ताकि सुनने वाले और बेहतर तरीके से उसको समझ सके।
0: हम कहेंगे पूरे विश्व में
1: जी
0: हरी खाद
1: जी जी जी
0: का अगर उपयोग करें
1: जी,
0: तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी
1: जी
0: जो है
1: जी
0: वो बिल्कुल उर्वरक होगी और उसमें माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी
1: जी जी जी,
0: हमारे किसान भाइयों के लिए उत्पादन में भी सहायक होगी
1: जी,
0: और अन्य अन्य असंख्य जो हमारे जीव जंतु हैं उसमें
1: जी
0: उनमें भी वो सहायक होगी
1: जी,
0: क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमारी मृदा अगर जीवित नहीं होगी तो बायोडाइवर्सिटी को भी सुरक्षित रखना बड़ा
1: जी जी जी जी।
0: तो विश्व स्तर पर अगर ग्रीन मैटेरियल का अगर उपयोग किया जाता है
1: जी,
0: तो निश्चित रूप से ये बड़ा लाभकारी काम
1: जी होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भी जिक्र होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड की ये जो योजना है हमारे किसान भाइयों के लिए, ये किस प्रकार से सहायक रहती है?
0: मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड हेल्थ योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना
1: जी,
0: भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है
1: जी।
0: आज वर्तमान में जो किसानों के लिए
1: जी
0: उनकी मृदा का स्टेटस कहें कि क्या हमारी सॉइल है
1: जी,
0: हम अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कितनी है, सीबीसी कितना है, हमारी हाइट कितनी है
1: जी जी जी,
0: है ना, अन्य अन्य प्रकार की हम जांच करा के और हम अपने बॉडी के लिए पता करते हैं। इसी प्रकार से सैम
1: जी
0: कि हमारी सॉइल में किस क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए क्या है, क्या हमारी मृदा की स्थिति क्या है
1: जी,
0: उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है
1: जी,
0: उसकी भौतिक स्थिति कैसी है, रेत है, लॉमी है, सैंडी है, एल्यूवियल है
1: जी,
0: है ना, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसका पीएच कितना है, ईसी कितना है, नाइट्रोजन परसेंट कितना है उसमें, फास्फोरस कितना है, पोटाश कितना है
1: जी,
0: ये सारी स्थिति हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी अति महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: उनको जानने के लिए सरकार ने कि हमें किस क्रॉप के लिए कितना फर्टिलाइजर डालना है
1: जी,
0: कितना फर्टिलाइजर लगेगा, हर क्रॉप के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन फर्टिलाइजर है
1: जी।
0: तो किसान भाई की हमारी सॉइल में कितना है
1: जी जी,
0: एक सिंपल भाषा में कहूँ, हमारी थाली में दो रोटी रखी हुई और उनको भोजन करना है चार रोटी
1: जी,
0: तो हमें कितनी रोटी की आवश्यकता पड़ेगी? दो रोटी की आवश्यकता पड़ेगी, कि दो ऑलरेडी हमारी थाली में रखी हुई,
1: सही बात,
0: जो की हमको और पड़ेगी, हम चार रोटी खाते हैं
1: जी।
0: इसी प्रकार से सॉइल में
1: जी
0: कितने उर्वरक है उसमें मात्रा में
1: जी,
0: और कितने की और आवश्यकता है जो हम क्रॉप फसल को लगा रहे हैं
1: जी जी जी।
0: तो किसान भाइयों को भारत सरकार की जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, फ्री में किसी भी ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक ऑफिस में अपना सॉइल सैंपल दे के
1: जी
0: और वहां से अपना सॉइल का स्टेटस चेक करवा सकते हैं
1: जी जी,
0: फ्री कॉस्ट
1: जी जी।
0: और साल में दो बार
1: जी
0: ये भी है
1: जी,
0: खरीफ से पहले
1: जी
0: और रबी से पहले,
1: ठीक है,
0: साल में दो बार फ्री कस्ट, और अपनी सॉइल के हिसाब से क्या मैं ये फसल लगानी है, हमारी फसल में क्या क्या हमको डालना है, मीटर से पता लगे।
1: अच्छा अच्छा
0: 2014 में ये लागू हुई
1: जी,
0: और उसके बाद से आज तक ये चालू है।
1: सर एक सवाल ये भी है कि शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए शहर मृदा स्वास्थ्य पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को कैसे अपनाया जा सकता है?
0: जो मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है
1: जी,
0: उसका शहरीकरण से क्या प्रभाव है? मैं इतना कुछ समझ पा रहा
1: हूँ। जी जी जी,
0: क्योंकि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है तो उससे हमारा जो कल्टीवेटेड भूमि है
1: जी जी,
0: वो धीरे धीरे कम हो रही है।
1: जी जी,
0: जितनी भी कल्टीवेटेड भूमि है
1: जी,
0: वो हमारी कम होती जा रही है। शहर को हमेशा ये देखना चाहिए कि वहाँ मृदाओं में कचरा ना फैलना, जैविक अपशिष्ट खाद को बनाना
1: जी,
0: है ना, पेड़ लगाना,
1: क्योंकि
0: पेड़ लगाने से हमारी मृदा का कटाव बचता है, और इसी के पेड़ के पौधे पत्ते जब गिरते हैं
1: जी,
0: तो हमारी मृदा के लिए बहुत वो आवश्यक होती है और खाद मिलते हैं
1: जी, जी,
0: और जीवांश पदार्थ मिलता है। वर्षा का जल संरक्षण हमेशा संरक्षण है, वो भी करना चाहिए समय में। आप जहाँ स्टोरेज टैंक है, ड्रेनेज टैंक है, उनमें भी हम संरक्षण करके और सॉइल में वर्षा जल संरक्षण करना चाहिए। मिट्टी को कटाव को रोकने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे प्रयास करना चाहिए कि हमें चेक डैम है
1: जी,
0: है ना, वो बनाना चाहिए। रोड सीमेंटेड रोड है वो कम से कम बनाना चाहिए। उनके आसपास है वो पेड़ खाली रखना चाहिए, कैसे रियाज और जिसमें हम पेड़ लगा सके, पौधे लगा सके, वो करना चाहिए। ये सारी चीजें निश्चित रूप से शहरीकरण में होना चाहिए मिट्टी के लिए
1: जी,
0: और करना चाहिए।
1: सर एक ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, एक अहम सवाल है कि मृदा संरक्षण की अगर हम लोग उपेक्षा करेंगे तो क्या इसके परिणाम हम भुगतेंगे, देखने को मिल सकते हैं?
0: बहुत ही आपने बहुत अच्छा सवाल किया है
1: जी,
0: और निश्चित रूप से किसान भाइयों को और जो लोग सुन रहे हैं
1: जी,
0: अगर हम मृदा को उपेक्षित करते हैं
1: जी,
0: तो मानव जीवन बड़ा संकट में है।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना
1: जी।
0: कैसे? क्योंकि हमारा फूड, जितना भी फूड है
1: जी,
0: चाहे हमारी बायोडाइवर्सिटी हो, जल, जमीन और वायु
1: जी,
0: ये तीन मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है
1: जी, जी।
0: और अगर हमने उसमें से जमीन को हटा दिया, मृदा को हटा दिया
1: जी,
0: तो हमारा जीवन पूरा बायोडाइवर्सिटी विश्व का हो चाहे भारत का हो
1: जी,
0: उसमें संभव नहीं हो
1: जी।
0: तो मृदा हमारे लिए बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट है। अगर हमने इसको अवहेलना की
1: जी,
0: और अगर इसको हमने नहीं देखा, तो निश्चित रूप से हमारी सॉइल को अनफर्टाइल सॉइल होने में समय नहीं लगेगा और हमारा मानव जीवन एक
1: जी।
0: पूरी भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, मृदा स्वास्थ्य हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, बहुत सारी स्कीम्स को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर काम कर रही है हमारी सरकार, प्रोत्साहन कर रही है
1: जी।
0: और बहुत सारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सॉइल पे, लेकिन बहुत चाहे पूरी मैपिंग हो, कौन सी कहाँ किस प्रकार की सॉइल है, क्या क्या आवश्यकता है, कहाँ बहुत सा पॉल्यूशन हो रहा है, इन चीजों को लेकर भी बहुत अवेयरनेस आ रही है। तो निश्चित रूप से हमने अगर अभिनय की तो बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
1: फिर एक आम नागरिक जो होता है वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मिट्टी के संरक्षण के लिए कौन कौन से ऐसे काम है, छोटे छोटे काम है जो वो कर सकता है?
0: बड़ी आसानी सवाल है कि अगर हमने पूरे जीवन में 10, 20, 25 पेड़ लगा दिए
1: जी,
0: तो क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी ऐसा करते थे
1: जी,
0: और आज जो पेड़ लगे हुए हमारे बुजुर्गों के लगे हुए
1: जी,
0: तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है अगर आपने एक वृक्ष लगा दिया
1: जी,
0: और अपने जीवन में अगर 10, 20, 50, 100, 50 वृक्ष लगा के और उसका संरक्षण कर लिया, तो मिट्टी के लिए सबसे बड़ा भोजन
1: जी,
0: जो मिट्टी का है
1: जी, जी,
0: वो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इसी खाद है, यही मिट्टी का भोजन है, यही मिट्टी उनके लिए उर्वरक बनती है
1: जी।
0: तो सबसे बड़ा काम है कि वृक्ष लगा दे हमारी मिट्टी स्वास्थ्य।
1: सर आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल नेटवर्किंग का बड़ा इस्तेमाल है, वो बढ़ता ही, मतलब बिना उसके तो लाइफ आजकल है ही नहीं, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है लोगों को जागरूक करने के लिए?
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया का भी एक बड़ा उपयोग किया जा सकता है
1: जी।
0: अगर आप कुछ अच्छे वीडियोस हैं, कुछ अच्छे क्लिप्स हैं
1: जी,
0: जो लोगों को जानने के लिए बहुत शॉर्ट
1: जी,
0: और यंग जनरेशन को हम इसमें अवेयर कर सकते हैं
1: जी।
0: इसमें हमको रोल ये करना पड़ेगा कि इसके दुष्परिणाम हमको पहले प्रेजेंट करने होते हैं।
1: अच्छा।
0: आज हम मिट्टी को कितने दूषित कर रहे हैं और उससे क्या हानि हो सकती है आने वाली जनरेशन के लिए, और वर्तमान में
1: जी, जी,
0: क्या समस्याएं आ रही
1: जी।
0: जैसे हम कहें, आज एक समस्या बड़ी देखने को मिल रही है मेडिकल साइंस में
1: जी।
0: हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो एंटीबायोटिक के साथ में जिंकोविट
1: जी
0: या मल्टीविटामिन टैबलेट पहले लिखता है
1: जी, जी।
0: जो विटामिन्स की मिनरल्स की जो डिफिशियंसी हमारे शरीर में मानव शरीर में आ रही है वो कहाँ से आ रही है?
1: जी जी जी
0: हमारे मिट्टी से आ रही, क्योंकि मिट्टी में डिफिशियंसी है इसलिए वो जो मिट्टी से ग्रो हो रहा है फूड, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे ग्रेन्स हो, चाहे ऑयल सीड्स हो, पल्सेस हो, सीरियल्स हो
1: जी,
0: क्योंकि सारा विटामिन मिनरल्स हमें इन फ्रूट से ही मिलता है
1: जी।
0: अगर मिट्टी में नहीं होगा तो फूड में भी नहीं आएगा, और फूड में नहीं होगा तो हमारे शरीर में भी नहीं आएगा। सारी चीजें जुड़ी हुई है, तो हमें मिट्टी में ये सारी चीजें रखना आवश्यक है
1: जी।
0: मिट्टी में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फूड भी हमारी साइकिल में होगा और हम फिट रहेंगे।
1: कृषि विज्ञान केंद्र की क्या कुछ भूमिका रहती है इसमें, और क्या कुछ कार्यक्रम भी चलते हैं गाँव में स्टूडेंट्स के लिए जागरूक करने के लिए, और क्या कुछ आप लोग करते हैं?
0: बिल्कुल, कृषि विज्ञान सारे समस्त पूरे भारत में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है
1: जी जी।
0: और समस्त कृषि विज्ञान केंद्र सॉइल हेल्थ को लेके, चाहे वो उनका टेस्टिंग हो, चाहे नरवाई प्रबंधन हो, चाहे माइक्रोब्स की बात हो, चाहे न्यूट्रेंट्स की बात हो
1: जी जी,
0: सॉइल हेल्थ को लेके समय समय पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण है, अवेयरनेस कार्यक्रम है
1: जी,
0: चाहे बायो फर्टिलाइजर्स हो, उस सभी प्रकार के ट्रेनिंग फार्मर्स को अवेयर कराता है गांव में जाकर या ऑन कैंपस कृषि विज्ञान केंद्र में। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र तो 100% जैविक कृषि कर रहा है पूरे नर्मदापुरम में, क्या हम तो पूरे मध्य प्रदेश में ही कह सकते हैं कि ये 100% हमारा पूरा 100% जैविक केंद्र है
1: जी।
0: किसी प्रकार का हम कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करते हैं
1: जी जी।
0: तो निश्चित रूप से हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, समस्त कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी सालों साल टिकाऊ रहे और उपजाऊ रहे और हमें समस्त पूरे रास्ते का फूड देती रहे।
1: सर, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी आप लोग मतलब वहां पर भी होता है या गांव वगैरह में या शहरों में भी? क्या
0: बिल्कुल, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ होते हैं वो हम गांव में भी देते हैं और हमारे कैंपस में भी देते हैं, बट लेकिन हमारी सीमाएं हैं
1: जी।
0: हम नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट जिले में समस्त गाँव में
1: जी,
0: और हमारे यहाँ अपने केंद्र पर भी देते हैं
1: जी।
0: और 5 दिसंबर को भी हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण इस विषय पर हो रहा है, एक सेमिनार कर रहे हैं किसानों को, और जो किसान को सुन रहे हैं वो हमारे केंद्र पर आ सकते हैं उसके विषय में पूर्व चर्चा करके और किसानों को इसको इसके बारे में भी अवगत करें।
1: सर, अब हम इंटरव्यू को समाप्त करें, आखिर में मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि एक स्थायी मृदा प्रबंधन के लिए आप क्या क्या लोगों से कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, किन बातों का वो ख्याल रखें ताकि जो हमारा आज है, जो भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कोई परेशानी ना हो और वो खुलकर अपना जीवन जी सकें।
0: देखिए, पहले ही मैंने कहा कि धरती हमारी माता है
1: जी।
0: और अगर वसुधैव कुटुंबकम रखना है
1: जी,
0: तो हमें मृदा स्वास्थ्य को बहुत रखना बहुत जरूरी है
1: जी जी।
0: और इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा
1: जी
0: कि अंधाधुन दौड़ में
1: जी
0: हम कहीं ना कहीं धरती माता को ना पीछे छोड़
1: जी।
0: जिस प्रकार से हम फर्टिलाइजर, अनबैलेंस फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम पेस्टिसाइड्स हैं, जहर हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं
1: जी,
0: जिस प्रकार से हम नरवाई जला रहे हैं
1: जी,
0: तो ये सारी चीजें करना ठीक नहीं है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हम अपनी धरती माता को बचाकर रखें
1: जी,
0: और इसको टिकाऊ रखें, जिससे हमारा जीवन और ये धरती हमेशा चलती रहे
1: जी।
0: फसल चक्र अपनाएं, नरवाई प्रबंधन करें, हरी खाद का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद का उपयोग करें, इन सभी चीजों को करेंगे तो निश्चित रूप से किसान का देश, पूरा विश्व खुशहाल रहेगा।
1: हम कोई दिवस आता है तो उस दिन कर लेते हैं सारी चीज, लेकिन रोज इंसान अपनी प्रैक्टिस में इन चीजों को लाए और सब लोग लाएं, बच्चे भी लाएं, बुजुर्ग भी लाएं, बड़े भी लाएं, सब लोग लाएं, शहरों में, गाँव में, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है।
0: देखिए, निश्चित रूप से सही कहा कि हर व्यक्ति को इसमें प्रयास करना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि इसमें एक ही किसान का ही नहीं, चाहे शहर हो, चाहे मानव जीवन का हर व्यक्ति, चाहे भले ही वो खेतिहर मजदूर ना हो
1: जी,
0: और मतलब खेती वाला करने वाला किसान ही ना हो
1: जी,
0: उसका भी बड़ा अहम रोल है
1: जी,
0: क्योंकि फूड तो कहीं ना कहीं वो जमीन से ही खा रहा है, जमीन से आ रहा है, लेकिन बट हमें पॉलिथिन्स है या हमें अन्य चीजें हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं, तो उन चीजों का भी बिल्कुल ध्यान, हर व्यक्ति का इसमें रोल है
1: जी।
0: अगर वो ये कहे कि मेरे एक पेड़ लगाने से क्या होगा
1: जी,
0: ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी सीट्स वॉल है ले जाके जंगल में ही डाल देंगे या हम पेड़ के किनारे डाल दें।
1: जी जी,
0: धीरे धीरे करके हमारा एक चीटी जैसा भी योगदान
1: जी
0: एक बड़ा योगदान बन जाता है।
1: जी जी,
0: लोग सोचते हैं कि यार हमारे एक पेड़ लगाने से क्या होगा।
1: जी,
0: लेकिन हमारे एक पेड़ से अगर हम सारे लोग एक एक पेड़ लगा दें तो आज 150 करोड़ हमारे पूरे भारत में लग सकते।
1: सही बात है,
0: तो सभी का एक चीटी का भी योगदान होता है तो निश्चित रूप से वो बड़ा योगदान हो जाता है और हम सभी का योगदान उसमें करना चाहिए, चाहे पॉलिथिन से मृदा स्वास्थ्य की मृदा संरक्षण के लिए हम सबको धीरे धीरे प्रयास करके और उसको हमको समझ की ओर ले जाना चाहिए।
1: सर, इतने अच्छी बात पर हम इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। सर, आपने रेडियो आजाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम तक के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान

0: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम योग संवाद।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, आज के योग संवाद में हम प्रवेश कर रहे हैं उस विचार भूमि में जहां मनुष्य के जीवन का मार्ग अदृश्य भाग्य की रेखाओं से नहीं बल्कि उसके संकल्प, साधना और पुरुषार्थ से आकार देता है। योग वासिष्ठ हमें याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य के भीतर उन्हें बदलने की शक्ति विद्यमान है। दैव के भरोसे बैठ जाना चेतना को जड़ करता है, जबकि पुरुषार्थ जीवन में गति, दिशा और संभावना भरता है। तो आज का संवाद इसी प्रश्न के साथ कि क्या भाग्य मनुष्य को चलाता है या मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य रचता है? क्या दैव के आगे हाथ जोड़ देना ही नियति है या अपने कर्मों की लौ से अंधकार को हटाना ही मनुष्य की पहचान है? आइए योग वासिष्ठ के आलोक में समझें पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद के निराकरण को। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका।
2: जी नमस्कार।
1: पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद का निराकरण आज इस अंक में होने जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें आप बताएं कि दैववाद से तात्पर्य क्या है।
2: दैववाद को महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि श्री राम पूर्व जन्म के पौरुष से ही दैव का जन्म होता है, यानी पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ही दैव है, ऐसा व्यक्ति को मानना चाहिए। और सामान्यतया लोग समझते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ को भोग रहे हैं, सामान्यतया लोग समझते हैं कि हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। प्रारब्ध वास्तव में देखें तो पूर्व का कर्म है, यानी प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध भोग नहीं है।
1: जी, जी, जी।
2: तो ऐसे में बार बार वशिष्ठ जी राम जी को इस चीज के प्रति सचेत कर रहे हैं कि कर्म के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, कर्म ही फल का निर्माण करता है। और जो व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि जो फल है वो देव दैव भरोसे मिल रहा है, ये बहुत बड़ी मूर्ता है, ऐसा है नहीं, वो पूर्व के कर्म का ही परिणाम है ये फल।
1: तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व जन्म के कर्म का जो परिणाम है वही प्रारब्ध है और इसको इस जन्म के कर्म से बदला भी जा सकता है।
2: जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो कर्म हैं, खासकर प्रारब्ध कर्म और इस समय का जो क्रियमाण कर्म है, ये दोनों कर्म आपस में संघर्ष करते हैं। और अगर आप अपने वर्तमान के कर्म से, वर्तमान के प्रयत्न से पूर्व के कर्म को आप बदल सकते हैं, उसको क्षीण कर सकते हैं, और अगर वर्तमान में आप कर्महीन हो जाएंगे तो पूर्व का कर्म प्रभावित करेगा आपको। तो इस तरीके से आपके पास जो विकल्प है वो है पुरुषार्थ करने का, पुरुषार्थ से च्युत होने का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ।
1: जी, जी जी जी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुरुषार्थ हर स्थिति में आवश्यक है। अच्छा, जीवात्मा का संसार से उद्धार कैसे हो ये बताएं आप।
2: इसमें बड़ा सुंदर कहा है वशिष्ठ जी ने, कहा है कि हे राम, जो अपने को दैव के अधीन समझते हैं और सोचते हैं कि मैं कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ, हुई है सोई जो राम रच राखा, का कोई तर्क बढ़ाओ नहीं साखा। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ऐसी विचारधारा ठीक नहीं है। इस विचारधारा को सत्संग तथा सतशास्त्र के अभ्यास के द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा इस संसार से बलपूर्वक उद्धार करें अपना, ऐसा करें कि आपको इसके लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में ऐसी अगर घटनाएं घट रही हैं जो आपको लगता है कि ये आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में आपको इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप और सजगता के साथ और जागरूकता के साथ अपने कर्म के प्रति सचेत हों और कर्म करने के प्रति तत्पर हों। क्योंकि आपने सुना होगा कई बार लोक साहित्य में संतों ने कहा है कि बोया पे बबूल का आम कहां से खाए, तो अब ऐसे में जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फल लग जाता है जो आपके कर्म से अलग हो, तो कर्म और फल का इतना गहरा संबंध है। और ऐसे लोग जो कर्म फल के बारे में सोचते हैं वो निश्चित ही बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि कर्म फल का निर्माण कर्म करता है। तो ऐसे में हमारा ध्यान कर्म पर होना चाहिए, ना कि कर्म फल पर। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। जबकि संसार का आदमी क्या करता है, वो हमेशा फल पर अपने को केंद्रित करता है। और देखिए फल पर केंद्रित होने से आप एक बात अपने कर्म में चूकते तो हैं ही, साथ ही साथ आपके जीवन में भय, आपके जीवन में संशय, आत्मविश्वास की कमी, तमाम सारे ऐसे और विकृतियों के जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है जब आप कर्म फल के बारे में सोचते हैं। जबकि कर्म के बारे में आप सोचें तो निश्चित ही आपके बहुत सारे संशय दूर होंगे। इसीलिए कहा भी जाता है, एक वर्ड आता है प्रोकास्टिनेशन, जहां पर हम जब भी कोई काम करने चलते हैं तो सोचते हैं कि इसका क्या होगा, या ऐसा मैंने किया था तो उसका परिणाम नहीं आया। तो इस तरीके से सोचने में ये मन की चालाकी है। ये कह सकते हैं कि आपका मन आपको धोखा दे रहा है। जबकि महर्षि वशिष्ठ जी इसी चीज को दूर करने के लिए राम से कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ कर्म करना है और जो भी भोग है वो कर्म का ही है। इसलिए प्रारब्ध जो है वो जो दैव शब्द है वो पूर्व का कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म है, या पूर्व का कर्म कह लें कि पहले के कर्म का परिणाम आज आप भोग रहे हैं।
3: जी जी,
2: जो भी परिणाम बनता है वो कर्म से ही तो बनेगा।
3: बिल्कुल जी। तो आपने दैव को बताया और बार बार पौरुष का जिक्र इसमें हो रहा है, तो आप बताएं कि वशिष्ठ जी पौरुष किसे कहते हैं?
2: वशिष्ठ जी पौरुष कहते हैं आप जो दैव की संज्ञा दे रहे हैं उस संज्ञा को छोड़कर उसको अपने पूर्व का प्रयत्न अगर माने आप तो उसको वो पौरुष कहते हैं। कि पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई दैव की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन वो पूर्व जन्म का पौरुष है, वो दैव नहीं है। आप संज्ञा दे रहे हैं दीजिए, लेकिन उस संज्ञा से अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अर्थ जो है जब भी दैव की बात आएगी तो वो पूर्व का पौरुष है, न कि वो कोई और पौरुष के अतिरिक्त कुछ है। तो वो बार बार उस पौरुष की तरफ उनका ध्यान खींच रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे राम जी ने जो जगत को देखा, जगत में जो दृश्य को देखा तीर्थाटन के दौरान, तो उनको ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग कर्म तो कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन प्रयत्न के बाद भी जो उनको भोग में मिल रहा है वो दुख मिल रहा है, दुख से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने प्रयत्न से अपने को विरत करने का प्रयास किया और उसी प्रयास में जो है इस ग्रंथ के द्वारा उन्हें उपदेश दिया जा रहा है।
3: जी जी।
2: तो ऐसे में प्रयत्न से व्यक्ति कभी भी ना चूके, यानी प्रयत्न करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मान करके वो अपने जीवन की यात्रा करे, इस बात पर बार बार ध्यान दिलाया गया है। इसीलिए योग को कर्मयोग भी कहा गया है कि योग कर्म योग है, कर्म से विरत होने का योग नहीं है।
3: योग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये समझाया। अच्छा बताएं कि ये ग्रंथ क्या कहता है कि इस जगत में कौन दीन और दुखी है?
2: दीन और दुखी वो लोग हैं जो विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत कर्म पौरुष या दैव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते।
3: अच्छा,
2: वो लोग दीन हैं, प्रयत्न नहीं करते तथा सदा दैव के भरोसे बैठे रहते हैं। वे दीन, पामर और मूढ़ हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्मकल्याण कभी भी सिद्ध नहीं होगा,
3: संभव नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हो गया
2: जी, कि जो लोग पूर्व के भरोसे बैठे हैं वो कतई वही दीन हैं।
3: हाँ।
2: जो आज कर्म कर रहे हैं या वर्तमान में पूर्व के परिणाम को बदलने के लिए प्रयत्नशील है,
3: प्रयत्नशील है,
2: वो लोग दीन नहीं है।
3: हाँ।
2: और जो ये मान के बैठे हैं कि यही लिखा था भाग्य में,
3: ये हो रहा है, यही होना था,
2: तो वो दीन है, पामर है, मूढ़ है।
3: जी, जी जी,
2: क्योंकि पुरुषार्थ से ही आप अपने आत्म कल्याण को सिद्ध कर सकते हैं।
3: तो आपने पुरुषार्थ की बात की है, तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि पुरुषार्थ के भी प्रकार है, अगर है तो कितने हैं?
2: आपने सुंदर कहा कि पुरुषार्थ दो प्रकार का यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक पूर्व जन्म के जो कर्म है उनके द्वारा पुरुषार्थ, और एक जो वर्तमान में आप प्रयत्न कर रहे हैं ये इस समय का पुरुषार्थ वर्तमान में,
3: जी, जी,
2: ये
3: जी,
2: दोनों आपके प्रयत्न की बात है। तो कहते हैं ये दोनों आपस में भेड़ों की तरह लड़ते हैं और उनमें जो भी बलवान होता है वह दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है, पीछे छोड़ देता है। तो दो तरह के पुरुषार्थ की संकल्पना वशिष्ठ जी ने दी राम जी को, कि जो एक प्रारब्ध है वो पुरुषार्थ जो आपने पहले किया है और जो वर्तमान में आप कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में संघर्षरत हैं। अगर आप चाहें कि वर्तमान के प्रयत्न से पूर्व के पुरुषार्थ को बदलना, तो ये संभव है। हाँ, ये असंभव नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को इस संसार में, खासकर इस ग्रंथ के उपदेश को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए कि हमें कभी भी पुरुषार्थ से च्युत नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई विचार जो हमें पुरुषार्थ करने में बाधा बाधा उत्पन्न करे,
3: विमुख करे।
2: हाँ, उन विचारों से हमें अपने को मुक्त रखना चाहिए, नहीं तो वो हमें दीनता की श्रेणी में लाके खड़ा कर देंगे। दीन वह है जो अपने पर भरोसा नहीं करता, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं करता और किसी और भरोसे अपने आप को बिठा दे, कर्म छोड़ दे, ऐसे लोग दीन है।
3: अच्छा, कर्म और भाग्य की लड़ाई तो बहुत इस पर चर्चा होती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस ग्रंथ में क्या बताया गया है कि प्रारब्ध और प्रयत्न में बलवान कौन है।
2: प्रारब्ध और प्रयत्न में हमेशा प्रयत्न बलवान है। ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्वकृत कर्मों के फल स्वरूप प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ, इन दोनों में वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षता बलवान है। इसलिए जो ज्ञानी है, अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर हमेशा सतशास्त्रों का अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। तो संसार सागर से उद्धार करने का जो साधन है वह है सतशास्त्रों का अभ्यास, पहला काम, क्योंकि सतशास्त्रों में आपको इस तरह की देशना मिलेगी जिसके द्वारा आप अपनी दीनता को दूर करें, भटकाव से अपने आप को बचाएं और ऐसी किसी भी भ्रामक मन स्थिति को अपने पर हावी न होने दें जिसकी वजह से आपका वर्तमान जो प्रयत्न है वो किसी प्रकार से बाधित हो। और दूसरा सत्संग द्वारा, अब सत्संग द्वारा बुद्धि, यहाँ पर सत्संग की महिमा बहुत बार बताई गई है क्योंकि सत्संग के द्वारा ही आप अपने बुद्धि को निर्मल कर सकते हैं। बुद्धि जो तमाम असत चीजों का संग कर ली है उससे मिटाने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता है और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते ही हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के विवेक का दीप नहीं जलता, जिस विवेक के प्रकाश में आप नीर छीर जो विवेकी दृष्टिकोण कहते हैं, जिसको हंस से कबीरदास जी हंस कहते हैं कि ये दृष्टि आप में सद असद विवेक यानी सत्य और असत को जानने का जो विवेक है वो सतशास्त्र के अभ्यास और सत्संग से बुद्धि को निर्मल करने के बाद ही आप उसके योग्य बनते हैं और उसको धारण कर पाएंगे।
3: अच्छा, अर्थ और कामना की जो सिद्धि है वो किस तरह से होती है?
2: हाँ, ये सुंदर आपने प्रश्न किया। ये कहते हैं वशिष्ठ जी कि राम, इस संसार में जो लोग अर्थ और कामना के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको इस बात को भली भांति जानना चाहिए कि पूर्व कृत कर्म यानी पूर्व का जो पुरुषार्थ है वो अर्थ और काम को सिद्ध करने में वो सहयोगी है।
3: अच्छा।
2: लेकिन जो आपका प्रयत्न है वो धर्माचरण करने में और मुक्ति को दिलाने में आपका वर्तमान प्रयत्न जो है आपको साधक बनाएगा, सिद्ध करेगा वो।
3: अच्छा।
2: तो पूर्वकृत कर्म से आप अपने जीवन में अर्थ और काम की सिद्धि कर सकते हैं, उसमें उसका सहयोग है,
3: होती है।
2: हाँ, होती है,
3: अपने आप होती है।
2: अपने आप तो ना कहिए लेकिन उसमें उसका एक बल होता है वो आपको उस तरह से, इसीलिए आप संसार में देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी कामना की पूर्ति और अर्थ को सिद्ध करने में लगातार प्रयत्न करते हैं लेकिन प्रयत्न के बाद भी वो विफल होते हैं। तो इस विफलता से कई बार निराशा भी आती है
3: जी।
2: तो ये निराशा जीवन में ना आए तो इसके रहस्य को बताने के लिए उन्होंने ये कहा कि पूर्वकृत कर्म या प्रारब्ध कर्म जो है वो आपके अर्थ और काम की सिद्धि में सहयोग करेगा और जो प्रयत्न आपका है वो प्रयत्न आपके धर्म और मोक्ष की सिद्धि करेगा।
3: लेकिन अब एक मेरे मन में ये प्रश्न है कि अर्थ और कामना की सिद्धि अगर पूर्व जन्म के कर्म से या पूर्व के कर्म से प्रारब्ध से है तो इसे परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं?
2: बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जब आप प्रयत्न पूर्वक धर्म करेंगे तो धर्म से अर्थ आएगा
3: जी।
2: तो अर्थ जब आएगा, धर्म से आने वाला अर्थ कामनाओं को सिद्ध करता है, अधर्म से प्राप्त जो धन है उस धर्म से, उस धन से कभी भी कामनाएं सिद्ध नहीं होती। इसीलिए आप देखिएगा कि जो वर्तमान का जो प्रयत्न है वो आपको धर्म का मतलब यहाँ कतई बहुत सीमित अर्थ में न लिया जाए, धर्म का मतलब अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना भी धर्म है। जैसे आप उदाहरण देखिए, मैं सहज बच्चों के लिए उदाहरण दूंगा कि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ साधनों का अभाव है, माता पिता के पास संसाधन नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात का अगर वो विचार पूर्वक विवेक से विचार करते हैं और सोचते हैं कि हम अपने घर की स्थिति या अपने माता पिता की स्थिति को कैसे बदल सकते हैं, तो वो अपने को अपने कर्तव्य कर्म में अगर तल्लीन करते हैं, अपने धर्म का सही आचरण करते हैं तो देखते हैं कि वो सारी बाधाओं के पार निकल के वो अचीव करते हैं जो बहुत अच्छे घरों के बच्चे नहीं कर पाते। तो क्या है, उन्होंने अपने प्रयत्न से धर्म को साधा। तो फिर ये जो अर्थ और काम कि सिद्धि तो अपने आप हो गई। तो ऐसे में आप देखें, एक किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि आप अगर किसी गरीब के घर में पैदा हुए हैं ये आपका भाग्य हो सकता है, लेकिन आप गरीब अगर मर रहे हैं तो ये आपके भाग्य का विषय नहीं है। इसका मतलब कि आपने कर्म का विषय, आपने प्रयत्न नहीं किया। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो अंततः ये भी यही बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आपको अपने प्रयत्न से अपने धर्म का आचरण करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने वर्तमान की परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे।
3: मुक्त हो जाएंगे।
2: ये ठीक है कि वर्तमान परिस्थितियां चाहे अनुप्रतिकूल हो अनुकूल हो अलग बात है, लेकिन उनको बनाए रखने में वर्तमान का प्रयत्न ही आपको सहायक होगा। आप प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाएं तो आप उन्हें सिद्ध नहीं कर सकते।
3: तो ये बहुत आशा देने वाली बात है।
2: जी बिल्कुल जी।
3: अच्छा, मोह के बंधन से मुक्ति किसे मिलती है, क्या कहता है ये ग्रंथ?
2: जी, मोह के बंधन से मुक्ति के लिए ये ग्रंथ कहता है कि जो जगत के मोह के फंदे में लोग फंसे हुए हैं, ऐसे पुरुष सदाचार के द्वारा अपने कर्म को करकर इस संसार के मोह रूपी बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं जैसे पिंजरे से सिंह निकल जाता है। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म के लिए प्रयत्न करने में कुशल हैं, सदाचार ही जिसका लीला विहार है, वह इस जगत के मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजरे से निकल जाता है। तो ऐसा कह रहे हैं वो। तो इसका मतलब कि सदाचार और सत्कर्म यानी सत प्रयत्न, यही दो ऐसे संसाधन हैं कि जिनके द्वारा आप जगत रूपी बंधन को काटकर अपने को मुक्त कर सकते हैं।
3: जी जी जी। तो ये तो आपने मुक्ति की बात की, अब मैं मनुष्य के स्वार्थ की बात करना चाहती हूँ।
2: जी,
3: स्वार्थ चारों तरफ दिखाई देता है संसार में। हर इंसान का कहना है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। तो संसार में मनुष्य के स्वार्थ का जो कारण है वो क्या है?
2: मनुष्य के स्वार्थ का जो कारण है वो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही मनुष्य का स्वार्थ है। आप देखें तो किसी भी कर्म के पीछे, किसी भी विचार के पीछे आप जो मूल तत्व पाएंगे जिसकी वजह से वो विचार या वो कर्म करने की प्रेरणा मिल रही है, वो यही है कि आपको सुख मिले और या फिर आपके दुख से आपकी निवृत्ति मिले। तो मूल स्वार्थ यही है और यही मनुष्य का स्वार्थ है। उस स्वार्थ की प्राप्ति कराने वाले जो आवश्यक कर्तव्य साधन है, एकमात्र उसी में तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। यानी दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कराने में जो साधन है, उन्हीं साधनों में जो लोग तत्पर हैं वही अपने पौरुष का उपयोग कर रहे हैं, वही अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर पाएंगे। लेकिन जो उन साधनों से हट करके कहीं और अपनी ऊर्जा या अपना समय बिता रहे हैं या अपना प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनके हाथ तो विफलता ही लगेगी। तो इसलिए जो पौरुष शब्द है वो पौरुष शब्द इसीलिए है कि आप अपने स्वार्थ, स्वार्थ मतलब सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, इसको सिद्ध करने में लगातार साधन करें।
3: जी, जी,
2: न कि साधन से अपने आप को विरत करें।
3: विरत करें। अच्छा, इसमें मुझे परमार्थ की सिद्धि की बात भी नजर आई थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि परमार्थ की जो सिद्धि है वो कैसे होती है।
2: जी, परमार्थ के लिए उन्होंने कहा है कि परमार्थ है अपने परम तत्व को जानना, अपने जो मतलब जो आपका मूल स्वरूप है जिसको आप ब्रह्म स्वरूप कह लें, उसकी अभिप्राप्ति कैसे हो, वो है परमार्थ, परम अर्थ जिसका। इस स्वार्थ में तो ये आ गया कि आप अपने सुख की कामना को सिद्ध करें और दुख से मुक्त हों, लेकिन परम जो है जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, जो वर्ड आता है कि आप अपना आत्म साक्षात्कार करें, तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए आप वही हैं जिसमें ये सारा जगत है और जिसकी वजह से सारे जगत में चेतना है। तो उसको जब आप प्राप्त करते हैं या उसको सिद्ध करते हैं, तब जाके आप अपने परमार्थ को सिद्ध कर पाते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा अपना आत्म कल्याण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, तब जाकर के परमार्थ की सिद्धि होगी। आत्म कल्याण के लिए जब आप प्रयत्न करेंगे तो परमार्थ की सिद्धि होगी।
3: अच्छा, ये बताएं कि इस ग्रंथ में जन्म मरण रूपी भवरोग को शांत करने का उपाय भी बताया गया है, तो वो थोड़ा सा उसकी आप व्याख्या कर दें ताकि हमारे सुनने वालों के लिए बात आसान हो जाए।
2: जी, इसमें उन्होंने कहा है कि अधिकारी जो लोग हैं वह नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ मधुर और उत्कृष्ट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भवरोग को शांत करें। ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी जनों की सेवा करें, और ऐसे नित्य संतुष्ट लोग जो मैंने हमेशा संतुष्ट हों। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारा ज्ञान है, वो ज्ञान आपके संतोष में कितना सहयोगी है, और अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपका ज्ञान कभी भी कह सकते हैं कि वो सत्य ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि संतोष से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो परम सुख है
3: जी।
2: और यहाँ पर संसार में जो देखते हैं हम लोग कि संतोष को हम लोग मानते हैं कि संतोष एक प्रकार का कह सकते हैं कि अपने कर्म से पलायन करने की एक विधा है कि जो है मिल गया है वो उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्ट संतोष का मतलब चित्त की शांति। जब चित्त शांत होगा तो उस चित्त के द्वारा जो विचार होगा वो सद्विचार होगा, सदकर्म होगा, स्वाध्याय होगा, शास्त्रों का मतलब सही चुनाव होगा। अशांत चित्त में सही विचार नहीं आते, तो तब जाकर के सुख का अनुभव होता है। तो ऐसे में यही वो औषधि है जिससे आप जन्म मरण रूप जो भवरोग है, इस भवरोग में अच्छा जन्म मरण को हम लोग सोचते हैं कि शरीर का जन्म हुआ और शरीर मर गया, ऐसा नहीं है। आप देखिए कामनाओं का भी जन्म होता है, कामनाएं भी मरती हैं। तो ऐसे में जन्म मरण का मतलब ये हुआ कि आप ऐसी किसी विचार के साथ जो विचार ने जन्म लिया और उसकी वजह से आपको दुख हो रहा है या सुख हो रहा है तो उसका बदलाव होगा। तो इस परम सत्य को जानते हुए आप इस संसार में अगर व्यवहार करें तो आप हर पल संतुष्ट रह सकते हैं और एक जीवन में शांति बनी रहेगी और परम पुरुषार्थ जो है वो सिद्ध होगा।
3: अच्छा, मैं चाहती हूँ कि चूंकि समय समापन की ओर है तो मैं चाहती हूँ कि जो भी चर्चा हमने आज की है उसे एक संक्षेप में आप हमारे सुनने वालों के लिए उनके लिए रखें और एक संदेश अपनी तरफ से। आप
2: मैं इस संदेश में यही दूंगा उन्हें कि आप हमेशा सतशास्त्रों का स्वाध्याय करें, सत्संग करें
3: जी।
2: क्योंकि मन को निर्मल करने का ये अमोघ अस्त्र है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका मन जिन मलिनता की वजह से दूषित हुआ है या फिर कहते हैं विषाद से ग्रस्त हुआ है, दुखी हुआ है या तमाम तरह के आपके मन में ऐसे उथल पुथल चल रहे हैं जिससे आप अपने प्रयत्न में बाधा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा अगर लगातार आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही आप मन को निर्मल कर पाएंगे और जो निर्मल मन का होगा वो निश्चित ही उसके चित्त में भगवान या वो परम तत्व जिसको हम कहते हैं परम पुरुषार्थ से जिसकी सिद्धि होती है उसका आत्म कल्याण होगा। तो हमें लगातार सतशास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग करना चाहिए, यही मैं अपने श्रोताओं से अपेक्षा रखूंगा।
3: जी जी, और पुरुषार्थ और दैववाद को भी संक्षेप में आप एक बार और मतलब एक अपील की तरह कहने मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये बात बहुत रहती है लोगों के मन में, बहुत होती है और जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं तो कई बार की लगातार की परेशानियों को देखने के बाद मनुष्य इस तरह से सोचने लगता है कि यही हमारा जीवन है, यही हमारा भाग्य है, ऐसा ही लिखा है। तो एक उत्साहवर्धन की तरह
2: मैं इसे ही कहूंगा कि देखिए ये भी एक मन का आपको शांत करने का या कह सकते हैं बेचैनी से दूर करने का एक आधार है कि चलो आप उससे अपने आप को व्यथित होने से रोक लें
3: या कहें कि उस परिस्थिति को सहने का
2: आधार है। ये कह सकते हैं बिल्कुल माइंड मैकेनिज्म है कि जब आप किसी भी चीज को जब अपने वश में नहीं कर पाते तो ऐसा है कि ना आप उस परिणाम से टूटे नहीं बल्कि आप अपने आप को संभाल कर आगे फिर अच्छे प्रयत्न के लिए अपने को बनाए रखें तो ये भी कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने दैववाद के निराकरण की बात की उन्होंने कहा कि ये भी जो आपके जीवन में अनचाहा परिणाम आ रहा है ये परिणाम आपके पूर्व के कर्म का परिणाम है, यानी पूर्व में आपने ऐसा कर्म किया है तो उस घटना को याद करके आप वर्तमान में ऐसे कर्म से अपने आप को बचाएं कि फिर ऐसे किसी परिणाम की प्राप्ति आपको न हो जो आपके मन में क्षोभ उत्पन्न करे। सुकरात एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं जो बड़े क्रूप थे लेकिन वो दर्पण देखते थे बार बार, तो दर्पण देखते थे तो लोग सोचते थे कि आप बार बार अपना चेहरा देखते होंगे तो ये कुरूपता दिखती होगी तो फिर आपको तो क्षोभ होता होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बार बार कष्ट क्यों पहुंचाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने को कष्ट नहीं पहुंचाता, मैं बार बार अपने चेहरे को इसलिए देखता हूं कि मेरा चेहरा तो लोगों के आकर्षण के योग्य नहीं है, तो ऐसे में मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जो लोगों को हमसे दूर ले जाए। हमें सजग बनाए रखे।
3: क्या बात है।
2: और जो लोग सुंदर हैं उनको तो मैं कहूंगा कि वो और अपने चेहरे को देखें क्योंकि वो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए ऐसे कर्म करें ताकि कहीं उनकी सुंदरता लोग भूल करके उनको कर्मों से उनको याद न करने लगे, तो उन्हें अपने सौंदर्य के अनुसार अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो यही बात वशिष्ठ जी ने भी कही है कि आपके हाथ में आपका प्रयत्न है, जो वर्तमान का क्रियमाण कर्म है, इस कर्म से आप पूर्व के भोग को भी बदलने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर वर्तमान में आपने कर्म से अपने को अलग किया, विरत किया, तो पूर्व का जो भोग है वो तो है ही, आपने और भविष्य के लिए ऐसे भोगों का निर्माण कर लिया जो आपको विषाद में ले जाएंगे, दुख में ले जाएंगे। तो इसलिए वर्तमान में सजगता हमेशा कर्मों के प्रति होनी चाहिए। कहा भी जाता है कि जब आप जो बीज बो रहे हैं, यानी जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के प्रति जागरूक अगर हों तो परिणाम निश्चित ही वही होगा जो आप चाहते हैं।
3: बिल्कुल,
2: अनचाहा कर्म करके मनचाहा परिणाम नहीं पाया जा सकता।
3: क्या बात है। बिल्कुल, तो बहुत ही सुंदर बात कि अनचाहा कर्म करके मनचाहा परिणाम नहीं मिल सकता है, तो बहुत सतर्क होने की जरूरत है। तो शशिकांत जी, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, बहुत रोचक रही, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
3: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद के निराकरण पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही मार्च शैली में। ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग है।
1: हाँ बेटा कैसे?
2: अरे आपने, क्योंकि आपके गुरु सुंदरलाल जी है।
1: हाँ।
2: मधुसूदन ने मार्च लिखे के बसंती रंग जमाए।
1: बसंती रंग जमाए।
2: अच्छा अब हमारे आप ये बताओ, क्या आपका मन में यो क्रांति को विचार आयो कहां से?
1: अरे बेटा, या तो घनी बड़ी बात पूछ ली तेना हमारा से। जदे मैं छोटो थो, तुम्हारा एक काका जी देश छोड़ी के चली गया, ने भी वहां से क्रांतिकारी गतिविधि चलाई गया। और हमारा एक काका जी के अंग्रेज सरकार पकड़ी के ले गई।
2: अच्छा।
1: जद से ही मारो अंग्रेज सरकार का खिलाफ हुई।
2: फिर कहीं हो
1: बेटा, जदे मैं छोटो थो तो पिताजी के साथ खेत पे भी जातो थो।
2: अच्छा।
1: तो सुन मैंने कहीं कर, मैं बोलो पिताजी।
2: हाँ?
1: यो जो तुम धान उगा हो खेत का माए।
2: अच्छा।
1: तो मैं भी बंदूक उगाऊंगा खेत का
2: माए। वाह, पिताजी कहीं बोलिया?
1: अरे बेटा, पिताजी बोलिया कि बेटा हमारा खेत में तो धान उगे है जिससे ही सबको पेट भरी हो जाए।
2: सही बात है। फिर आपने कही क्यों?
1: मैं बोलो पिताजी, बंदूक भी ढेर उगेगी जो दुश्मन के मार भगा।
2: वाह, फिर आगे कही?
1: अरे बेटा, फिर हमारा पिताजी बोला कि जा भगत घरे जा। मैं बोलो पिताजी, बालक हूं पर समझू पीर पराई रे, अंग्रेजों का घाव की नहीं भर पाई रे।
2: सही बात।
1: बेटा विद्रोह, पिताजी घरे आई।
2: अच्छा।
1: पिताजी का पाछे घूम दो, मैं भी घरे। मैं बोलो पिताजी, महाराज से इन कातियों को दुख नहीं देखो जाए, इन कातियों को दुख को कारण अंग्रेज सरकार है।
2: फिर
1: पिताजी बोलिया, बेटा महाराज तो अभी नानो है, इतरो समझे योज बोते।
2: या बात तो मैं कहूं हूं कि भारत का बच्चा बच्चा होने के सीखनी चाहिए।
1: एकदम सही बात है बेटा।
2: है, सही बात।
1: देख बेटा, मैंने गदर से जुड़िया सगला नेता उनका बारे में सुनियो है।
2: अच्छा।
1: जैसे गांधी जी।
2: हाँ।
1: करतार सिंह सरावा।
2: अच्छा।
1: लाला लाजपत राय और हमारा चाचा अजीत सिंह जी और भी कई सर। अरे जदे में थोड़ा बड़ो हुई तो पिताजी मारे बता रहा था कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने घणो अत्याचार करियो।
2: ये सो तो कई अत्याचार करो करियो, जरा हमारे भी सुनाओ।
1: सुन मारी बात।
2: सुनो।

0: इन्हीं घटना का बाद गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करी थी। पर भारे तो पाठशाला जानो छो नी, मैं भाजी के जलियांवाला बाग गई हूँ और देखियो कि अंग्रेज पुलिस को घड़ो पहनो है। पर मैडम मैं अंग्रेजी पुलिस से बच तो बचा तो शुभ तो हूँ वो जलियांवाला बाग मुझे। शहीदों की खून से सनी मिट्टी सीसी में भरी के बैठा धरती माँ के प्रणाम करी के ने घरे पहुंची। तुम्हारी माँ ने बेन दो ही परेशान हो रही थी, पर तुम्हारी माँ तो कहीं नहीं बोली, हमारी बेन बोली पड़ी।
1: अच्छा,
0: माँ माँ भगत आई जो माँ बोली क्यों रे तू पाठशाला तो नहीं गयो तो फिर कहाँ गयो तू। मैं बोलियो हमारी माँ हमारी बहन देख ही नहीं सीसी के, मैं शहीदों की मिट्टी लेवाने जलियांवाला बाग गयो तो मैं एक की पूजा करूं।
1: तो जल ऐसो अत्याचार करियो जनरल डायर ने।
0: आओ मित्र आओ तुम्हारे ही बताऊं कि जलियांवाला बाग अत्याचार का बाद आंदोलनकारियों ने चोरा चोरी नाम की जगह पे कहीं करियो
1: कहीं करियो। हाँ बताओ।

0: साथियों, इन्हीं घटना का बाद हमारा मन में घनी उथल पुथल मची। हमारे भी करतार सिंह सराबा का रास्ता पर चलना था, तो मैं पिताजी से बोले, पिताजी हमारे भी आगे की पढ़ाई का वास्ते कॉलेज जाना।
1: अच्छा, फिर?
0: अरे पिताजी घना खुश हुई गया।
1: अरे
0: पिताजी बोलिया, बेटा भगत, मैं भी तो यू ही सोच रहे थो कि तू आगे और पढ़ाई करे और देश का वास्ते काम करे।
1: सही बात
0: मित्रों। फिर इन्हीं तरह मैं नेशनल कॉलेज लाहौर पहुंची। वहां हमारे कई नौजवान क्रांतिकारी साथी मिले।
1: अच्छा, हो
0: और अब मैं भी क्रांतिकारी बनी गयो। तो इनकलाब
2: जिंदाबाद,
0: वंदे
2: मातरम,
0: इनकलाब
2: जिंदाबाद।
0: वहां हमारा साथियों ने नौजवान भारत सभा नाम की पार्टी बनाई।
1: अच्छा,
0: पर पैसा की तंगी के कारण हमारा साथियों के ट्रेन तक लूटनी पड़ी, जो काम हमारे बिल्कुल पसंद नहीं था।
1: फिर आगे कही वो
0: यो काम उन्होंने 7 मार्च 1925 को काकोरी में किया।
1: अच्छा, बताओ बताओ, ये काम उन्होंने किनी तरह करी हो?
0: यो भी सुनो।

0: बेटा भगत, मैं पैदा ही हमारा दो भाई उनके क्रांति की आग में ठोकी, एक तो शहीद हुई जो और दूसरा जो है विदेश चली जो, तो वहां से आंदोलन चली जो। बेटा मैं 18 निक होना चाहूंगा।
1: पिताजी उन चारी की फांसी देखी के मारो खून भी उबाला मारी है। मारे अंग्रेज सरकार से बदलो ले रही है पिताजी, मैं चुप नहीं बैठ सकूं।
0: अरे तू बदलो ले, मैं थारा मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं थारा मारा दो भाइयों के खो चुके हूं। अब थारे
1: मारी बात सुनो पिताजी।
0: सुना

0: राजी में चुकनी बैठी से कुम्हारे अंग्रेज सरकार से बदलो लेनु ही।
1: अरे तू बदलो ले।
2: Hey! Arrest him! योजे साहब, योजे। इन्हें काकोरी कांड में साथ दियो, योजे, योजे।
1: और दशहरा का मैदान मेला में बम फेंको इन्हें, योजे।
2: और करतार सिंह सराबा को जन्मदिन भी मनायो
0: इन्हें। हाँ, मैंने मनायो।
1: अरे तो बनाने कोई गुनाह है क्या?
2: अभी जेल में जाओगे तो मालूम पड़ेगा कैसे मनाया।

0: मुश्किल से मैंने थारे जेल से छुड़वाए हुए। अब तो थोड़ा दिन शांति रखी ले। चल, थारी माँ ने थारे वास्ते एक लड़की देखी। मैं कल उनका पिताजी से बात करने गई हूँ। जब तक तू थोड़ा अपना ध्यान रख।
1: ठीक है पिताजी। कहीं बोली भी नहीं सकूं। ऐसो करूं कि एक पत्र लिखूं जिससे ही हमारी सब बात समझी जाएगा।

0: मित्रों कई बात है, आजाद जी और लाला जी अभी तक नहीं आए।
1: हाँ, तुम चले गए हो। वे आजाद जी ने लाला

0: आप सभा में आइया, सभा की रौनक बढ़ी। अबे मारो निवेदन तो आपसे कि जब आप आया हो तो थोड़ा सभा को अपने परिचय दे
1: तो लो अभी दे दा।

0: साथियों, भारत में साइमन कमीशन का सदस्य आया हुआ है। वे कोई नया कानून लागू करे जी का पहले उनके यहाँ से बाहर भगाना।
1: हाँ हाँ, भगाना है। हाँ मित्रों, 20 अक्टूबर 1920 का दिन साइमन कमीशन लाहौर आई है और हम सबके मिलकर उनका खिलाफ प्रदर्शन करना है।
2: तैयार है।
1: एक खास बात और मित्रों, इन्हीं प्रदर्शन में लाहौर की जनता भी हमारा साथ शामिल होगी।
2: यह तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी।
1: और लाला जी, आप सबसे आगे रहो।
0: ठीक है।

0: मित्रों, लाला जी की कहीं खबर है कि नहीं है?
1: अभी तक कोई खबर नहीं है।
2: साथियों, इलाज के दौरान लाला जी की मृत्यु हुई, विदेश में शहीद हुई गया।

0: साथियों, हमें लालाजी की मौत का जिम्मेदार जेम्स स्कॉट के मौत की सजा देनी है।
1: हाँ, क्यों देनी है?
2: जयपाल, तुम्हारे स्कॉट की निगरानी रखनी है।
3: हाँ, रखूंगा।
0: भगत, तुम पिस्तौल चला, नहीं मैं निगरानी रखूंगा पुलिस से।
4: भगत, मैं तुम्हारे साथे रहूंगा।
2: ठीक है, तो फिर आओ तुम हमारे साथ है।
4: चलो।
2: मुंह देख बाहर निकलो, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लो।

0: स्पॉट में सांडर्स मेरी क्यों?
1: भागो भगत, भागो पुलिस।
2: चलो अच्छा हो इसका नहीं तो सांडर्स मरी क्यों? अरे मरी क्यों देश को दुश्मन।
3: साथियों उन सब तो ठीक है पर पूरा लाहौर शहर में पुलिस फैली हुई है। मैं दुर्गा भाभी का साथ कलकत्ता जा रही हूँ। तुम सब भी अपना अपना ठिकाना पे पहुंचो।
2: ठीक है भगत।
3: ठीक है। इंकलाब
4: जिंदाबाद।
3: वंदे
4: मातरम।
2: और साथियों सांडर्स हत्याकांड के बाद में अंग्रेजी सरकार बौखलाई गई है। चप्पा चप्पा पे निगरानी बढ़ाई दी गई है। तुम भी अपनो ध्यान रखो साथियों।
5: तो ठीक है साथियों तुम भी अपना अपना ठिकाना पे पहुंच जाओ। मैं भी छिपता छिपाता अपना ठिकाना पे पहुंच जाऊंगा।
4: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
4: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
7: अरे हाँ धनलाल कई बात है।
8: हेलो।
9: नहीं कहीं से।
2: सांडर्स की हत्या की खबर तो तुम लोगों ने सुनी होगी।
9: जी सुनी साहब।
2: उसमें एक और खबर है।
9: वहाँ कहीं सर?
2: उसके अपराधी हमारे शहर में कहीं घूम रहे हैं। पूरे शहर में फैल जाओ उसको ढूंढ निकालो।
9: जी साहब।
2: जाओ।
9: चलो ढूंढ लिया।
2: अरे मिलियो कहीं?
9: नहीं मिलियो आ रहा है।
2: देख इधर देख देख देख देख देख
10: अब कहाँ ढूंढा के धरती पे समझ लो कहाँ
2: समझ भी नहीं आ रही कहाँ ढूंढा तो कहाँ ढूंढा मार परेशान हो गया यार इधर अंग्रेज जीवन दे दिया हमारे कहीं करे यार दादा। अरे पहला थकी गया मैं
11: क्या था अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जाओ ढूंढो से।
9: जी साहब।
2: चल
9: चल
12: कलकत्ता में राजनीतिक दल ने अंग्रेज सरकार का बीच एक बहुत बड़ा अधिवेशन चली रही थी। अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज की मांग पर ठुकराई दी। ने जनता जनता तो पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़ी हुई थी। ने आई अपनो भगत दुर्गा भाभी का साथे कलकत्ता पहुंची गयो बेस बदली के। पर कलकत्ता में राजनीतिक दल उनकी बात सुनी गई इनको मन बहुत दुखी तो भी पाछा पाछा दिल्ली आई गया। देखो देखो दिल्ली में कहीं करी जा रही और अभी अपना साथी उनका साथे मीटिंग करी रिया।
4: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
4: वंदे
6: मातरम।
4: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
13: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शहीद भगत सिंह पर हमारा विशेष कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं रचना पाठ और गीत गुंजन कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट।

0: रेडियो रिपोर्ट में पहले आज हम आपको लिए चल रहे हैं दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में, जहां पिछले दिनों स्मरण दुष्यंत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
1: मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर प्रार्थना पंडित को। इस मंच से जो आज प्रस्तुतियां हुई हैं, जिस किस्म के आलेख पढ़े गए हैं और खासतौर पे जो खतों के जरिए हमें जो दुष्यंत को जानने का मौका मिला है वो बहुत कमाल का रहा। उसमें जिस किस्म की आत्मीय भाषा मित्रों के बीच में होती है, मुझे लगता है मैं और दुष्यंत को गहराई से जानने का मुझे मौका मिला। गजलों के माध्यम से हम उन्हें जानते हैं, लेकिन मुझे गीत के पाठ के लिए कहा गया है और गीत भी क्या कमाल का है आप सुनिए।

0: मुझे इस स्वप्न से भूले हैं जो, मुझे इस स्वप्न से भूले हैं जो, उनको नहीं भुलाया जाता। अंतर में बसने वालों,
1: अंतिम बंद छोटा सा
0: चितवन के

और आइए अब रेडियो रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रविंद्र भवन में, जहां 5 सितंबर की शाम कार्यक्रम गीत गुंजन में महफिल सजी पुराने नगमों की।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भारतेंदु हरिश्चंद को आधुनिक युग के हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। वे आधुनिक भारत के महानतम हिंदी लेखकों में से एक हैं। भारतेंदु के साहित्य में आमजन की पीड़ा, समाज के मध्यम वर्ग की बेचैनी और देश के विकास की आवश्यकता बड़ी बुलंदी से दर्ज होती है। भारतेंदु सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। एक और उनकी लेखनी से ऐसे रसपूर्ण सवैये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे, तो दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी रचनाएं देश के मंगल का मंत्र फूंकने लगी। कभी उनकी कविताएं भक्तिमालाएं बनकर इष्ट के चरणों में अर्पित होती, तो कभी उनकी रचनाओं में धार्मिक आडंबरों का माहौल उड़ाया जाता। उनके व्याख्यानों में स्त्री शिक्षा और समाज सुधार की गुहार लगाई जाती। बड़े ही सरल भाव से नए और पुराने में सामंजस्य बिठाकर वे अपनी रचनाओं में अद्भुत माधुर्य पैदा कर देते थे। भारतेंदु की लेखन सामग्री जीवन के हर पहलू को छूती हुई गुजरी और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देश की उन्नति का कारक सिद्ध हुई।
2: आओ बेटा, आओ आओ, जरा राम तो भज लें।
3: जी गुरुजी। जी गुरुजी।
2: तो उठा बेटा एक तारा।
3: जी गुरुजी।
4: तो हो जाए गुरुजी।
3: हो जाए,
2: हो जाए शुरू।
4: तो राम भजो राम।

0: विश्वनाथ,
1: जय जय भोलेनाथ,
0: जय जय बाबा विश्वनाथ,
1: जय जय बाबा विश्वनाथ।
0: मैं महंत और मेरे दोनों चेले बच्चा नारायण दास
1: जय हो,
0: और बच्चा गोवर्धन दास
1: जय हो।
0: पहचान तो लिया होगा आपने।
1: अरे वही अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक वाले।
0: हाँ।
2: जो नाटक बाबा भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख गए।
0: सवाश बच्चा।
1: हम उसी नाटक के पात्र।
0: हाँ तो उस नाते से हरिश्चंद्र हुए हमारे
1: बाप।
0: अबे अब, अबे मूरख, जनक भी तो कह सकता है।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, गुरुजी।
0: हाँ, तो बच्चा गोवर्धन दास का तय हुआ था रे हमरे बीच?
2: यही कि आज अंधेर नगरी नहीं बल्कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तो बाबा भारतेंदु की कथा सुनाएंगे।
0: आजा बेटा एक तारा लेके, जरा सुर तो छेड़ दे। हाँ चलो चलो शुरू करते हैं।
3: राम

0: तो काशी नगरी में पैदा हुए हमारे जनक हरिश्चंद्र, गंगा मैया के किनारे विराजे बाबा विश्वनाथ, और यही है उनकी नगरी काशी।
1: और गुरुजी ये भी तो बता दीजिए, एक संपन्न वैश्य कुल में बाबू गोपाल चंद्र के घर भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 को बाबू हरिश्चंद्र का जन्म हुआ।
0: हाँ, हरिश्चंद्र 7 वर्ष के रहे होंगे जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़की।

0: बचपन के संपन्न और सावंती वातावरण के बावजूद उनमें राष्ट्रीय चेतना जाग चुकी थी।
1: दौलत की दमक से वे अंधे न हुए थे कि गुलामी के अंधेरों को देख न सकें।
2: काय भैया, बहुत दिना बाद देखे।
3: हाँ, बाहर बहुत घूमत रहे, जगन्नाथ जी गए, हमने कहा हरिश्चंद्र का गुहार है भगवान, ये अंग्रेजन से बचाओ हमका।
0: और भी बहुत सी जगह देखे होंगे।
3: हाँ, बहुत घूमे हम, चुनार, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, हरिद्वार, अमृतसर, लाहौर, आगरा, सारे शहर घूमे।
2: अरे, उधर भी अंग्रेजन का यही हाल है का?
3: अरे कछु पूछो ही मत, सब जगह एक ही हाल है।
0: अरे बुजुर्ग कहते रहे कि कंपनी बहादुर का राज बहुत ही जालिमाना था।
3: तो महारानी विक्टोरिया का कौन कम है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ।

0: क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज,
1: क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज,
0: क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज,
1: क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज।
2: वाह भैया वाह भैया, क्या बात कही,
3: वाह भैया कैसा उम्दा खाका खेचा है अंग्रेजन का।
4: बढ़िया।
0: अरे आप खाका की कह रहे हैं, हम अपनी लेखनी से अंग्रेजन की खाल खेचत हैं। लो एक और सुनो।
2: अरे वाह वाह वाह, चलो चलो आ जाओ।

0: क्या बात कही है।
1: पहले हमारे देश पर कब्जा जमाया, अब हमारी भाषा को नष्ट करने में लगे हैं, अंग्रेजी की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं।
2: अपनी भाषा को तो बचाना ही होगा।
3: अरे बिन निज भाषा के तो मूक जानवर सा है आदमी।
4: हाँ सही बात है।
1: हाँ, निज भाषा के बिना समाज की उन्नति नहीं हो सकती।
3: नहीं हो सकती।
1: अरे अंग्रेज तो अंग्रेजी को बढ़ाएंगे ही।
3: हाँ।
1: हमें अपनी भाषा को बचाना और बढ़ाना होगा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कुसूल।
5: चना मसालेदार चना
6: गर्मा गर्म।

0: चुरमुर चुरमुर बोले,
1: चुरमुर चुरमुर बोले,
0: चन्ना चुरमुर चुरमुर बोले,
1: चुरमुर चुरमुर बोले।
2: ओ बाबू खाने को मुंह खोले भैया,
1: खाने को मुंह खोले
2: बाबू।

0: गफरुन मुन्ना चना खावे गफरुन मुन्ना
1: बोले और नहीं कुछ सुनना
0: नहीं कुछ सुनना नहीं कुछ सुनना
1: अरे बोले।

0: जी जो कमाल दिखाए हैं उसकी बात करेंगे।
1: जैसी गुरु जी की इच्छा। क्या कहते हो गोवर्धन दास?
2: जा में तुम राजी, बा में हम भी राजी।
0: सिर्फ 34 साल की जिंदगी रही उनकी, इतनी छोटी जिंदगी में बड़ा बड़ा कमाल किए। वो हिंदी का पहला मौलिक नाटक भी लिखे।
2: और भी तो नाटक लिखे होंगे अंधेर नगरी के अलावा।
0: अरे बच्चा बहुत से लिखे, चंद्रावली, हिंसा ना भवती, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी।
1: और भी कुछ लिखे रहे?
0: अरे वे आशु कवि रहे, कुछ सूझा और कविता बन गई, किसी ने कहा और कविता बन गई।
3: अरे क्या बात है, अभी तक हरिश्चंद्र बाबू नहीं आए, शाम ढली जाती है।
4: अरे फिकिर ना करो, शाम को राम कटोरा मोहल्ला में आए बिना भैया को चैन कहाँ।
3: अरे बनारस में राम कटोरा मोहल्ला के रंग जैसा रंग और कहाँ मिलेगा।
4: लो लो लो, देखो भैया इधर ही आ रहे, आ रहे इधर।
5: जय राम जी की भैया।
6: अरे जय राम जी की, जय राम जी की। और सुनाओ।
3: बस आप ही की बात कर रहे थे।
4: हम इनसे कह रहे थे भैया कि आपकी शाम राम कटोरा मोहल्ले से बाहर कटे ये हो ही नहीं सकता।
6: ये भी खूब कही। पहले ये बताओ कि पंचरत्नी तैयार है कि नहीं?
3: एकदम तैयार है, कब से आप ही का इंतजार था।
6: तो लाओ भाई, पेश करो, जरा तरंग बने तो बात बने।
4: ये लीजिए।
6: वाह, इसकी तो खुशबू से ही तरंग बन जाए, ऐसी खुशबू है।
3: तो भैया इसी बात पर कविता बन जाए एक।
6: हाँ हाँ, अभी लो। तो बोलो किस पर कविता बनाऊं?
4: वो उधर देखिए, उधर देखिए, वो हाँ, देखिए हाँ। वो जो बाई जा रही है ना,
6: हाँ,
4: उसके मुंह पर चेचक के दाग है,
6: हाँ,
4: उस बाई पर कविता बनाइए जरा।
6: अरे अभी लो। तो पेश है एक शेर, सूखे आईना पे दिल।
4: वाह,
6: सूखे आईना पे दिल जो जा जा के फिसलता है।
4: सूखे आईना पे जो दिल जा जा के फिसलता है,
6: खुदाई दाग चेचक से जरा ठहराव मिलता है।
3: वाह वाह, क्या बात है भैया, इसी शेर पर हो जाए एक और दौर पंचरत्नी का।
1: पर गुरुजी, अंधेर नगरी गजब का नाटक है।
0: हाँ बेटा, तब का लिखा नाटक आज तक जवान है। अरे कुछ नहीं बदला हालात में, और कोई नाटक हिंदी में दिखा दो ऐसा अगर कोई है तो।
2: हमको तो उनकी भाषा बहुत भाती है।
0: हाँ बेटा, एक बात तुम लोगों को बतावे, हम हास व्यंग तो उनके खून में था, हंसते हंसते चोट कर जाते थे वे।
1: हाँ गुरुजी, हंसते हंसते चोट कर जाते थे। हाँ, तो हो जाए इसी बात पे।
0: हाँ बेटा, तो उठा एक तारा, जय भोलेनाथ, बम।

सभी महा

0: गजब की चोट करते थे भैया।
1: अरे वे कविता लिखे, नाटक लिखे की पत्रिका निकाले, सब में चुटीलापन बना रहता था।
2: उन्होंने मैगजीन भी निकाली थी।
1: हाँ बच्चा, हरीश चंद मैगजीन नाम की मासिक मैगजीन निकाली थी। गजब के पत्रकार थे। आज की पत्रकारिता पर भी उनकी छाप हर कहीं है।
0: वाकई कमाल की चीज थे।
1: हाँ बेटा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों पर नाटक लिखे, विधवा विवाह पर भी लिखा और बेमेल विवाह पर भी लिखा, नई रोशनी के बाबुओं की मिट्टी पलीत की और पोंगा पंडितों की भी भद उड़ाई।
2: गरीबों के लिए सुना है उनके मन में खूब दया थी।
0: सुना है दोनों हाथों से लुटाते थे, लूट सके तो लूट
1: और नहीं तो क्या बेटा। उनके दर से कोई खाली हाथ ना गया। पैसे को लेकर उनका एक मजेदार किस्सा है।
3: अरे सेवक राम
1: जी। मालिक।
3: हाँ, ये पकड़ो नोट और जरा सूंघ कर हमें बताओ कि इनमें से सुगंध आती है या दुर्गंध।
1: मालिक, पैसे से भी कभी दुर्गंध आई है क्या?
3: हाँ, हमें आती है दुर्गंध, हमें पैसे से दुर्गंध आती है।
1: आपका तो सगरा काफी अनोखा है।
3: सही कही। अच्छा देखो
1: जी,
3: ई पकड़ा हमने ये नोट आग पर।
1: अरे अरे अरे बबुआ,
3: आई कि नहीं दुर्गंध?
1: अरे अरे अरे, ई का कर रहे हो बबुआ, ये असली का नोट है, नकली चूरन वाला नोट नहीं है।
3: हाँ, अब तुम देखो लक्ष्मी में कितनी दुर्गंध है।
1: देख ली, अब और नोट ना जलाइएगा आप।
3: इसी लक्ष्मी ने हमारे परिवार को बर्बाद किया है।
1: नोट के अंदर के चमड़े की झिल्ली जलने से बहुत तेज बदबू उठ रही है, अब और नोट मत जलाइएगा आप।
3: अरे कुछ नहीं धरा इस लक्ष्मी और माया में, असली धन तो प्रेम है आपस का।
1: सच्ची कही बात आपने मालिक, बिल्कुल सच्ची कही।
3: हाँ, लक्ष्मी बाटो घटती है और प्रेम बाटो बढ़ता है।
1: सच्ची कही।
4: तो देखा बच्चों, लक्ष्मी बाटो तो घटती है और प्रेम बाटो तो बढ़ता है।
0: सही कहा गुरुजी, बिल्कुल सही।
4: हाँ तो बच्चा नारायण दास
0: जी, गुरु
4: ऐसे आदमी रोज रोज पैदा नहीं होते।
0: 16 आने सच्ची बात।
4: हाँ बेटा, सबके सुख दुख में शरीक। अरे सड़क किनारे ठुठुरते भिकमंगे को अपनी शाल उड़ाकर आगे बढ़ जाएं, ऐसे मलंग थे वे।
2: ये सच है ना गुरुजी कि उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी पत्रिका निकाली थी?
4: हाँ बेटा सच है ये। तब एक पत्रिका निकालना मुश्किल था, पर उन्होंने 2-3 निकाली और 2-3 और निकालने का विचार रखते थे वे।
0: पता नहीं गुरुजी उस जमाने में कैसे कर गए ये सब।
4: अरे धुन का पक्का हो अगर आदमी तो क्या नहीं कर सकता, वरना पत्रिका निकालना और बेचना बहुत टेढ़ी खीर था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
5: अरे बड़ी कठिनाई से भैया एक ग्राहक बना पाया हूँ।
6: गनीमत है, हम तो एक भी ना बना पाए।
5: लगे रहिए, कोई ना कोई मिल ही जाएगा।
6: अरे कल एक मिला था, बोला अखबार पढ़कर सुना जाया कीजिए। बताओ ये कोई बात है?
5: अनपढ़ों के बीच पढ़े लिखे हैं ही कितने जिन्हें अखबार बेचें।
6: अरे पढ़ा लिखा पर होने से क्या होता है, खरीदने को पैसा भी तो हो।
5: अव्वल तो पैसा नहीं और जो पैसा हो तो इच्छा नहीं।
3: बहुत देर से तुम लोगों की बात सुन रहा हूँ, बताओ इसका हल क्या है? क्या बंद कर दे छपाई?
5: सवाल ही नहीं उठता।
6: सवाल ही नहीं उठता।
3: मैं जानता था तुम्हारा यही जवाब होगा, इसीलिए लगे रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
0: गुरुजी, अब तो 2-4 झलकी हो जाए अंधेर नगरी की, मन बड़ा कुलबुला रहा है।
2: हाँ हाँ गुरुजी, नारायण दास ठीक कहता है।
4: तो ठीक है बच्चा, ले भाई अब शुरू होता है नाटक। तो बच्चा नारायण दास, ये नगर तो बहुत सुंदर है, देख कुछ बिच्छा इच्छा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे।
0: गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है जो है सो है? पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो।
4: बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और बच्चा नारायण दास पूरब की ओर जा, ठीक है
0: जी गुरुजी।
4: हाँ तो देख, कुछ सीधा सामग्री मिले तो शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो।
2: गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए।
4: बच्चा बहुत लोभ मत करना है, देखना लोभ पाप का मूल है,
7: लोभ पाप का मूल है,
4: लोभ मिटावत मान,
7: लोभ मिटावत मान।

0: बच्चा, ये नगरी कैसी है?
1: बाबा जी, इस नगरी की चाल यही है, यहाँ की सब चीज टके शेर बिकती है।
0: क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है?
1: अंधेर नगरी।
0: और राजा का नाम क्या है?
1: चौपट राजा।
0: वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। अंधेर

0: नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज धक्के से मिलती है, तो मैंने उसका विश्वास नहीं किया था। ये कौन सी नगरी है और उसका कौन सा राजा है जहाँ टका शेर भाजी और टका शेर खाजा मिलता है?
1: अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा।
0: तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टका शेर भाजी और टका शेर खाजा हो। सेत सेत

0: हाँ तो बच्चा यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना अब।
1: मैं तो यहीं रहूंगा।
0: हैं? देख बच्चा पीछे पछताएगा फिर। हाँ
2: मजा आ गया गुरुजी।
0: अरे ऐसे मूर्ख राजा के राज में कब कौन सी आफत आन पड़े कौन जाने भाई।
1: बिना गीत के का मजा आएगा झलकी का, गुरुजी हो जाएगी।
0: हाँ बच्चा, तो बच्चा उठा एक तारा, हो जा शुरू।
2: हो जाओ भैया।

0: राजा,
1: अरे अंधेर नगरी चौपट राजा,
0: अंधेर नगरी चौपट राजा,
1: टके सिर भाजी टके सिर खाजा,
0: टके सिर भाजी टके सिर खाजा,
1: टके सिर भाजी टके सिर खाजा,
0: टके सिर भाजी टके सिर खाजा,
1: अरे सांचे मारे मारे डोले,
0: सांचे मारे मारे डोले,
1: छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ी बोले,
0: छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ी बोले,
1: सांचे मारे मारे डोले,
0: सांचे मारे मारे डोले,
1: छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ी बोले,
0: छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ी बोले।
2: तो भाई लोगों, ये हुए चंद टुकड़े नाटक के। नाटक ठहरा हरिश्चंद्र का तो थोड़ा लंबा, आपको बस झलकी भर दिखाइए।
3: तो गुरुजी
2: हाँ,
3: का आज्ञा है, समेटे अपना डेरा डंगल।
2: जे कहीं ना धन्यवाद।
4: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें, इस विषय पर जानकारी दे रही कनक और आपसे बातचीत की है दीप्ति तंतुवाय ने।
2: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। हमने चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पोषण आहार विशेषज्ञ कनक भट्ट जी को। कनक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद के स्टूडियो में।
3: नमस्कार।
2: मैं जानना चाहूंगी कि एक बच्चे, एक एडल्ट और बुजुर्ग की डाइट क्या होना चाहिए, यानी बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए।
3: अगर हम जनरली देखें तो हर एज कैटेगरी में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए ग्रोथ को प्रमोट करता है। और हम एक थाली की बात करें, जनरलाइज्ड अगर हम किसी एज कैटेगरी की बात नहीं भी करते हैं, तो हमारी थाली का प्रपोर्शन ऐसा होना चाहिए कि थाली में 50% हमारा वेजिटेबल्स और सैलड होना चाहिए। देन 1/4 हिस्से में हमारी थाली में प्रोटीन होना चाहिए और बचे हुए हिस्से का हमें बैलेंस करना है हमारे कार्बोहाइड्रेट से और हमारे जो मिनरल्स विटामिंस हैं एंड प्रोबायोटिक्स हमारी थाली में होना चाहिए। जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में अगर हम वेजिटेरियंस की डाइट देखें तो उसमें हमारी दालें, एनिमल प्रोडक्ट्स, दूध के बने हुए सारे प्रोडक्ट्स, चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें ये फैट्स में आती हैं, ये भी हमें डेली बेसिस पे लेना है। इसके बाद अगर हम नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो उसमें अंडे, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें प्रोटीन के सोर्सेज में आती हैं। और वेजिटेरियंस में दालें, इसके अलावा हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं, मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो किसी भी प्रकार की हरी सब्जियां, ये सारी उसमें शामिल होती हैं, सैलड्स में भी। और हमें ट्राई करना चाहिए कि जितना हम कलरफुल हमारी प्लेट को रख सकते हैं उतना हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में ज़्यादा जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में दाल, चावल, ये सारी चीज़ें, अनाज, मोटा अनाज, ये सारा कुछ शामिल होता है।
2: अब मैं ये जानना चाहूँगी कि मोटे अनाज और साधारण अनाज किस तरह से अलग होते हैं और इनके खाने के क्या फ़ायदे हैं, खासकर मोटे अनाज।
3: मोटे अनाज जो हैं ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करते हैं और साधारण अनाज क्योंकि थोड़ा सा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इन्हें हम डायबिटिक्स को भी देना थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब भी हम ये खाते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है जिससे हमारा ग्लूकोज स्पाइक होता है।
2: अच्छा।
3: और मोटे अनाज खाने का ये फ़ायदा है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हम इन्हें रोगी को भी दे सकते हैं, उनसे उनकी हेल्थ और इम्प्रूव होती है, क्योंकि सबसे अच्छा डायबिटीज़ इससे क्योर होती है। दूसरा कि जब हम मोटे अनाज खाते हैं तो हमें स्लो एनर्जी मिलती है जिससे कि हम लॉन्ग टर्म एनर्जी मिलती है और हमें बार बार भूख नहीं लगती है।
2: अब आप हमें ये बताएं कि मोटे अनाज क्या होते हैं और मोटे अनाज को खाने के क्या फ़ायदे हैं, साथ ही ये भी बताएं कि बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए मोटे अनाज की मात्रा कितनी होना चाहिए।
3: मोटे अनाज में शामिल हैं जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारे जो अनाज हैं ये मोटे अनाज में शामिल होते हैं।
2: जी।
3: इनको खाने की वही मात्रा है 20 से 30 ग्राम बच्चों के लिए, 40 से 50 ग्राम एडोलेसेंट एज के लिए।
2: जी।
3: वैसे ही हम 20-20 ग्राम बढ़ा के इसको खा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए भी मात्रा एडोलेसेंट एज की ही मात्रा के बराबर होती है, क्योंकि बुजुर्गों में एज के साथ उनका पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। महिलाओं के लिए भी रागी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे उन्हें फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी होती है जिसके वो सप्लीमेंट्स लेती हैं अलग से, तो अगर वो मोटे अनाज शामिल करती हैं जैसे बाजरे की खिचड़ी या रागी का हलवा, ये सारी चीज़ें अगर वो ऐड करती हैं तो उन्हें कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी और आयरन इनटेक भी उनका कम्प्लीट होगा। वैसे ही छोटे बच्चों को भी हमें मोटा अनाज देना चाहिए जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म एनर्जी मिले और बच्चे भी जैसे माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में या फिर आजकल बच्चे जंक फूड खाते हैं जिसकी वजह से वो एज से पहले ही काफी वेट गेन कर लेते हैं, या कुछ बच्चे जो अभी भी अंडर नरिश्ड हैं जिनका एज के साथ उतना ग्रोथ अभी तक नहीं हुई है, स्टंटेड ग्रोथ है, जो अब अभी हमारा न्यूट्रिशन वीक का मोटिव भी है कि माल न्यूट्रिशन को कैसे खत्म करना है। तो ये रेसिपीज बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में मोटे अनाज से रेसिपीज बना के खिलाई जाए, जैसे चीला बना के खिलाया जाए, या फिर जो जंक फूड वो पिज्जा उधर बाहर खा रहे हैं तो हम मूंग की दाल का पिज्जा बना के उन्हें अगर खिलाते हैं, चटनी लगा के आप जो मेयोनीज की जगह उसे, तो ऐसी रेसिपीज अगर हम ऐड करते हैं तो मोटा अनाज हम इंक्लूड कर पाएंगे डाइट में।
4: जो किशोर अवस्था की जो हमारी बच्चियाँ होती हैं, किशोर होती हैं, और उनका मासिक धर्म शुरू होने वाला होता है या हो चुका होता है, तो बहुत पेनफुल होता है वो, तो उसके लिए ये किस तरह से सहायता करता है मोटा अनाज, और ये कितनी मात्रा में उनको हम दे सकते हैं?
3: मोटे अनाज में खासकर अगर हम रागी की बात करें तो उसे हमें स्टार्टिंग से ही, जब से एक गर्ल का पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो रागी का अगर टेस्ट किसी को डेवलप नहीं हो रहा है तो हम उसको थोड़े ड्राई फ्रूट्स, रागी, गुड़, घी के साथ उसका एक लड्डू बना के रख सकते हैं, जो कि हमें डेली इवनिंग में उस गर्ल को देना चाहिए, जिससे उसका कैल्शियम और आयरन इनटेक पूरा हो। और भी एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है, अगर हम डेली एक मुट्ठी चना और थोड़ा सा गुड़ बचपन से अगर लड़की को शाम को खिलाते हैं जिसके पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए, तो उसको कभी भी आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा।
4: अभी जैसे आपने जंक फूड की बात की थी, तो जंक फूड के साथ साथ आजकल हम देख रहे हैं फास्ट फूड भी चल रहे हैं और बच्चे ने बहुत पसंद करते हैं, तो ये हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं?
3: आजकल जंक फूड जो है ये सबको ही पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, पर ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं ये हमारी स्किन को, हेयर को, हमारे स्पेशली गट को खराब कर रहे हैं
4: जी।
3: हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सारी बीमारियों का जड़ जो भी है, सारी बीमारी की उत्पत्ति हमारे पेट से हो रही है। अभी हम जो भी चीज खा रहे हैं वो हमारे पेट पे जाती है, इसके बाद हमारा हेयर फॉल होता है, हमारी स्किन खराब होती है, हमारा पेट भार है, वजन बढ़ रहा है, कैंसर हो रहा है, सारी चीजें हमारी पेट से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि जंक फूड थोड़ा बहुत खाना उचित है, हफ्ते में एक बार आप खा सकते हैं, बाकी बच्चे क्योंकि उनकी एज है वो ये देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनकी मदर्स को, उनके पेरेंट्स को इन्हीं सारी अच्छी चीज़ों से जो घर की है उसी से ही मिक्स एंड मैच करके रेसिपी बना के उन्हें देना चाहिए, जिससे कि वो थोड़ा सा जंक फूड से अवॉइड कर सके।
4: जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जंक फूड को हम रिप्लेस किस तरह से कर सकते हैं, और बिल्कुल पेरेंट्स को भी ये समझ में आया होगा। और अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है दिन भर में कितनी मात्रा में उसे मिलेट्स लेना चाहिए?
3: दिन भर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक है, जनरली सभी लोगों के लिए यंग एज से लेके ओल्ड एज तक, कि हमें उसको 30 से 50 ग्राम के बीच में रखना चाहिए। तो उसमें अगर हम कोशिश करें तो हम अगर हमारी 30 से 50 ग्राम में हमारा 20 ग्राम मिनिमम मिलेट्स हम ऐड कर सकते हैं। एक छोटा सा हैक हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम जो हमारी रोटी बना रहे हैं उसमें अगर हम 20-30% उसमें मिलेट का आटा मिक्स करते हैं हमारे गेहूं के आटे में, तो एक छोटा सा है कि हम मिलेट्स डेली बेसिस पे ऐड कर पाएंगे।
4: क्योंकि मोटा अनाज जो होता है, जो साधारण अनाज है, खाने की हैबिट है हम लोगों की, तो रिप्लेस इतने जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे कर सकते हैं हम।
3: इसीलिए मैंने आपको यही बताया कि क्योंकि अभी हमें रोटी और चावल खाने की आदत है, गेहूं की रोटी हमारे सभी के घर में स्टेपल डाइट है, तो हमारी स्टेपल डाइट को एकदम मिलेट से रिप्लेस करना हमारे लिए बहुत टफ है, तो हम धीरे धीरे उसको ऐसे ऐड कर सकते हैं कि हम गेहूं के आटे में मिलेट का आटा ऐड करना स्टार्ट करें, हम जो चावल की खिचड़ी बनाते हैं उसमें हम एक मेजर पोर्शन बाजरा या फिर ज्वार ऐड करना स्टार्ट करें, तो हम ऐसे धीरे धीरे करके उसको रिप्लेस कर पाएंगे।
4: बहुत अच्छी बात बताई, और साथ ही ये जानना चाहूंगी कि आपने खाने के बारे में तो बताया, अब पानी के विषय में और बताएं कि पानी दिन भर में कितना पीना चाहिए?
3: पानी वैसे तो हम कहते हैं कि 8 ग्लास पानी पीना चाहिए जी, बट ये डिपेंड करता है कि किसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है और वो किस एज कैटेगरी में भी है ये भी हम कह सकते हैं। तो मेजरली 8 ग्लास तो मिनिमम पीना ही चाहिए अगर कोई जिम वर्कआउट करता है या फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है। फिर क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है, अगर वो थोड़े शुष्क एरिया में रह रहा है तो फिर भी उसको 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए।
4: और आजकल ये ठंडा गर्म पानी का भी चल रहा है कि सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, तो ये कितना उचित है?
3: गर्म पानी पीने से कोई नुकसान नहीं है। गर्म पानी हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, अच्छे से हमारे पेट को साफ करने में मदद करता है, तो उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीना अच्छा है।
4: दिन भर यदि गर्म पानी पिया जाए तो?
3: दिन भर गर्म पानी पीना ठीक नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। जैसे भोपाल में हम अभी हैं, तो भोपाल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। फिर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की तासीर कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि गर्म पानी पीते रहो दिन भर तो वज़न कम होता है, ऐसा नहीं होता। अगर किसी की तासीर गर्म है और वो दिन भर गर्म पानी पीता है तो ये उसको नुकसान करेगा।
4: जो लोग घर में रहते हैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उन दोनों ही लोगों की डाइट में क्या अंतर होना चाहिए?
3: जो लोग एक्सरसाइज करते हैं
4: जी
3: और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इनके डाइट में सबसे बड़ा रोल होता है कार्बोहाइड्रेट्स का
4: जी,
3: क्योंकि जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारा वज़न बढ़ता है
4: जी।
3: तो हमें सबसे मेजर इस पे ध्यान देना है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना होना चाहिए। पहले हम डिस्कस करते हैं जो इंसान वर्कआउट नहीं करता, जो एक्सरसाइज नहीं करता, किसी भी प्रकार का कोई व्यायाम नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ दिन भर अपने घर पे बच्चों पे ध्यान देती हैं, अपने हस्बैंड पे ध्यान देती हैं, घर का काम करती हैं, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? हम ज़्यादातर 3 बार खाना खाते हैं
4: जी,
3: तो हमारा नाश्ता हमें मेजरली अंकुरित रखना चाहिए। हम उसमें मूंग की दाल का चीला ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमें उससे प्रोटीन मिले। कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो कोई अंडे की रेसिपीज ऐड कर सकता है उसमें जिससे उसे प्रोटीन इंटेक मिले। लंच टाइम में, लंच के और नाश्ते के बीच में हम एक प्लेट सैलेड या फिर एक प्लेट फ्रूट्स हम ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इस बीच में आप 1 ग्लास छाछ भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपको प्रोबायोटिक्स भी मिल जाए। लंच के टाइम पे जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी थाली कैसी दिखनी चाहिए लंच में, कि हमारी आधी थाली में हमारी सब्जी और सैलेड होना चाहिए, बचे हुए आधी थाली का 1/3 हिस्से में हमारा एक कटोरी दही हो सकता है जिसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए आप उसमें अलसी डाल सकते हैं, आप उसमें चिया सीड्स डाल सकते हैं अच्छे फाइबर इनटेक के लिए। बचे हुए सेकेंड हिस्से में आपका कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए जिसमें हमें ट्राई करना चाहिए कि हम साधारण अनाज और हमारे मोटे अनाज को, मतलब गेहूं चावल और मिलेट्स को मिक्स कर पाएं। और एक बचे हुए हिस्से में आपकी जो भी सब्जी है, छोले हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए छोले राजमा ये भी एक प्रोटीन का अच्छा ऑप्शन है। एंड डिनर हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सोने के कम से कम 3 से 4 घंटे के पहले कर पाएं और जितना हल्का हो सके उतना हल्का ले पाए। हम मोटे अनाज की खिचड़ियाँ ले सकते हैं, चीले भी ले सकते हैं। और हफ्ते में 1-2 दिन जैसी हमारी दिनचर्या है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में 1-2 दिन हम अनाज स्किप भी करें रात को
4: जी।
3: जैसे उसमें हम ले सकते हैं कि हम वेजिटेबल सूप बना लें, साथ में थोड़ा सा प्रोटीन के लिए अगर कोई नॉन वेजिटेरियन तो एग या फिर मीट ले ले, और वेजिटेरियन है तो पनीर या टोफू ऐड कर सकता है वो अपने सूप के साथ।
4: मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, क्या सभी को एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना चाहिए?
3: बिल्कुल, सभी को अपनी एज के हिसाब से और अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, तो बच्चों को हम देखते हैं स्कूल में स्पोर्ट्स होता है उनका, वो बाहर खेलने जाते हैं, ये उनके लिए एक्सरसाइज है
4: जी,
3: उनसे थोड़े बड़े बच्चों की बात करें क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत बिजी हो जाते हैं, तो उन्हें जब भी समय मिलता है वो आधे घंटे की वॉक कर सकते हैं। जैसे जो 10th 12th वाला जो पीरियड होता है जिसमें बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो वो पढ़ते पढ़ते वॉक कर सकते हैं। रात को अगर वो पेरेंट्स के साथ बैठे हैं तो पेरेंट्स के साथ ही वॉक पे चले गए, थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लिया। ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐड करने से उनका ब्रेन और शार्प होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज करती है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जो हमारा स्ट्रेस को कम करता है, हमारे ग्रोथ हॉर्मोन को इंक्रीज करता है, कॉर्टिसोल को कम करता है। वैसे ही अगर हम देखें कि हाउसवाइफ्स को, तो अगर वो घर से नहीं निकल पाती हैं या वो सुबह वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, से काफ़ी महिलाओं की ये प्रॉब्लम होती है कि वो सुबह मैं लंच बनाने में बिजी हूँ या मैं काम नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो वो शाम के टाइम पे कोई वीडियो लगा के डांस कर सकती हैं, एरोबिक्स कर सकती हैं, जो भी उन्हें पसंद है, वो कोई एक फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम हाफ एन आवर की तो ऐड करना ही चाहिए। बाकी जो लोग जिम जा सकते हैं उन्हें जिम जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अच्छा कोई वर्कआउट नहीं है, स्पेशली फीमेल्स को अगर वो वक्त निकाल सकती हैं तो उन्हें जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए।
4: मैडम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन चलते चलते मैं आपसे यही एक बात दिमाग में आ रही है कि आजकल बहुत से लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, सप्लीमेंट लेना कितना उचित है, इसके विषय में कुछ बताएं।
3: सप्लीमेंट्स लेना बिल्कुल ठीक है अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, और फिर सप्लीमेंट्स की कुछ कैटेगरीज भी हैं, जैसे पहली कैटेगरी है प्रोटीन्स।
4: जी जी,
3: तो वे प्रोटीन आपने सुना होगा, वैसी प्लांट प्रोटीन्स भी आते हैं आजकल मार्केट में। अगर आप अच्छे ब्रांड का लेते हैं, ऑथेंटिकेटेड है, और आप डेली रिक्वायरमेंट अपनी नेचुरल फूड से जब आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, किसी दिन आप बिजी हैं, आपके घर में वो फूड ग्रुप नहीं बना है जिसमें प्रोटीन इनटेक है, तो आप अपनी बॉडी को एक स्कूप वे प्रोटीन दे सकते हैं। हमें डेली भी उसकी आदत नहीं डालनी है। सप्लीमेंट का मतलब ही ये है कि आपने अपनी बॉडी को एक सप्लीमेंट किया है, एक रिप्लेसमेंट दिया है नेचुरल फूड ग्रुप का, बट ये हमारी लाइफ में पूरी तरीके से हमेशा कभी भी नेचुरल फूड ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरीज आती है जो टैबलेट्स आती हैं, मल्टीविटामिन्स की, ओमेगा 3 की, और वैरायटीज ऑफ विटामिन्स की आती है, विटामिन सी, डी, ये डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं, तो ये सारे सप्लीमेंट्स लेना ठीक है। और जो आपका कंसर्न है ये पूछने का कि इनसे लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है, जो सप्लीमेंट जैसे स्टेरॉइड्स लेना या लो क्वालिटी के प्रोटीन इंटेक लेना, या फिर पूरी तरीके से ही कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो नेचुरली नहीं लेके सिर्फ दिन भर वो ये सप्लीमेंट से ही अपना पूरा प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो सिर्फ मील रिप्लेसमेंट भी दे रहे हैं कि आप खाना ना खा के सिर्फ यही लें, तो ऐसा फॉलो करना ठीक नहीं है। हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हम जितना ज़्यादा हो सके नेचुरली ही हमारा डाइट में प्रोटीन और सारे मल्टीविटामिन्स वहीं से पूरे करें। किसी दिन नहीं होता है तो उसको लेना भी कोई बुरा नहीं है।
4: बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी आज आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की उसका फायदा हमारे श्रोता अवश्य उठाएंगे। मैडम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विषय पर आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू मैम।
4: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थी पोषण आहार विशेषज्ञ कनक भट्ट जी। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। अब हमारी पूरी टीम को दे अनुमति, सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: धर्म महासभा के पश्चात उनका अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर जाकर के व्याख्यान देने का दौर शुरू हुआ। एक कंपनी के साथ उनका 3 महीने का अनुबंध भी हुआ। वे व्याख्यान के बदले प्राप्त सम्मान राशि जमा करके भारत में आकर के विकास मूलक कार्य करना चाहते थे।
1: उन दिनों अमेरिकन समाज 2 भागों में बटा हुआ था। विज्ञान की प्रगति के साथ नवीन विचारधाराओं का जन्म हुआ, जो उदारपंथी था, और उग्रपंथी प्राचीन लोग बाइबल को सीने से चिपकाए हुए उसमें कही गई सारी बातों का पालन करने को ही धर्म मानते थे। उन दिनों आध्यात्मिक उन्नति को वास्तविक सामाजिक उन्नति का आधार ना मानकर बल्कि सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को ही आध्यात्मिक उन्नति का कारण या लक्षण कहा जाता था। अटलांटिक महासागर के तटीय भाग या पूर्वांचल में उदार पंथियों का प्रभाव अधिक था और मध्य पश्चिम तथा दक्षिण में प्राचीन पंथी प्रबल थे। पूर्वांचल में उदार पंथियों का जोर था। सामाजिक तथा आर्थिक सुधार पर और दूसरे अंचल के निवासी पाप एवं मादकता निवारण पर बल देते थे।
0: मध्य पश्चिम तथा दक्षिण में चर्च तथा समाज में स्त्रियों का आधिपत्य था, जो तर्क के स्थान पर भावुकता को अधिक महत्व देती थी और समाज को पाप मुक्त करने में ही जुटी रहती थी। समाज इनसे त्रस्त था। ये स्त्रियां प्रगतिशील स्त्रियों को बुरी नजर से देख करके अवज्ञा करती थीं। सभी सामाजिक कार्यों में इनका ही वर्चस्व था और पुरुष चुपचाप इनका नेतृत्व स्वीकार कर लेते थे।
1: ऐसे माहौल में स्वामी जी व्याख्यान देने पहुंचे। वहाँ का समाज उन्हें बड़ा ही अजीब लगा। वहाँ के धर्माचार्य, जिन्हें भारत के बारे में कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, भारतीय धर्म और समाज को हीन बताने पर तुले थे। वहाँ चित्र बनाकर कविता के माध्यम से भारतीय समाज की निंदा की जाती थी। वे कहते थे,
2: पवित्र गंगा की धारा जहाँ प्रवाहित हो रही है, देखो वो अधार्मिक हिंदू नारी किस प्रकार अपने हाथों से अपने बच्चे को जल में विसर्जित कर रही है, और उस शिशु को जब घड़ियाल आदि हिंसक जंतु ले जाते हैं, तब बच्चे की मर्मांतक रुदन की ध्वनि उठती है। वो क्रंदन की आवाज क्रमशः दूर दूरांतर में विलीन हो जाती है, पर उसकी माता बिना विचलित हुए अपने वज्र कठोर हृदय के साथ उसे सुनती है। उस देश में बाइबल भेजो, शीघ्र भेजो, ईसा का संदेश इन माताओं के अंतर में प्रविष्ट होगा, तो उनका चित्त माँ के समान कोमल होगा और वो राक्षसी के समान संतान का जीवन नाश नहीं करेंगी।
0: इन प्रचारकों के मतानुसार भारतीय पति अपने हाथ से चिताग्नि जला करके उसमें अपनी पत्नियों को जला देते हैं। माताएं नवजात शिशुओं को मांसाहारी पक्षियों के भक्षणार्थ वृक्ष की शाखाओं से लटका देती हैं। लोग स्वेच्छा से जगन्नाथ के रथ के नीचे कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह के और भी न जाने कितने ख्याली पुलाव पकाए जाते थे। इसी प्रकार के मिथ्या आरोप से दुखी होकर के जब स्वामी जी ने कहा था कि पाश्चात्य देश भारत के विरुद्ध जिस प्रकार के मिथ्या प्रचार तथा निंदावाद में लगे हुए हैं, उसके प्रतिकार के रूप में यदि भारत हिंद महासागर के तल का सारा कीचड़ पाश्चात्य देशों पर फेंके तो भी वह पूरा नहीं होगा, ये कहने में उन्होंने थोड़ी भी अतिशोक्ति नहीं की थी।
1: ऐसे माहौल से यानी कि मध्य पश्चिम से स्वामी जी अपेक्षाकृत नवालोक से आलोकित मेम्फिस नगर में पहुंचे। वहां वे 19th सेंचुरी क्लब के आमंत्रण पर आए थे। उन दिनों व्याख्यान कंपनी से अनुबंधित होने के कारण स्वामी जी के व्याख्यानों से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी हजम कर जाती थी। मेम्फिस में 13 जनवरी से 21 जनवरी तक विभिन्न प्रतिष्ठानों में उनके व्याख्यान हुए। व्याख्यानों की रिपोर्ट अखबारों में रोज छपती और कानंद स्वामी यानी विवेकानंद की ख्याति चारों ओर फैलती गई। मेम्फिस कमर्शियल अखबार में विस्तृत रिपोर्ट छपी थी।
3: उनका व्यक्तित्व था परमत सहिष्णुता, जिस पर वह सार्वभौमिक दृष्टिकोण से ही बोले और दृष्टांत के रूप में उन्होंने हिंदू धर्म का उल्लेख किया। अन्य मतों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की सभी धर्मों का सार होना चाहिए। हिंदू धर्म के आचारों, अनुष्ठानों आदि को छोड़कर उन्होंने अपने मौलिक तत्वों का ही विशाल विवेचन किया। जिन कुछ अनुष्ठानों की बात उन्होंने उठाई उसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या भी की। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वासी है और बाइबिल के उस पापवाद को नहीं मानता जिसके अनुसार मानव जीवन के साथ मूलभूत पाप मिश्रित है। मनुष्य पवित्र था और पवित्रता में लोट जाता है। इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने दिखा दिया कि हिंदू केवल बातों में ही नहीं अपितु व्यवहारिक जीवन में भी परधर्म सहिष्णु है। किंतु लोगों की उदारता का प्रमाण देते हुए उन्होंने बताया कि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों में इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी भगवान के मूल गुण हैं। प्रेम के उपासक होने के कारण वस्तुतः एक ही भगवान के भक्त हैं। हिंदुओं की मूर्तियां भगवान के दिव्य गुणों के प्रतीक हैं और ध्यान में सहायता के लिए हैं।
4: उनके समूचे भाषण को प्रस्तुत करना कठिन है, परंतु ये विश्व बंधुत्व की स्थापना के लिए एक उत्कृष्ट आवेदन था और एक मनोरम धर्म मत का एक सुयोग्य समर्थन था। इसका उपसंहार भी विशेष सुंदर बन पड़ा था, जबकि उन्होंने घोषणा की कि वे ईसा को स्वीकार करने को तैयार होकर भी कृष्ण और बुद्ध के समक्ष सिर अवश्य झुकाएंगे। तदुपरांत उन्होंने सभ्यता की निष्ठुरता का एक चित्र खींचते हुए कहा कि प्रगति के नाम पर होने वाले इन अपराधों के लिए वे ईसा मसीह को उत्तरदायी नहीं मानते।
0: मेम्फिस में स्वामी जी के अनुरागियों की संख्या बढ़ती गई और लोगों के अनुरोध पर उन्हें कुछ और अतिरिक्त व्याख्यान देने पड़े। उनका एक व्याख्यान था पुनर्जन्म पर। उसमें स्वामी जी बोले,
5: सभी प्राचीन धर्मों में पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकृत था, पर अब हिंदू और बौद्ध ही इसे मानते हैं। पाश्चात्य लोग सोचते हैं कि पुनर्जन्म मानने से अनैतिकता को प्रश्रय मिलेगा, न्याय होने से अन्याय भी रहेगा। जगत में व्याप्त अन्याय के लिए यदि ईश्वर उत्तरदायी न हो तो कौन होगा? पुनर्जन्म के सिद्धांत से इसकी मीमांसा हो जाती है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। शून्य से जगत की सृष्टि नहीं हुई। कारण परंपरा ही कार्य परंपरा को जन्म देती है। अतः मनुष्य का वर्तमान जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फल से बना है।
0: उन्होंने एक घटना का जिक्र और किया और कहा,
5: मैं जब मिनियापोलिस से ट्रेन में आ रहा था तो उसी में एक गोपालक मिला जो जड्ड स्वभाव का और शुद्ध आचारवादी था। उसने पूछा कि मैं कहां से आया हूं। मैंने कहा, भारत से। उसने पूछा, आपका धर्म क्या है? मैंने कहा, हिंदू। उसने कहा, तब तो आपको नरक में जाना होगा। तब मैंने उसे पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया। उसने कहा कि वो सदा से ही इस सिद्धांत में विश्वास करता आया है, क्योंकि एक दिन जब वो लकड़ी चीर रहा था तो उसकी छोटी बहन उसके कपड़े पहनकर आकर बोली कि वो पहले पुरुष थी। पुनर्जन्मवाद की एक और अच्छी बात यह है कि जो कुछ हो गया है उसके लिए पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि प्रति क्षण पुनः भले कर्म करने के जो नए नए अवसर आ रहे हैं उनका लाभ उठाना चाहिए।
1: भाषण के बाद ज्यादातर महिलाएं उनसे प्रश्न पूछती और स्वामी जी हंसते हुए उन सबको उत्तर देते, परंतु ये भी सच है कि सभी ने उनको प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं किया। विशेषकर कुछ पादरी उनका विरोध करते रहे। व्याख्यान के बाद वे भी कटाक्षपूर्ण प्रश्न पूछते थे,
6: हिंदू लोग अगर इतने ही धार्मिक और नीति परायण हैं, तो वो दूसरे राष्ट्रों की तुलना में इतने पिछड़े क्यों हैं?
5: इसलिए कि सांसारिक उन्नति धर्म का कार्य क्षेत्र नहीं है, और धर्म ने तो ईसाई जगत की उन्नति नहीं की, बल्कि ईसाई धर्म ने तो पश्चिमी जगत में विज्ञान के नवालोक के पथ में पग पग पर बाधा खड़ी की है। पाश्चात्य चिंतन एवं कार्य प्रणाली के साथ भारतीय चिंतन एवं कार्य प्रणाली का मिलन ही दोनों अंचलों के लिए हितकर एक नवीन पथ का निर्माण कर सकेगा।
0: पादरी महाशय निरुत्तर हो गए। तब स्वामी जी ने समझा करके कहा,
5: किसी न किसी रूप में धर्म सर्वत्र, यहां तक कि असभ्य लोगों में भी विद्यमान है। मानव आत्मा मानो हवा के बुलबुले के समान पृथ्वी के तल में जाकर स्वभाव से ही सर्वदा ऊपर उठने का प्रयास कर रही है, और यही प्रयास धर्म का रूप धारण कर लेता है।
1: 22 जनवरी को स्वामी जी मेम्फिस छोड़कर वापस शिकागो आ गए। इन 6 सप्ताहों के दौरान उन्होंने 12 नगरों में व्याख्यान दिए। श्रोतागण हमेशा एक जैसे नहीं होते, श्रोताओं के अनुसार ही स्वामी जी अपना विषय चुनते। जैसे अगर किसी खदान नगर में बोलते तो किसी बौद्धिक विषय के बदले सामाजिक विषय चुनते।
0: व्याख्यान कंपनी के साथ स्वामी जी भी लगातार घूमते रहे। श्रीमती बर्क ने भी लिखा है,
7: उनका एक चित्र मानस पलट पर उभरता है जिसमें वे सप्ताह पर सप्ताह भीषण ठंड के दिनों में रेल यात्रा करते, अपना सामान संभालते, श्रोताओं के सम्मुख व्याख्यान देते, पैसों का हिसाब करते, परिश्रम साध्य दीर्घ भाषण देने के पश्चात उल जलूल प्रश्नों के उत्तर देते। सच कहें तो उनकी

0: विशेषकर मैरी हेल और इशाबेल मैककिडनी के साथ उनका संबंध बड़ा ही आंतरिक था। उन लोगों के बीच कई पत्राचार हुए जिसमें स्वाभाविक विचार विनिमय, व्यंग विनोद, रोना गाना और सहानुभूति आदि दिख पड़ती थी।
1: हेल परिवार का परिचय देते हुए उन्होंने 25 सितंबर 1894 में स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था।
2: हेल और उनकी पत्नी दोनों ही वृद्ध हैं। साथ में दो पुत्रियां, दो भांजियां तथा एक लड़का है जो रोजगार के लिए दूसरी जगह रहता है। लड़कियां घर पर रहती हैं। इस देश में लड़की का रिश्ता ही सही रिश्ता है। चारों कन्याएं युवती और अविवाहित हैं। दोनों पुत्रियों के बाल सुनहरे हैं और भांजियों के काले। ये जूते की सिलाई से पूजा पाठ तक हर काम में माहिर हैं। भांजियों के पास उतना धन नहीं है। वे किंडरगार्टन स्कूल चलाती हैं, लेकिन पुत्रियां कुछ नहीं कमाती। लड़कियां मुझे भैया कहती हैं, मैं उनकी माँ को माँ कहता हूँ। मेरा सामान सब उन्हीं के घर में है। मैं कहीं भी जाऊं, वे उसकी देखभाल करती हैं। यहाँ निर्धनों के लिए किंडरगार्टन स्कूल अपरिचित नहीं है, पर धनिकों की संतानों के लिए ऐसे किंडरगार्टन अति विरल हैं। अतः संभ्रांत वंश की मैककिंडली बहनों द्वारा स्थापित विद्यालय में कुछ नयापन और वैशिष्ट्य है, जिसके लिए समाज में उन्हें विशेष प्रशंसा भी मिली है। एक समाचार पत्र में इसाबेल के बारे में लिखा गया है कि मिस मैककिंडली की अपने कार्य पर अच्छी पकड़ है और बच्चों के साथ उनका संबंध स्नेह तथा विवेकवान है। वे मन की बड़ी अच्छी हैं और वार्तालाप के समय उनकी प्रतिभा देखते ही बनती है।
1: हेल परिवार के साथ स्वामी जी की ये आत्मीयता आजीवन बनी रही। लंदन से भारत लौटने के पूर्व हेल बहनों से विदा लेते हुए 28 नवंबर 1896 को लिखे उनके एक पत्र में है,
2: मुझे लगता है इस पृथ्वी पर मैं तुम चारों से ही सर्वाधिक स्नेह करता हूँ और मेरा विश्वास है कि तुम लोग भी मेरे प्रति वैसा ही स्नेह भाव रखती हो। तुम लोग और तुम्हारा सारा परिवार मेरे प्रति इतना प्रेम रखता है कि जिसे हम भारतीय कहते हैं, लगता है मैं पिछले जन्म में तुम्हारे ही परिवार का रहा होऊंगा।
0: स्वामी जी के व्याख्यानों की जो भी रिपोर्ट अमेरिकी अखबारों में छपती थी वे बंबई, कलकत्ता और मद्रास के भारतीय अखबारों में पुनर्मुद्रित होती थी, जिससे उनके भक्तों को और देशवासियों को पता चलता था कि अमेरिका में स्वामी जी कितने जनप्रिय हो गए हैं। उनकी विजय वार्ता पाकर समग्र भारतीय समाज उल्लासित हो उठा था। इंडियन मिरर, अमृत बाजार आदि अखबारों ने अमेरिकी अखबारों के लेखों को इस प्रकार प्रकाशित किया।
3: प्रतीक्षा गृह में सबसे आकर्षक व्यक्ति सन्यासी स्वामी विवेकानंद से सबकी भेंट होती है। वे सुगठित शरीर के हैं और हिंदुस्तानियों का उन्नत व्यवहार उनमें है। दाढ़ी मूछ विहीन चेहरा, समुचित ढला हुआ सामान्य आकार, सफेद दंत पंथिया और सुगठित होठ, जो वार्तालाप के समय प्राय मुदु मुस्कान के रूप में खुले रहते हैं। उनके संतुलित आकार के सिर पर नारंगी अथवा लाल रंग की पगड़ी शोभायान रहती है और उनका चोगा कमरबंद से बंधा घुटनों के नीचे तक लटकता रहता है। वो कभी चमकीले नारंगी रंग का और कभी गहरे लाल रंग का होता है। वे उत्तम अंग्रेजी बोलते हैं और गंभीरता पूर्वक पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं।
4: महासभा में वो अपने भावों तथा आकृति की भव्यता के कारण बड़े लोकप्रिय हैं। मंच पर उनके आने मात्र से ही हर्ष ध्वनि होने लगती है और हजारों व्यक्तियों द्वारा यह विशेष सम्मान वे विनय पूर्वक और बाल सुलभ संतोष के साथ स्वीकार करते हैं। निर्धनता तथा आत्म संयम के जीवन से सहसा इस वैभव और उत्कर्ष में आ पड़ना अवश्य ही इस विनम्र सन्यासी के लिए अपूर्व अनुभव होगा।
1: अक्सर इसी तरह स्वामी जी की विजय वार्ता प्रकाशित होते रहने से ब्राह्मण समाज तथा अनेक ईसाई मिशनरी उनके प्रति विद्वेष से भर उठे। विशेषकर प्रतापचंद्र मजूमदार की व्यवस्था में चलने वाली यूनिटी एंड द मिनिस्टर पत्रिका में लिखा गया,
5: नव हिंदू बाबू नरेंद्रनाथ दत्त उर्फ विवेकानंद की प्रशंसा में इंडियन मिरर में अनेक लंबे संपादकीय लेख निकल चुके हैं। इस सन्यासी के विषय में ऐसी प्रशंसावली के प्रकाशन में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब वे नव वृंदावन थिएटर में अभिनय करने हेतु हमारे पास आए थे अथवा जब वे इस महानगरी के किसी ब्रह्म समाज में भजन गाते थे, तभी से हम उन्हें इतनी भली भांति जानते हैं कि उनके बारे में आज के समाचार पत्रों में चाहे जितना भी कुछ लिखा जाए, इससे उनके चरित्र के बारे में हमारी धारणा पर कोई प्रकाश नहीं पड़ने वाला है। हमारे इन पुराने मित्र ने संप्रति अपने आख्यानों के द्वारा अमेरिका में जो भाव तरंग उठाया है, उससे हम आनंदित हैं। परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमारे मित्र जिस नवीन हिंदू मत का प्रचार कर रहे हैं, वो सनातन हिंदू धर्म नहीं है। उन्होंने जो पूर्ण रूप से अनुचित किया है वो है समुद्र पार जाना, मलिच्छों का अन्न ग्रहण करना, लगातार सिगरेट पीना अथवा इसी प्रकार का और कुछ करना। शुद्ध सनातनी हिंदू जितने हमारी श्रद्धा के पात्र हो सकते हैं, आधुनिक हिंदू मत के अनुयायी वैसी श्रद्धा पाने का दावा नहीं करते, परंतु विवेकानंद की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकारों के यथासाध्य प्रयास करने के बावजूद जब वे बिल्कुल बेकार की बातें बकते हैं तो हमारा धैर्य छूट जाता है।
1: इसके बाद भी अमेरिका के संवाद पत्रों में जो सुंदर संवाद प्रकाशित होते थे, उन्हें टिप्पणी के साथ इंडियन मिरर, पायनियर आदि संवाद पत्रों में प्रकाशित किया जाता था। ये बात और है कि कुछ व्यक्तियों की तरह कुछ संवाद पत्र भी इन खबरों को प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं करते थे, तथापि भारतवासी जान गए थे कि स्वामी जी का विजय गौरव सचमुच ही आश्चर्यजनक है।
0: इसी बीच श्री बैरोज द्वारा प्रकाशित ग्रंथ द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में स्वामी जी को अति उच्च स्थान मिला और उस ग्रंथ की एक अच्छी समीक्षा अमेरिका के रिव्यू ऑफ रिव्यूज में जनवरी अंक में छपने के बाद 21 फरवरी 1894 के इंडियन मिरर के संपादकीय लेख द्वारा उस ग्रंथ का विस्तृत रूप से प्रचार हुआ। तब भारतवासियों को समझने में देर न लगी कि स्वामी जी का विजय संवाद प्रमाणिक है और उन्होंने सनातन धर्म को समुचित ढंग से पाश्चात्य जगत के सामने प्रस्तुत किया है और ये भी समझ गए कि उनके विरुद्ध जो बातें भारत में प्रचारित की जा रही हैं, वे सब झूठ हैं, ईर्ष्या जनित हैं। वस्तुतः सबने यह स्वीकार कर लिया कि स्वामी विवेकानंद का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है।
1: धर्म महासभा की विज्ञान शाखा के अध्यक्ष श्रीयुत मार्विन मैरी स्नेल ने 30 जनवरी 1894 को पायोनियर पत्र के संपादक को विस्तार पूर्वक पत्र में लिखा था। उसमें भी बैरोज के मत ही दृढ़ता पूर्वक लोगों के हृदय में अंकित हो गए। स्वामी जी ने महासभा में 19 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म विषय के जिस निबंध का पाठ किया था, वे मद्रास तथा कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की जन्म तिथि के उत्सव में 11 मार्च 1894 को पुस्तिका के रूप में वितरित हुआ। इससे स्वामी जी के वक्तव्य का एक प्रामाणिक विवरण मिला। 21 मार्च के इंडियन मिरर में इसकी खूब प्रशंसा की गई।
0: स्वामी जी की विजय वार्ता सिर्फ साधारण जनता तक ही सीमित नहीं रही। यह संवाद उनके गुणमुग्ध राजा और महाराजाओं तक भी पहुंची। रामनद के राजा भास्कर वर्मा सेतुपति तथा खेतड़ी के राजा अजय सिंह बहादुर, इन दोनों स्वामी जी के शिष्यों ने आम दरबार में ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा को बुला करके भारत के मुख उज्ज्वल करने वाले स्वामी जी के कार्यों की प्रशंसा की और महासभा में वे जो सनातन धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादन करने में समर्थ हुए हैं, इसलिए उन्हें धन्यवाद देकर के पत्र भी लिखा गया।
1: मद्रास में राजा रामास्वामी मुदलियार तथा दीवान बहादुर सुब्रमण्यम अय्यर महोदय के नेतृत्व में एक विराट सभा बुलाई गई। वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी के प्रचार कार्य का समर्थन किया। और सभा की रिपोर्ट के साथ उन्हें उत्साहवर्धक पत्र भी लिखा। उधर स्वामी जी की जन्म नगरी कलकत्ता भी उत्साह और आनंद से भर उठी। वहां राजा प्यारे मोहन मुखर्जी के सभापतित्व में कलकत्ता टाउन हॉल में एक विराट सभा बुलाई गई, जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित व विद्वान सज्जन साधारण जनता के साथ उपस्थित हुए थे। माननीय सभापति महोदय ने सर्वसम्मति से सभा की तरफ से शिकागो धर्मसभा के सभापति डॉक्टर बैरोज साहब के पास धन्यवाद सूचक पत्र भेजा।
0: इस तरह भारत में स्वामी जी के विजय का चारों ओर जश्न मनाया गया। इससे यह फल हुआ कि उनकी निंदा और आलोचना करने वालों की ही आलोचना हुई और अंततः वे हार मान करके चुप हो गए। उधर अमेरिका में स्वामी जी के व्याख्यानों का दौर चल रहा था और वे एक के बाद एक अमेरिका के नगर की जनता को अपने ज्ञान और वाग्मिता से वशीभूत करते जा रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको बता देते हैं प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे सुनिए का कार्यक्रम जीवन सौरभ। अक्षय निधि कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:13 से। 7:20 गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत में 7:20 से। कैप्टन विक्रम बत्रा पर केंद्रित कार्यक्रम वदन का राग सुनिएगा 8 बजे से। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। साइबर क्राइम पर आधारित कार्यक्रम टेक गुरु सुनिएगा 9 बजे से। 9:30 पर भारत विभूति कार्यक्रम सुनिएगा और ये कार्यक्रम केंद्रित होगा के शंकर पिल्लई पर। परिक्रमा आपको सुनवाएंगे 10 बजे से। 10:30 सुनिएगा काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत रश्मि रथी का भाग 13। हमारे वैज्ञानिक ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 11 बजे से। और 11:30 पर सुनिएगा विवेकानंद जी के आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। ये थी जानकारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।